103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 7 अक्टूबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:58:40 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। हमारी सभा में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में TEPA की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति गी पाहमला 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत और ईएफटीए के बीच TEPA पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से लागू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवातीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन GSMA के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस आज से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी सरकार के प्रमुख के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और हिरासत में लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन्हें 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का अगला मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है और आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे ही मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं, आइए सुने चिंतन।

जिस वस्तु के नाश से बड़ा दुख या कष्ट होता है, उसके प्राप्त होने से पूर्व सुख या दुख कुछ भी नहीं होता है। अतएव उसकी प्राप्ति के पूर्व की अवस्था को ध्यान में रखकर मन को दुखी नहीं करना चाहिए।

भोलेनाथ शिवशंकर की महिमा अपरंपार है। जो कोई भी सच्चे मन से उनके चरणों पर नतमस्तक हो जाता है वह सदा ही शिव की कृपा का पात्र बन जाता है।

जिस किसी के सर पर भी भगवान का हाथ होता है उसका इस संसार में भला कोई प्राणी क्या ही बिगाड़ सकता है। तो आइए हम भी वंदना करें श्री कृष्ण भगवान जी की।

शक्ति की उपासना में वो ताकत है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जो प्राणी भी ममता मई माँ दुर्गा की उपासना सच्चे मन से करता है, माँ स्वयं उसके कष्टों को दूर करने के लिए प्रकट हो जाया करती है।

श्रोता, इसी भक्ति रचना के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति मानस गान।

चित्रकूट की सभा में गुरुजन, मातृत्रय तथा अयोध्यावासियों की उपस्थिति में भरत श्री राम के सम्मुख अपने अंतरतम के उद्गार प्रकट कर रहे हैं। उन्हें इस बात की प्रतीति है कि अपने हितैषियों, बुद्धिमान जन तथा स्वामी के सामने अधिक नहीं बोलना चाहिए। श्री राम के प्रति भरत का स्नेह और समर्पण देखकर उपस्थित समुदाय प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ जाता है। स्वयं श्री रघुनाथ जी सम्मान भरे वचन के साथ उनका हाथ पकड़ अपने पास बिठा लेते हैं।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे मानस गान 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। सात 7:10 पर आप सुनेंगे जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुबह सुहानी। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से आप जान पाएंगे। सुबह 8:00 समाचार प्रभात में 8:15 पर सुनिएगा मॉर्निंग न्यूज। हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम हिमगुंजन आप सुन पाएंगे सुबह 8:30 पर। 9:10 पर सुनिएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे सुबह 9:50 पर। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार सुनाए जा सकते हैं आपको सुबह 11:00, दिन में 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर। ये समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। गीतों का कारवां कार्यक्रम हम आपको लेकर आएंगे सुबह 10:00 और 10:30 पर सुनिएगा पहाड़ों के सुर कार्यक्रम। 11:05 पर आज आप सुन पाएंगे कवालिया और 11:30 पर सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हमारा दैनिक कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप सुनेंगे दोपहर 12:00 और 12:30 पर होगा महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम सुनो सखी। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक आनंद लीजिए विविध भारती के कार्यक्रमों का। हमारी सायंकालीन सभा की शुरुआत होती है शाम 5:10 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे कुछ गैर फिल्मी भजन। 5:25 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच। सदाबहार फिल्मी गीत आप सुन पाएंगे सुरमई सांझ कार्यक्रम में, जो कि प्रसारित होगा 6:05 पर। और 6:30 पर सुनना न भूलिए मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम। किसान बागवान श्रोता खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनेंगे 7:10 पर। रात्रि 8:00 हम आपको सुनवाएंगे विविध गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस। और 8:30 पर आज आप सुनेंगे कुछ देशभक्ति गीत। समाचार संध्या आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर और 9:00 सुनिएगा News@9। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के लिखे कुछ गीत। 9:30 पर होगा चर्चा का विषय कार्यक्रम और रात्रि 10:00 सुनिएगा आपके अनुरोध पर कार्यक्रम। 10:30 पर आनंद लेना ना भूलिए सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। श्रोताओ, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा स्विट्जरलैण्ड देशस्य राष्ट्रपतिः गी पामला च अद्य भारत मण्डपम् इत्यत्र द्वितीयं भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलनं सम्बोधयिष्यतः। भारत EFTA व्यापारार्थिक सहमति सन्धेः प्रथम वार्षिकोत्सवस्य अवसरे सम्मेलनमिदं आयोज्यते। अस्मिन् सम्मेलने भारतस्य तथा EFTA संघटने अन्तर्भूतानां स्विट्जरलैण्ड

0: नॉर्वे, आइसलैंड, लिक्टेन्स्टाइन चेत्य तेषां देशानां वरिष्ठाः प्रशासकीय अधिकारिणः, उद्योगक्षेत्रस्य नेतारः, प्रमुखहितधारिणश्च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। सम्मेलनस्य उद्देश्यम् आर्थिकसहकारं सुदृढीकर्तुं, व्यावसायिकसहमतिं प्रवर्धयितुं तथा व्यापारनिवेशप्रौद्योगिकीसहकारनवोन्मेषचेत्येतेषु क्षेत्रेषु नूतनानाम् अवसराणां सृजनमस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः सार्वजनिकजीवनयात्रा अद्यैव आरब्धा आसीत्, यस्याः अद्य 25 वर्षाणि पूर्णानि भवन्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अथ भाजपादलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिननवीनः च अद्य विकसितभारतसङ्कल्पसभां सम्बोधयिष्यतः। प्रधानमन्त्रिणः तथा भाजपादलस्य राष्ट्रियाध्यक्षस्य सम्बोधनाभ्यां सह दलस्य अनेके वरिष्ठनेतारः अपि उत्तरप्रदेशस्य विभिन्नेभ्यः क्षेत्रेभ्यः दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीयमाध्यमेन कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: विशदवृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। यूट्यूब् मञ्चे च न्यूज़ आन् AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
0: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन बहुमाध्यम सम्बद्ध परिवहन योजनां सुव्यवस्थितां कर्तुं एकीकृत परिवहनापूर्ति व्यवस्थापन प्राधिकरणस्य स्थापनायै अनुमोदनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्नस्य मन्त्रिमण्डलोपवेशनस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् इदं प्राधिकरणं 10-वर्षीययोजनावधिम् आधृत्य दीर्घकालिकं राष्ट्रियपरिवहनमहायोजनापत्रं सज्जीकरिष्यति। सः उक्तवान् यत् इदं देशे एकीकृतपरिवहनापूर्तिव्यवस्थापनयोजनायै शीर्षसंस्थारूपेण कार्यं करिष्यति। श्रीवैष्णवः उक्तवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन लघुमध्यमोद्यमेषु स्वामित्वनिवेशाय 10,000,000,000 रूप्यकाणां लघु मध्यमोद्यम विकास निधेः स्थापनायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारत घाना देशयोर्मध्ये वैज्ञानिकानुसन्धानस्य, शैक्षणिकक्षेत्रस्य क्षमतावर्धनस्य, कृष्यनुसन्धानस्य तथा शिक्षायाश्च क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकर्तुं द्वयोः सन्धिज्ञापनपत्रयोः आदान प्रदानं जातम्। विदेशमन्त्रिणः डॉ एस जयशंकरस्य घानायात्रायाः समये एतयोः सन्धिज्ञापनपत्रयोः आदान प्रदानम् अभवत्। डॉ जयशंकरस्य घानादेशस्य विदेशमन्त्रिणः सैम ओकुजीतो अब्लक्वा इत्यस्य च मध्ये भारत घानादेशयोः व्यापक सहमतिं सुदृढीकर्तुं विस्तृतं विचार विनिमयं जातम्। ध्यातव्यमिदं यत् विदेशमन्त्रिणः इयं यात्रा अस्य मासस्य 10 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरासु प्रबलवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। भारतेन ह्यः रात्रौ लखनऊ नगरे क्रीड्यमाने 1/20 प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां वेस्ट इंडीज दलम् 8 स्तोभिः पराजितम्। अनेन विजयेन भारतं 5 स्पर्धात्मिकायां श्रृंखलायां 1-0 इत्यन्तरेण अग्रे अस्ति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से भाजपा के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है, नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
2: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के कार्य शामिल हैं। इन्हें चार मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में TEPA की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस 7 से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की घाना यात्रा के दौरान हुए। दोनों देश दक्षिण दक्षिण सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने घाना के विदेश मंत्री सैम ओकुटजेटो अब्लाक्वा के साथ समझौतों का आदान प्रदान किया। जम्मू कश्मीर में उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कालाकोट और राजौरी सेक्टरों का दौरा कर परिचालन तैयारियों और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में सेना ने बताया कि सैनिकों ने उन्हें नियंत्रण रेखा और भीतरी इलाकों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनाई गई सतर्कता, प्रशिक्षण, तालमेल और नवीन प्रथाओं सहित प्रमुख परिचालन तैयारियों की जानकारी दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेनदेन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज ऐसे ही मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years as head of a government. His tenure is equally split, consisting of 12.5 years as Chief Minister of Gujarat and 12.5 years as Prime Minister. It was on this day in 2001, Mr. Modi was first sworn in as the Chief Minister of Gujarat. He became Prime Minister in May 2014. To commemorate this landmark achievement, Union Cabinet passed a resolution highlighting his governance journey. Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said that Mr. Modi's 25-year tenure is a testimony to the strength of Indian democracy.
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं
5: ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज कंप्लीटिंग 25 इयर्स एज द हेड ऑफ अ गवर्नमेंट इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंटीन्यूअस सर्विस टू द नेशन द कैबिनेट कांग्रेचुलेटेड हिम एंड पास्ड अ रेजोल्यूशन ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन गुजरात द प्राइम मिनिस्टर ब्रॉट अबाउट सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस थ्रू हिज वर्क्स एंड पॉलिसीज फॉर व्हिच ही वाज ऑनर्ड अराउंड द वर्ल्ड द इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय हिम लेटर बिकम इंपॉर्टेंट टेम्पलेट फॉर द कंट्री दस द गुजरात मॉडल गेन्ड रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन ग्लोबली and several of its successful approaches were subsequently implemented across India.
3: Aur Bharat bhar mein uski implementation hui.
4: He said a person from an ordinary family who dedicated himself to the service of the nation and is continuing to serve the country is a major example of the vitality, vibrancy and maturity of the democracy. Mr. Vaishnav said that Prime Minister Modi has created history that is unique in any democratic country. He said there are a few countries in the world where the people have repeatedly extended their support to a single leader. The minister said this support has been given because of his style of functioning, his right policies and his clear and good intentions. The Bharatiya Janata Party and Prime Minister Narendra Modi have always pursued public service, national service and the spirit of putting the nation first and the nation above all with clear intentions and clear policies. The minister highlighted 10 major points of this cabinet resolution. The first point is the expansion of the vision of development from Gujarat to the entire country. He said Prime Minister Narendra Modi introduced several changes in Gujarat through his programs and policies, for which Mr. Modi was honoured across the world. The Gujarat model was recognised and appreciated across the world and was subsequently implemented across India. To mark the occasion, BJP launched a nationwide celebratory campaign called Seva Sankalp Abhiyan. Running from September 17 to October 17th, the initiative features nationwide public welfare programs, blood donation drives and cultural yatras connecting Vadnagar PM Modi's birthplace to Varanasi, his parliamentary constituency. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Prime Minister Modi interacted with Global System for Mobile Communications Association GSMA board members at Seva Tirth yesterday ahead of the India Mobile Congress. The India Mobile Congress is scheduled to be held from 7th to the 10th of this month in New Delhi. Mr. Modi stressed that democratization of technology is essential to ensure that no section of society is left behind. President Draupadi Murmu is currently on a three-day official visit to Himachal Pradesh. On arriving in Bilaspur yesterday, she attended the first convocation ceremony of AIIMS Bilaspur, where she conferred medals and degrees upon meritorious students. On the second day of her visit today, the president is scheduled to visit the Atal Tunnel, Rohtang. Government has notified the schedule for permissible works under the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, VBG Ramji Act 2025, providing for 375 permissible works under the new Rural Works Framework. Minister of Rural Development said that the new schedule represents a 41% expansion over the 266 works under the previous framework. The works have been reorganized around four thematic pillars, including water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure, and special works for extreme weather events and disaster preparedness. India defeated West Indies by 8 wickets at the opening T20I in Lucknow last night to take a 1-0 lead in the 5-match series. Put into bat, West Indies were bowled out for 171 in 19.1 overs. Sharfane Rutherford top scored 56,

0: सुबह सुहानी।
1: गुड मॉर्निंग सुप्रभात। 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। जी हाँ, सुबह के 7:10 हुए हैं और एक बार फिर लेकर आ गए हैं हम जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुबह सुहानी। जी हाँ दोस्तों, सुबह की ठंडी ठंडी हवा के झोंके आपके घर आंगन पर दस्तक दे रहे हैं, जो आपको नई ताजगी और नई सुबह का एहसास दिला रहे हैं। तो चलिए आप भी स्वागत करें उन हसीन पलों का जो आज आप बिताने वाले हैं इस खूबसूरत से दिन में। हमेशा की तरह आज भी शुरुआत होगी एक सुविचार के साथ। दोस्तों, मन शांत हो, आपके विचार पवित्र हो, वाणी में मिठास हो और कर्मों में सच्चाई, यही तो एक सुंदर जीवन की पहचान है। जी हाँ, अगर आप भी अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो इसका एक सीधा सा समाधान ये है कि चीज़ों को लेकर अपना नज़रिया साफ रखें, हर बात में कमियां ढूंढने के बजाय स्वीकार करना सीखें और दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो। और हाँ, ऐसा कोई काम ना करें जो आपके अंतर्मन को स्वीकार ना हो। और बाकी क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसमें उलझने के बजाय हर वक्त ये सोचे कि हम अपने मन को किस तरह से शांत रख सकते हैं, क्योंकि हमारे मन की स्थिति ही ये तय करती है कि हमारा आज, हमारा आने वाला कल कैसा होगा। तो दोस्तों, हम तो यही कोशिश करने वाले हैं कि आपका पल, लाइफ का जो है वो हर पल खुशनुमा सा बना रहे। और फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय बाकी रहता हो तो कुछ पलों के लिए आंखें बंद कीजिए और शांत मन से हमारे साथ गुनगुनाइए ये गाना।

जी हाँ दोस्तों, बने हुए हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ और इस वक्त सुन रहे हैं सुबह सुहानी कार्यक्रम। और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इतिहास की उन बातों की तरफ जो कि आज के दिन को और भी विशेष बनाती है और इस दिन के महत्व को दर्शाती है। सबसे पहले बात करते हैं 7 अक्टूबर 1868 की, जब पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय खोला गया, जिसमें एक साथ 412 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था, जो उस समय की सबसे बड़ी संख्या थी। वहीं वर्ष 1919 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पत्रिका नवजीवन का प्रकाशन हुआ। 7 अक्टूबर 1942 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। वहीं साल 1950 में समाज सेवा और जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। साल 1952 में 7 अक्टूबर के दिन चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनी थी। श्रोताओं, आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 1708 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराष्ट्र के नांदेड़ा में उनका निधन हो गया था। उन्हीं के द्वारा आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। साल 2022 में प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता अरुण बाली इस दुनिया में नहीं रहे। कार्यक्रम में आगे आपसे बात होगी आज किन प्रसिद्ध शख्सियतों का जन्म हुआ है, लेकिन उससे पहले आप सभी को सुनवाएंगे एक और प्यारा सा गीत और उसके बाद बातों का सिलसिला तो यूं ही प्रोग्राम में अभी काफ़ी देर तक यानी कि 8 बजे तक यूं ही जारी रहने वाला है।

0: जी हाँ श्रोताओं, जुड़े हुए हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ और इस वक्त सुन रहे हैं सुबह सुहानी प्रोग्राम। और देखिए हमारी स्टूडियो में जो है घड़ी हमें समय बता रही है सुबह के 7:24:30। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जिनका कि आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं। जी हाँ, 7 अक्टूबर 1907 में जन्म हुआ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के प्रमुख सहयोगी दुर्गा भाभी का। वहीं 1949 में जन्म हुआ भारतीय घुड़सवार खिलाड़ी इंद्रजीत लांबा का। साल 1969 में जन्मी भारतीय मॉडल, अभिनेत्री और मिस वर्ल्ड युक्ता मुखी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ। श्रोताओं, आपको बताना चाहेंगे कि साल 1914 में जन्म हुआ एक और प्रसिद्ध शख्सियत का, जिन्होंने अपनी गजल गायकी और ठुमरी के एक अलग अंदाज पेश किया और आज हम मना रहे हैं उन्हीं की जन्म जयंती। जी हाँ श्रोताओं, बेगम अख्तर, जिन्होंने अख्तरी बाई फैजाबादी के रूप में भी प्रसिद्धि पाई, उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गजल, ठुमरी, दादरा गायकी में महारत हासिल करने वाली वो उन चुनिंदा लोगों में से गिनी जाती है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को महफिलों से उठाकर आम जनता तक पहुँचाया। उनकी दर्द भरी रूहानी आवाज़ ने मिर्ज़ा गालिब और जिगर मुरादाबादी जैसे महान शायरों को भी अमर कर दिया। उनकी गायकी के अलग अंदाज के कारण उन्हें मल्लिका गजल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं गजल गायकी के बारे में उनके क्या विचार रहे हैं उन्हीं की जुबानी।
1: ठुमरी और गजल का गाना ऐसा आसान नहीं है जैसा उम्मन समझ लिया जाता है, खास तौर से गजल। हमारी मुसीकी में गजल का एक अपना ही मकाम है। इसकी अदायगी में कई पहलुओं को मद्देनजर रखना पड़ता है। गजल शायर के दिल की आवाज, उसमें इसका एक खूबसूरत मुरक्का है। अगर कोई गजल गाने वाला

0: जी हाँ श्रोताओं, बेगम अख्तर की आवाज़ आज भी जब कभी हमें सुनाई देती है तो वो एक अलग ही माहौल पैदा कर देती है।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट टी एन सी अप्लाई।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
4: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
4: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
3: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
4: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
3: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
4: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
3: लड़ी हक की लड़ाई,
4: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: जी हाँ दोस्तों, ट्यून इन है आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ और इस वक्त आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी प्रोग्राम। दोस्तों, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो होती तो एक ही चीज़ है, लेकिन इसका प्रयोग हमारे घर में कई सारी रूटीन की जो है वो रूटीन लाइफ में काम आने वाले सामान में उसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, हम घर में इस्तेमाल होने वाले छोटे से ईयरबड से लेकर कपड़े, चादरें, तकिए, रजाई और यहाँ तक कि उसके इस्तेमाल से बची हुई वेस्ट से पशुओं के चारे के रूप में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहे तो इसका महत्व हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है और इसी के कारण आज हमारे देश में कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी काम कर रही है। और तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कपास की, जो एक छोटे से दिए की बाती से लेकर हजारों कामों में इस्तेमाल किया जाता है। और आपको ये भी बता दें कि आज हम मना रहे हैं विश्व कपास दिवस और इसके बारे में कुछ अहम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से डॉक्टर सपना गौतम जी, और कार्यक्रम में हम उनका स्वागत करेंगे। हेलो।
6: हेलो
5: जी सपना गौतम जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और विश्व कपास दिवस की आपको और हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। पहले तो
5: जी बहुत बहुत शुक्रिया। सपना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कपास का जो है वो इस दिन को मनाने की एक तो शुरुआत कैसे हुई और इसका जो है हमारी लाइफ में कितना महत्व है।
6: जी जी जी, तो बात करें हम विश्व कपास दिवस या वर्ल्ड कॉटन डे, इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी और इसका पहला आयोजन 7 अक्टूबर 2019 को जेनेवा में हुआ, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया। इसकी जब शुरुआत की बात करें तो 4 कंट्रीज थे, उन्होंने आपस में मिलकर इस प्रस्ताव को आगे लेकर आए और यूनाइटेड नेशन ने इसकी घोषणा अगस्त 2021 में की और अब हम इस बार 2026 में इस दिन को थीम कॉटन फॉर गुड के साथ मना रहे हैं, जिसमें बिल्डिंग प्रॉस्पेरिटी थ्रू ट्रेड ट्रांसफॉर्मेशन एंड पार्टनरशिप है। अगर हम इस दिन की महत्वता के एरियाज की बात करें तो उसमें हमारे पास रहते हैं क्रिटिकल रोल ऑफ कॉटन इन ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रूरल लाइवलीहुड्स, इन सब चीज़ों को इसके तहत हाईलाइट किया जाता है। इसमें 75 से अधिक देशों के 100 करोड़ से अधिक परिवार जुड़े हैं। इसमें चाइना, इंडिया, ब्राजील, यूएसए, पाकिस्तान, ये पांचों देश मिलकर के लगभग 80% कॉटन की जिम्मेदारी यही देश पांच उठा रहे हैं। इसे हम सफेद या वाइट गोल्ड भी बोलते हैं और अगर इसकी वैल्यू चेन की बात करें तो इसको उगाने से लेकर कल्टीवेशन से लेकर इसकी जिनिंग एंड पैकेजिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, फिर स्पिनिंग एंड वीविंग एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट डेवलपमेंट और लास्ट में इंटरनेशनल ट्रेड की बात इसके साथ की जाती है। अब आप देखें कि टोटल, आपने बिल्कुल सही कहा कि चादर, तकिए से लेकर हमारा जो जीवन है इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो लगभग जो 80% वर्ल्ड ओवर हमारी कॉटन की प्रोडक्शन है उसका यूज हम अपैरल में करते हैं, यानी कि पहनने योग्य वस्त्रों में, और बाकी का होम टेक्सटाइल्स और इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स में है। इस प्रकार से ये दिवस का मनाया जाना बिल्कुल उचित है।
5: जी सपना जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम कपड़ों की बात करते हैं तब बाकी कपड़ों के अलावा कॉटन में ऐसी कौन कौन सी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज होती है जो एक मानव शरीर के लिए और एनवायरनमेंट दोनों के ही लिहाज से बेहतरीन और एक अनूठा विकल्प माना गया है?
6: बिल्कुल सही आपने सवाल किया, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से ही ये इतना इम्पोर्टेंट फाइबर है जो कि नेचुरल फाइबर कैटेगरी में प्राइम पोजिशन होल्ड करता है। अगर हम बात करें तो कॉटन एक सॉफ्ट और स्टेपल फाइबर है, छोटे साइज का फाइबर होता है जो कॉटन के जो प्लांट हो है उसमें सीड के हेयर से ये हमको मिलता है। ये अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो ये कि ऑलमोस्ट प्योर सेलुलोज होता है और कुछ मात्रा में इसमें वैक्सेस, फैट्स, पेक्टिन्स और पानी रहता है। इसमें करते क्या है, फाइबर को चरखे की मदद से यार्न में कन्वर्ट किया जाता है और लूम की मदद से कपड़े में कन्वर्ट किया जाता है। जो ये प्रोसेस है कपड़े धागे फाइबर से कपड़े का बनना, इसमें कुछ एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज जो इस पर्टिकुलर फाइबर में है वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं, जैसा कि वेट स्ट्रेंथ, यानी कि जब ये रेशा गीला होता है तो गीला होने पर 20% से ज्यादा मजबूत हो जाता है, जो कि हमें और फाइबर्स में नहीं मिलेगा। एब्जॉर्बेंसी, जैसे कि पसीना सोखने की क्षमता भी इसमें और पानी को सोखने की क्षमता इसमें लगभग 25 गुना, अपने वजन से 25 गुना पानी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। यही कारण है कि जो पसीना रहता है बॉडी में उसको ये सोख लेगा और आपकी बॉडी को कंफर्टेबल करेगा और साथ ही बैक्टीरिया और स्किन इन्फेक्शन से भी बचाता है। दूसरी तीसरी इसमें लगभग ये प्रॉपर्टी जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि ब्रीदेबिलिटी है इसमें, यानी कि थर्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर को कंट्रोल कर देता है वो। इसका जो स्ट्रक्चर देखें अगर हम माइक्रोस्कोपिक, तो उसमें हमें खोखला सेलुलोज स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो हवा को आसानी से, इसमें हवा आर पार जा सकती है, एंड दैट प्रोवाइड्स ऑल सीजन कंफर्ट टू द वियरर। चौथी चीज है इसमें स्टैटिक चार्ज नहीं होता है। अगर कभी आपने देखा होगा कि कपड़ों को हम अंधेरे में रखें तो कुछ एक चिंगारी सी निकलती है, सिंथेटिक कपड़ों में स्पेशली, लेकिन इसमें क्या है कि ये चिंगारी नहीं निकलेगी, इसमें कोई स्टैटिक चार्ज नहीं होता है, जिससे जो वियरर है वो फुल्ली कंफर्टेबल फील करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बायोडिग्रेडेबल। पॉलिस्टर और नायलॉन तो प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन कॉटन सचमुच थीम के अकॉर्डिंग कॉटन फॉर गुड है। ये तो हुई फाइबर की प्रॉपर्टीज। साथ ही एक चीज और मैं स्ट्रेस देना चाहूंगी कि जब हम वीविंग करते हैं यानी कि कपड़ा बनाते हैं, तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड इंजीनियरिंग। उस टाइम पे भी इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो काफी उभर कर सामने आती है, जिसमें इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और लो इलास्टिसिटी रहती है, जिसमें कि इसकी मजबूती ही इसका एक कारण बन जाती है, और हमारा वीवर जो है वो टाइम और वीविंग में कोई रुकावट नहीं आने देता इस तरीके से। और इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी, जब हम इसको लूम से बाहर निकालते हैं तो इस ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, जिस माप का आपने इसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसी माप का ये बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से कॉटन अपने आप में एक प्राइम क्वालिटी रखता है इस टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में।
5: जी सपना जी, हमारे बुनकर भाई बहनों के लिए कपड़ा बुनते समय

0: कपास का धागा कैसे मददगार साबित होता है?
1: यूं तो जिन एरियाज में कॉटन की प्रोडक्शन है वहां तो ये वीविंग सेक्टर काफी आगे जा चुका है, लेकिन जहां तक हम अपने बुनकरों की, हिमाचल जो कि ऊनी हैंडलूम वीविंग में बहुत आगे अग्रणी रहा है और अभी भी है, और उसमें भी हम जब नवीनतम वस्त्रों की बात करते हैं, नवीनता को लाने की बात करते हैं, तो इसमें भी उसको स्ट्रेंथ देने के लिए ऊन और कपास के मिश्रण का विभिन्न प्रपोर्शन में अगर हम उनको मिला करके धागा तैयार करें और फिर बुनाई करें। दूसरा ये हो सकता है कि आप वॉप में कॉटन को डाल दीजिए और वेफ्ट में ऊन को डाल दीजिए। ये दोनों तकनीकें जो है हम उपयोग में ला सकते हैं, और कपास का जो धागा है वो अपेक्षाकृत मजबूत, कम लचीला और घर्षण को सहन करने वाला होता है। जब कपास का ताना और ऊन का बाना इस्तेमाल किए जाते हैं तो कपड़े में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जैसे कि कपास की मजबूती, ऊन की गर्माहट, मुलायमपन और पारंपरिक स्वरूप का संयोजन मिलता है। ये तकनीक ऊन की पारंपरिक बुनाई को बनाए रखते हुए नए हमारे प्रोडक्ट्स और डिजाइनर प्रोडक्ट्स जो है सामने लाकर मार्केट में एक नए आयाम एम्प्लॉयमेंट के जनरेट करता है हमारे यूथ के लिए।
0: जी सपना जी, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: संदेश ये है कि हम लोग आज रेडियो धर्मशाला के माध्यम से ये अपील करते हैं कि अगली बार जब आप खरीदारी करने जाएं तो लोकल बुनकरों का साथ दें, पर्यावरण को बचाएं, अपनी विरासत का सम्मान करें और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अपनाएं। नमस्कार।
0: जी सपना जी, आप हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे सुनने वालों को दी, उसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू
0: जी
1: सो मच।
0: शुक्रिया।
2: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
3: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
2: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
4: सब प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
5: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
6: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
5: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
6: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
5: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
6: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
5: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
4: लड़ी हक की लड़ाई,
5: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: तब से।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
3: जी हाँ, सुबह सुहानी प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ, और स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है सुबह के 7:49 और दोस्तों आपको बता दें कि जब हमारी जो लाइफ में लगातार हम प्रयास करते रहते हैं तो एक दिन सफलता मिलनी तो लाजमी ही होती है, और यही वो वक्त होता है जब पूरी दुनिया आपकी उस सफलता की सराहना करने लगती है। तो चलिए प्रोग्राम में अब बात करते हैं ऐसी ही कुछ सफलताओं के बारे में जिन्हें हाल ही में सम्मानित करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और उनके नाम भी उजागर होने शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है नोबेल पुरस्कारों की, जिनकी घोषणा 5 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और ये सिलसिला 12 अक्टूबर तक यूं ही जारी रहने वाला है। श्रोताओं, आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान में से एक है, जो नोबेल फाउंडेशन द्वारा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो लगातार मानव जाति के लिए कुछ लाभ पहुंचाने वाले काम करते रहते हैं। इसकी शुरुआत स्वीडन के महान वैज्ञानिक और डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर हुई थी, और ये पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को जो है वो दिए जाते हैं, और इसकी शुरुआत 1901 से हुई थी। आपको बता दें कि ये पुरस्कार पहले 5 श्रेणियों में दिए जाते थे, जिनमें भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति शामिल थे। आगे चलकर अर्थशास्त्र भी इसमें जोड़ा गया है, और इसे देने की शुरुआत 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति से जोड़ा गया, और इसे पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। जी हाँ, और आपको ये बता दें कि इसमें विजेताओं को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और नगद राशि दी जाती है। शांति पुरस्कारों का समारोह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया जाता है, वहीं 5 अन्य पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। अब ये बता देते हैं कि भारतीय मूल के वो व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उन्हीं उनमें से वर्ष 1913 में साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को ये पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। वहीं 1930 में भौतिकी के लिए सीवी रमन को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। 1968 में हरविंद खुराना को चिकित्सा के लिए, 1979 में मदर टेरेसा के लिए शांति के लिए, और सुब्रमण्यन चंद्रशेखर के

ये भारतीय मूल के जो व्यक्ति थे उन्हें 1983 में भौतिकी के लिए ये पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। वहीं 1998 में अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को और भारतीय मूल के वेंकट रमन को ये पुरस्कार जो है 2009 में रसायन विज्ञान में उनकी खोज के लिए दिया गया। वहीं कैलाश सत्यार्थी को साल 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और 2019 में अर्थशास्त्र के लिए एक बार फिर से अभिजीत बनर्जी को ये पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें कि हाल ही में 5 अक्टूबर को ये पुरस्कार जो है वो शांति के लिए प्रदान किया गया, चिकित्सा के लिए प्रदान किया गया, जिसे संयुक्त रूप से कार्ल डी सेरूथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागेल को ये पुरस्कार मिला है। और वहीं भौतिकी के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को ये पुरस्कार जो है वो देने की घोषणा की गई है। और सुबह सुहानी प्रोग्राम में और भी आपसे कुछ जानकारियां हम साझा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा रहे हैं ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ लिसनर्स, हम देखिए एक प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप सभी को अपडेट करते हैं आज की कुछ प्रमुख ताज़ा तरीन खबरों से। जी हाँ श्रोतो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उन्होंने बधाई देते हुए जो है एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। वही एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे जो 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। बात करें खेल जगत की तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला T20 मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच में नमन धीर ने अपने T20 इंटरनेशनल का डेब्यू किया है। वहीं विश्व की नंबर वन टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिरिन घुटने की चोट के कारण 2026 के बाकी मैच सत्र से बाहर हो चुकी है। चलिए चलते चलते मौसम की बात करते हैं तो देश में जो है वो एक बार फिर से जो है वो बारिश का दौर जारी हो चुका है और पूरे देश में बारिश और आंधी तूफान और गरज के साथ बिजली चमकने के आसार मौसम विभाग द्वारा जताए गए हैं। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ पिछले कल से ही मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है और ओले बरसे कहीं पर तो कहीं पर ऊंची चोटियों पर जो है वो एक बार फिर से हिमपात हमें देखने को मिला और ऐसे में जो है वो पहाड़ी इलाके के सभी लोगों को सतर्क होने की जरूरत है और ठंड के लिए अपनी पूरी तैयारियां जो है आप जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। जी हाँ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुबह सुहानी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला पर।

0: जी हाँ दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ आज का सुबह सुहानी प्रोग्राम यहीं पर संपन्न होता है। अपनी दोस्त को दीजिए इजाजत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है देश और दुनिया का ताजा हाल। अब आप समाचारों से जानेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया। पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और भारत ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि

0: प्रधानमंत्री मोदी का 25 वर्ष का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा जनसेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना के साथ काम किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के 10 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया। पहला बिंदु गुजरात से पूरे देश तक विकास के दृष्टिकोण का विस्तार है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने गुजरात में अपने कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से कई बदलाव किए, जिसके लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे कि इस दृष्टिकोण को गोवा के सागरमाला कार्यक्रम ने किस तरह साकार किया है।
2: देश की 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और करीब 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बेहतर समुद्री संपर्क, तटीय नौवहन को बढ़ावा देने और तटीय समुदायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की समुद्री क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को गति देने पर जोर दिया है।
3: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
2: समुद्र और जलमार्ग गोवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सागरमाला कार्यक्रम के तहत राज्य में बंदरगाहों और जलमार्गों के विकास के साथ साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। गोवा के कैप्टन पोर्ट्स ऑक्टोवियो रोड्रिक्स ने आकाशवाणी को बताया कि सागरमाला के तहत राज्य में किस प्रकार की पहलें की जा रही हैं।
4: इट इज गोइंग टू चेंज मेनी जेटीज। नाउ सी अनदर 10 जेटीज वी आर गोइंग टू गेट ऑलरेडी अप्रूव्ड और ओनली थिंग नाउ वी हैव नीड टू इंस्टॉल इट। दे आर ऑल फ्लोटिंग जेटीज व्हिच विल टेक केयर ऑफ द टूरिज्म एक्टिविटीज ओवर देयर, पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू आल्सो कम अप विद अ ऑटो मेट्रो।
2: गोवा में अब तक सागरमाला के तहत 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिन पर करीब 841 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वहीं करीब 98 करोड़ रुपए की 2 अन्य परियोजनाएं फिलहाल कार्यान्वयन के चरण में हैं। इन परियोजनाओं से गोवा के बंदरगाहों और जलमार्गों का आधुनिकीकरण हो रहा है और उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल संभव हो रहा है। साथ ही क्रूज पर्यटन और तटीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पहले के ढांचे के तहत शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
5: इन कार्यों को 4 विषयगत स्तंभों, जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत में ये विचार प्रकट किए।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को

0: किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक लोग, 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप और 900 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन,
2: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
1: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। श्री बिरला ने पोरवोरिम में गोवा विधानसभा परिसर के रजत जयंती समारोह में ये बात कही। एक रिपोर्ट।
5: गोवा ने अपनी विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए देश की आर्थिक प्रगति के साथ कदम मिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति दोनों लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। आजादी के बाद से भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को साथ लाने का काम किया है। श्री बिरला ने कहा कि देश और विदेश में आपदा के समय भारत के लोग हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
3: विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक कल विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। बाद में शाम को SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से

0: हर्ष का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट मैच में 8 से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
1: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 साल पूरे होने को अखबारों ने मुखपृष्ठ पर दिया है। उपलब्धि शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी का अनूठा रिकॉर्ड, लगातार सत्ता में 25 साल पूरे, कोई चुनाव नहीं हारे। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने दैनिक जागरण में लिखा है, असाधारण जनसेवक हैं प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर उजाला में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव को संभव बनाया है, उन्होंने अपने कामों से ये दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, हिंदुस्तान की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के SME विकास कोष को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 स्थानों पर CBI के छापे को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के OSD सहित 6 के खिलाफ FIR दर्ज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अब नए वायुसेना प्रमुख। लोकसत्य में एयर मार्शल मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे को प्रमुखता दी गई है। विश्व बैंक ने भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाया, दैनिक जागरण की सुर्खी है, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया।
0: धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया, पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की, कहा प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंप्लीट्स 25 ईयर्स एज हेड ऑफ अ गवर्नमेंट। यूनियन कैबिनेट पासेस रेजोल्यूशन टू कमेमोरेट दिस लैंडमार्क अचीवमेंट। Government notifies 375 permissible works under Viksit Bharat G. Ramji scheme, marking 41% expansion from previous 266 works. Prime Minister Modi interacts with board members of Global System for Mobile Communications Association, says technology must become a tool for inclusive and sustainable development. RBI to announce bi-monthly monetary policy this morning. IMD forecasts heavy rain in Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. And in men's cricket, India beat West Indies by 8 in the first T20 international, taking 1-0 lead in the 5-match series. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years as head of a government today. His tenure is equally split, consisting of 12.5 years as Chief Minister of Gujarat and 12.5 years as Prime Minister. It was on this day in 2001, Mr. Modi was first sworn in as Chief Minister of Gujarat. He became Prime Minister in May 2014. We have more from a correspondent.
3: To commemorate this landmark achievement, Union Cabinet passed a resolution highlighting his governance journey. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that Mr. Modi's 25-year tenure is a testimony to the strength of Indian democracy. He said a person from an ordinary family who dedicated himself to the service of the nation and is continuing to serve the country is a major example of the vitality, vibrancy and maturity of the democracy. Mr. Vaishnaw said that Prime Minister Modi has created history that is unique in any democratic country. He said there are very few countries in the world where the people have repeatedly extended their support to a single leader. The minister said this support has been given because of his style of functioning, his right policies and his clear and good intentions. The minister highlighted 10 major points of this cabinet resolution. The first point is the expansion of the vision of development from Gujarat to the entire country. He said Prime Minister Narendra Modi introduced several changes in Gujarat through his programs and policies for which Mr. Modi was honored across the world. The Gujarat model was recognized and appreciated across the world and was subsequently implemented across India. Komudi Parekh, Akashvani News, Delhi.
2: Vice President C.P. Radhakrishnan has greeted Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of service to the nation as head of government. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said, Mr. Modi's journey as Pradhan Sevak has transformed the vision of inclusive development into a nationwide mission guided by Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. He said across his visits to states and union territories, he has witnessed Bharat's visible transformation through improved connectivity, digital advancement, expanding opportunities and inclusive development. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu praised Prime Minister Modi, highlighting several core qualities that he believes makes the Prime Minister's journey exceptional. In an article in an English daily today, Mr. Naidu said clarity of vision, integrity, discipline, attention to detail, and above all, the ability to execute make Mr. Modi an exceptional leader. The government has notified the schedule of permissible works under the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, VVG Ramji Act 2025, providing for 375 permissible works under the new Rural Works Framework. Ministry of Rural Development said the new schedule represents a 41% expansion over the 266 works under the previous framework. We have a report.
4: The works have been reorganized around four thematic pillars: water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure, and special works for extreme weather events and disaster preparedness. The water security pillar comprises 128 works, the highest among the four categories. It includes check dams, gully plugs, underground dikes, recharge septs, injection walls, rejuvenation of rivers, rivulets and nalas, reclamation of waterlogged land and renovation of field water distribution channels. Every work will originate through a bottom-up decentralized planning process under the Viksit Gram Panchayat plan approved by the Gram Sabha and will be tracked through the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Prime Minister Modi interacted with Global System for Mobile Communications Association GSMA board members at Seva Tirth yesterday, ahead of the India Mobile Congress. Mr. Modi stressed that democratization of technology is essential to ensure that no section of society is left behind. He emphasized the need to make technology and digital services affordable and accessible, particularly for the Global South, and highlighted the importance of taking technology to the last mile to prevent a widening digital divide. The 10th edition of India Mobile Congress will begin at Yashobhoomi in New Delhi today. With the theme Scale Without Boundaries, it will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation, while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the event tomorrow. The event will feature the ministerial program on investing in the next billion digital connections, CEO roundtable on the sovereign inflection and the future of telecom, AI for good, cybersecurity summit, 6G symposium, Startup World Cup India 2026, ITU build-a-thon on AI agents for 5G networks, AI safety, India-UK panel, Robotics for Youth Challenge and other global technology programs. It will bring together over 1.5 lakh attendees, over 500 exhibitors and partners, over 600 startups,

जी हाँ श्रोताओं, आकाशवाणी धर्मशाला पर आप सुनने जा रहे हैं हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम हिम गुंजन, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं लोक गाथाओं, लोक परंपराओं से जुड़े हुए कुछ लोकगीत। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जगदीश शर्मा व साथियों की आवाज़ में गाए इस लोक भजन से।

0: अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: यार, दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
2: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
3: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
2: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
3: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम हिम गुंजन। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं जियालाल ठाकुर की आवाज में ये गंगी।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: सावधान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
2: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
1: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
2: रेबीज जानलेवा है, लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
4: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
3: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं। ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
5: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज न करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: हिमगुंजन कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जयप्रकाश शर्मा की आवाज में।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: अंदाज वही, कुछ अल्फाज है बदले,
2: सौगात नई, कुछ नए तराने,
3: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
1: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
2: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
1: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
2: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
3: जो पहुंचे दिल से दिल तक।
1: जी हाँ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम हिमगुंजन। श्रोताओ, हिमाचल के हर लोक गीत के पीछे छुपी होती है कोई ना कोई कहानी, कोई पारंपरिक जो है वो व्यथा, और जिसे अपने ही अंदाज में पेश किया जाता है यहाँ के लोक गायकों द्वारा। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही कांगड़ी लोक गीत।

0: अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: अरे वो देखो, औरत दर्द से तड़प रही है, क्या करे?
2: अरे भाई देखते क्या हो, तुरंत 108 पर फोन लगाओ।
3: राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108, किसी भी आपातकालीन स्थिति में जैसे कि बीमारी, दुर्घटना, अगजनी व पुलिस सहायता के लिए आप टोल फ्री नंबर 108 पर डायल करें। यह सेवा निशुल्क है और अभी तक लाखों लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: हिमगुंजन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ज्वाला प्रसाद शर्मा और अक्षर सिंह परमार की आवाजों में अगला लोक गीत।

0: विकास संवाद,
1: एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें बातें होंगी विकास की।
2: विकास के इस सफर में हमारे हम सफर होंगे विभिन्न विभागों से आए प्रतिनिधि।
1: कार्यक्रम के इस अंक में आपके रूबरू होंगे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा।

0: कार्यक्रम का प्रसारण होगा मंगलवार दिनांक 20 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:05 पर।
1: तो सुनना ना भूलिएगा
2: विकास संवाद।
3: श्रोताओ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं हिमाचली लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम हिमगुंजन। कार्यक्रम का अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं बसंत दत्त शर्मा की, बिशन दत्त शर्मा की आवाज में।

0: अंदाज वही, कुछ अल्फाज है बदले,
1: सौगात नई, कुछ नए तराने,
2: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
0: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
1: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
2: 103.4 MHz आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
0: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
1: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
0: 103.4 MHz आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
2: जो पहुंचे दिल से दिल तक।
0: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम हिमगुंजन। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं चारू शर्मा की आवाज में ये लोकगीत।

0: इसी के साथ हमारा आज का हिमगुंजन कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से
1: आकाशवाणी है विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 20वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा नए भारत की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार मदन जैरा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: कल्पना कीजिए साल 2001 का कच्छ, चारों तरफ धूल मलबे का ढेर और अपनों को खोने का सन्नाटा। उसी राह के ढेर से जब एक नए नेतृत्व ने जन्म लिया तो उसने कंक्रीट के पत्थरों में केवल इमारतें नहीं बल्कि भारत का आत्मविश्वास चुनना शुरू कर दिया। समय बदला, पन्ने पलटे और कच्छ के मलबे से उठा वही संकल्प जब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचा तो नए भारत की नई सौगात दिखने लगी। गुजरात के स्वर्णिम संकुल के प्रशासनिक कमरों से शुरू हुई ये सोच आज नर्मदा के तट पर 182 मीटर ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनकर बादलों को छू रही है। वैश्विक आर्थिक मंचों पर भारत की धाक जमाने वाला भारत मंडपम और यशो भूमि के झिलमिलाते कांच में आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी हमारा लोहा मान रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय समर स्मारक और स्मृति वन से अपनी साहसिक सांस्कृतिक और संवेदना की जड़ों को सींचा गया है तो दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट और कैंपागोड़ा T2 तक बिछते नए रनवे कह रहे हैं ये नया भारत है जो अब किसी की ओर देखता नहीं दुनिया को राह दिखाता है। और यही वो एहसास जगाता है जो नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम चर्चा करेंगे नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान पर। और इस विकास गाथा के पन्नों को एक एक कर खोलने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर केजी सुरेश, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार और शिक्षाविद, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार,
4: धन्यवाद।
2: सुरेश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। जब भी हम भारत की सार्वजनिक पहचान की बात करते हैं तो बीते एक दशक के दो बड़े स्तंभ यशोभूमि और भारत मंडपम, चाहे G20 का आयोजन हो, ब्रिक्स का आयोजन हो, AI समिट का आयोजन हो, G20 में हमने देखा यशोभूमि जो कन्वेंशन

0: सेंटर बना है, एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है, कई तरह के एक्सपो एग्जीबिशन वहां लगे होते हैं। आपसे मैं जो समझना चाह रहा हूँ, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी है, जो नई तरह की संस्कृति डेवलप हो रही है, उससे भारत को वैश्विक पहचान बनाने में कैसे मदद मिल रही है?
1: बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की एक पहचान जो रही है वो एक औपनिवेशिकतावादी एक पहचान रही है। कोई भी अगर पर्यटक भी आता है तो वो इंडिया गेट जाएगा, राष्ट्रपति भवन जाएगा या लाल किला, जो आप देखेंगे कि मुगल कालीन है। भारत कहाँ है, भारत का प्रतिनिधित्व कहाँ है, अक्सर कई लोग पूछते हैं कि इसमें भारतीय कहाँ है। तो ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो गया था कि हमारी अपनी पहचान, आज हम एक उभरते हुए विश्व शक्ति है, एक विकासशील देश है, जिसके बारे में 2047 तक हम लोग विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। आज वैश्विक मंच पर हमारा नेतृत्व है, चाहे वो G20 का रहा हो जिसमें हमने वसुधैव कुटुंबकम का दे दिया था, या ब्रिक्स का नेतृत्व रहा। ऐसे में जब वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधिमंडल, वहां के राष्ट्राध्यक्ष, राज्याध्यक्ष जब वे आएंगे, तो उनको आधुनिक भारत की छवि, जिसमें आधुनिक भारत तो है ही लेकिन साथ में एक प्राचीन सभ्यता की झलक भी मिले, ऐसे क्या सभागार हो सकते हैं क्या, ऐसा क्या जगह हम बना सकते हैं क्या? देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि काफी वर्षों तक नैम समिट मुझे याद है, छोगम मुझे याद है, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये सब हुआ था विज्ञान भवन में। लेकिन विज्ञान भवन का एक समय आज के जो आवश्यकताओं के अनुसार, जिसमें सभी सुविधाओं से सुसज्जित हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जबकि उसको अपग्रेड भी किया गया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं जो है उसमें कई कमियां दिख रही थी। तो ऐसे में भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में, आज भारत मंडपम हो या यशोभूमि हो, आप देखेंगे कि आज पूरे विश्व में लोग एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं कि भारत के पास भी एक ऐसे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। और मैंने कई विदेशियों का ब्लॉग देखा है जिसमें, या वीडियो ब्लॉग्स देखते हैं उनमें, जिसमें ये दिखाते हैं कि क्या आप ये देख रहे हैं, ये क्या भारत में हो सकता है क्या? मैं पड़ोसी मुल्क में लोग जो है, जो यूट्यूबर्स हैं, वो फोटो दिखाते हैं वहां के नागरिकों को, वो पूछते हैं ये किधर का होगा, तो कोई सिंगापुर कहता है, कोई हांगकांग कहता है, फिर वो यूट्यूबर कहते हैं कि नहीं ये भारत में है। तो यानी कि इससे भारत की जो छवि उभर कर आई है, पूरे विश्व में स्थापित हुई है। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि आज जिस तरीके का अर्थव्यवस्था में आज हमारा GDP विश्व में सबसे अग्रिम पंक्ति में हम खड़े हुए हैं, जिस तरीके से आज विदेशी निवेश भारत में हो रहा है, जिस तरीके से जो है वहां के पूंजी निवेश यहाँ कर रहे हैं, निवेशक यहाँ आ रहे हैं, उनको भी तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ प्रदर्शनियां करें, बैठकें करें, सम्मेलन करें, संगोष्ठियां करें। तो मैं समझता हूं कि ये दो जिनका आपने जिक्र किया है, ये हमें बहुत गौरवान्वित करती है। और साथ ही साथ जो नवीनतम जो प्रौद्योगिकी है उसका उसमें जो है हमने समाहित किया है, जिससे आज विश्व स्तर में जब बड़े कॉन्फ्रेंस सेंटर्स की जिक्र होती है तो उसमें जो है इन दोनों का नाम भी शुमार।
0: मदन जी, अगर इतिहास के पन्ने को थोड़ा पीछे पलटे, चूंकि हम प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन की चर्चा कर रहे हैं, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत गुजरात से हुई, वहां महात्मा मंदिर का निर्माण हो, स्वर्णिम संकुल हो, या फिर कच्छ के भूकंप के बाद जो स्मृति वन बना और फिर 182 मीटर ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की नर्मदा के तट पर, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया। तो जब शुरुआत गुजरात के इन बड़े और भव्य इमारतों के साथ हुई तो सोच बदलने लगी थी। उस सोच को बदलने की कहानी आपसे समझेंगे, चूंकि 2001 से के अगले 10 वर्षों में ये सब कुछ होने लगा था, घटित होने लगा था। कैसे देखते हैं उस फेज को, चूंकि नए भारत की नींव उस समय बननी शुरू हो गई थी।
2: देखिए, आपने गुजरात का जिक्र किया, उससे पहले मैं एक रोचक इंसिडेंट बताऊंगा। ये करीब 2018-19 की बात होगी, मैं कहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, स्पेन गया था, तो वहां पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पर मैंने कॉन्फ्रेंस हॉल देखा तो मुझे, मेरे दिमाग में पहली बात यह आई कि ऐसे हॉल, ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल हमारे देश में क्यों नहीं है। ये बात तब तक है, तब तक मैं गुजरात नहीं गया था। स्पेशली मैं जो गुजरात में गांधीनगर में महात्मा मंदिर बनाया वो मैंने नहीं देखा था। उसके 6 महीने बाद ही मुझे वहां पर जाने का मौका मिला और तो मैं देख के दंग रह गया कि हमारे देश में ऐसा हॉल पहले से मौजूद है। जब मैंने महात्मा मंदिर देखा और उसका जो स्टाइल देखा, जिस प्रकार से वहां पर सारे सिस्टमेटिक हैं, वही चीजें भारत मंडपम में और यशोभूमि में भी हैं, विज्ञान भवन में वो चीजें नहीं है, विज्ञान भवन बहुत पहले का बना था और एक सीमित कैपेसिटी का हॉल था, और हमारे पास तब ले देखे दिल्ली में विज्ञान भवन ही हुआ करता था और सारी कॉन्फ्रेंस उसी में सीमित होती थी। और अगर मुझे ये भी याद है कि एक 2006-07 के आसपास कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूसा में हुई थी, और वहां पर क्योंकि बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और हमारे पास कोई हॉल नहीं था और विज्ञान भवन से काम नहीं चल रहा था या वहां पर कोई बिजी था, तो बाहर टेंट लगाया गया था, एक बहुत बड़ा टेंट जैसे पब्लिक रैलियों में लगाया जाता है, पॉलिटिकल रैलियों में लगाया, उस तरह का एक टेंट लगाया गया था। तो जब 2019 या 20 में मैं दोबारा महात्मा मंदिर में गया और मैंने वहां देखा कि मैंने कहा इतना शानदार हॉल गुजरात में बन सकता है और उससे 4-5 साल पहले वो बन चुका था, तो फिर ऐसे हॉल दिल्ली में क्यों नहीं। तो उसके बाद फिर ये सब चीजें चलते रही, दिल्ली में बनी, यशो भूमि तैयार हुआ और G20 का हमने सफल आयोजन देखा, 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल हुए। तो ये एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ पहल है और एक ये सोच जो थी कि भारत एक विकासशील देश है या एक गरीब देश है, एक सोच बनी रहती, जब भी कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है वो लगता था कि भारत भाई एक विकासशील देश है या गरीब है। भारत एक विकासशील देश जरूर है, लेकिन वो एक विकसित देशों की ओर बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ देश है। और उसकी जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार की बात अभी सर ने बोली, तो जिस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लक्ष्य हमने रखा है 2047 तक, वहां तक हम निश्चित रूप से पहुंचेंगे। तो उसी की दिशा में, उस दिशा में ये जो चाहे वो महात्मा मंदिर हो, चाहे वो यशो भूमि हो, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग हो जिसका अभी निर्माण हाल ही में हुआ है, और सेंट्रल विस्टा का जिस तरह से तेजी से विस्तार हो रहा है, तो सबसे पहले हमें अपने जो एक सरकारी सिस्टम है, सरकारी तंत्र है, उसको काम करने के लिए जब तक हम बेहतर सुविधाएं प्रदान नहीं करेंगे और उसको हम एक वर्ल्ड क्लास का नहीं बनाएंगे और उसको मॉडर्न जरूरतों के हिसाब से तैयार नहीं करेंगे, चाहे वो सिक्योरिटी जरूरतें हों, चाहे वो फायर सेफ्टी की जरूरतें हों, चाहे वो एक ह्यूज कैपेसिटी डेवलप करने की जरूरत हो, जब तक हम उस हिसाब से नहीं बनाएंगे तब तक हम जो अपने लक्ष्य हैं, जो अपने बड़े लक्ष्य हैं, तो उसमें भी शामिल कैसे होंगे। अगर सपोज कीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा बहुत अच्छी तरक्की करे, तो मुझे उसे बेसिक संसाधन, बेसिक सुविधाएं उसे देनी पड़ेंगी, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे उसे कपड़े देने होंगे, अच्छे जूता पहनाना होगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार जब हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हम सिर्फ ये नहीं समझें कि सड़क और एयरपोर्ट, ऑफिस भी अच्छा होना चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी होना चाहिए, अच्छी पार्लियामेंट भी होना चाहिए, एक सरकारी दफ्तर है तो वहां पर हमारा फास्ट इंटरनेट भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं और गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये हम लगातार देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और कई चीजें बेहतर होंगी।
0: जी सुरेश जी, हमने यशो भूमि का जिक्र किया, हमने गुजरात के कुछ संस्थानों का जिक्र किया, 3 और ऐसी पृष्ठभूमियां हैं, कर्तव्य पथ, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन। इसमें जो खास रहा, राज से कर्तव्य की ओर बढ़ना और सत्ता से सेवा की भाषा को बदलना, कैसे देखते हैं आम जनमानस के नजरिए से और इसे प्रशासनिक सुधारों के भी नजरिए से, जो राज था वो कर्तव्य बन गया, जो सत्ता था वो सेवा की भाषा बन।
1: बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जब पहले पदभार संभाला 2014 में, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक, वहीं से ही यह यात्रा शुरू होती है। तो अपने आप को सत्ता का अहंकार के जगह सत्ता में जो विनम्रता आनी चाहिए कि सत्ता जो है वो लक्ष्य नहीं है, वह एक माध्यम है, सेवा का माध्यम, वह जो है एक साधना है जिसके माध्यम से हम दीनदयाल जी का जो अंत्योदय की जो बात कही थी या गांधी जी ने दरिद्र नारायण की जो बात कही थी, उनको वहां से उठाकर उनको जो है एक विकसित भारत में, जहां विकसित भारत सिर्फ अधोसंरचना नहीं है, वहां हर व्यक्ति को अपना जो है जो हक है उसका अधिकार है वह प्राप्त होगा और सही मायने में हम स्वतंत्र होंगे। याद रखिए, हम स्वाधीन जरूर बने 1947 में, लेकिन स्वतंत्र, हमारा अपना, हमारे सड़कों का नाम विदेशियों के नाम पर होता था, हमारे भवन जो है विदेशियों का बनाया हुआ था, हमारा अपना क्या। स्वाधीनता से स्वतंत्रता की जो यात्रा है, और खासकर अमृतकाल में जो हमने 1947 से लेकर 2022 तक जो हमने जो 75 वर्ष और अमृत महोत्सव बनाया, और वहां से शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना है, वहां तक पहुंचने की जो यात्रा है, उसमें ये बहुत आवश्यक है कि हमारा जो है न सिर्फ हमारे अधिकारों की बात हो, साथ साथ हमारे दायित्व बोध भी हो। ये बहुत आवश्यक है, एक नागरिक को दायित्व बोध, और नागरिक कोई नहीं, सत्ता में जो बैठा है उसको भी। इसलिए राजपथ जो है कर्तव्य पथ बना, कि कर्तव्य पर जोर है, हम सबको अपना कर्तव्य निभाना है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करते रहे हैं हमेशा, तो राइट सेंट्रिक जो एक आख्यान रहा है उससे हटकर हम जो है दायित्व बोध पर केंद्रित, हर नागरिक अपना योगदान दे और उस पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री जी सेवा तीर्थ, अपने कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखते हैं, क्योंकि ये सेवा का जो है सबसे बड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से ही सारा नीति निर्धारण होता है, तो अगर वही सेवा तीर्थ हो गया तो आप समझिए कि क्या संदेश नीचे तक पूरे प्रशासन कि हम यहाँ सत्ता भोगने नहीं आए, सत्ता को सेवा का एक माध्यम बनाकर हम आए, तो इसलिए हम

0: सभी सुविधाओं से सुसज्जित है, लेकिन साथ ही साथ जो है उसमें आप देखेंगे, मुझे कहते हुए ये है कि अफसरों के कमरे जो बड़े बड़े होते थे, आज उतना ही समय जो फंक्शनल जिसको कहते हैं कि आपको कमरे की आवश्यकता है, कमरा है जहां से आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन उतना ही पब्लिक को बैठने की जगह, जहां लोग मिलने जाते हैं उनको बैठने की जगह, बाकी जो जन सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध किया गया है। बहुत सोच समझ कर, एक जनता को केंद्र में रखकर इन भवनों का निर्माण किया गया है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इन सब के मध्य में जो है वह अंत्योदय में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वह लोक दरिद्र नारायण है, जिसके सेवा के संकल्प को प्रधानमंत्री जी ने साकार करने का प्रयास किया है।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरा होने पर विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा में ये विशेष एपिसोड। आज हम चर्चा कर रहे हैं नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान पर, और हमारे साथ स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान हैं, प्रोफेसर केजी सुरेश और मदन जेड़ा जी। मदन जी, ये सब कहानियां भारत को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में की जा रही हैं, और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो क्षेत्रीय संपर्क एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। एविएशन सेक्टर और क्षेत्रीय संपर्क की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु का केम्पागोड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल 2, गुवाहाटी का नया टर्मिनल और आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी लोकप्रिय है, ये तीन अलग अलग रणनीतियों को दर्शा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो 6 रनवे के साथ एशिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स और पैसेंजर हब के रूप में उभरेगा। वहीं गुवाहाटी एयरपोर्ट पूर्वोत्तर को एशियन देशों के साथ अष्टलक्ष्मी एक्सप्रेस वे के रूप में जोड़ रहा है। आपसे समझना चाहते हैं कि सार्वजनिक अवसंरचना का ये क्षेत्रीय संतुलन भारत के आर्थिक नक्शे को किस तरह रीडिजाइन कर रहा है।
2: देखिए, दो तीन चीजें हैं, हमें ये देखना होगा पिछले कुछ सालों से। एक तो हमारा जो एयर पैसेंजर है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है और बहुत तेजी से एयर पैसेंजर बढ़ रहा है। दूसरी बात है कि जो कार्गो है, एयर कार्गो है, वो उसकी तादाद भी लगातार बढ़ रही है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट का भारत की तरफ रुझान है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा हो, चाहे वो धार्मिक पर्यटन की वजह से आ रहा हो, चाहे वो गोवा या एक उत्तराखंड में जो हिल एरिया का टूरिस्ट है उसकी वजह से आ रहा हो, तो कई कारणों से टूरिस्ट भारत आता है, इलाज से लेकर पर्यटन तक और धार्मिक कारणों से, उसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुझे डाटा अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आप डाटा देखेंगे तो लगातार तीनों सेक्टर में टूरिस्ट बढ़ रहा है। तो इसके लिए कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट हों और जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट हैं उनको बेहतर बनाया जाए और उनको एक नई पहचान दी जाए। अगर आप बेंगलुरु का टर्मिनल 2 अगर देखें तो बेंगलुरु एक आईटी का बहुत बड़ा हब है और इसको कोई बताने की जरूरत नहीं कि वहां पर एक किस प्रकार से सारी दुनिया की जो आईटी कंपनियां हैं, चाहे अमेरिका में हमारा कितना ही स्टेक है आईटी का, तो उसका जो ड्राइवर है, की ड्राइवर एरिया है वो बेंगलुरु है। तो वहां पर एक जो लगातार एक पैसेंजर का ट्रैफिक है वो बड़ा है, लगातार बड़ा है, तो उसका टर्मिनल 2 जो बनाया गया है उसी के पीछे यही रणनीति है कि वहां पर वो व्यवस्था आसान हो और दुनिया के जो बड़े आईटी हब हैं और जो औद्योगिक हब हैं या जो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं, उन शहरों को बेंगलुरु से डायरेक्ट जोड़ा जाए, और जोड़ा भी गया है और बेहतर जोड़ा गया पहले से। तो इसलिए बेंगलुरु एयरपोर्ट का अगर उसका हम लोकल पहचान में देखें तो वहां पर उस एयरपोर्ट की खूबी है कि वहां पर पेड़ बहुत लगाए गए हैं, तो उसकी जो थीम है वो एक गार्डन बेस्ड थीम बनाई गई है, तो एक भारत की एक अलग पहचान दी गई है कि भारत एक वनों का देश है, भारत में वनस्पतियां बहुत सारी हैं। इसी प्रकार जो गुवाहाटी का एयरपोर्ट है तो उसको भी ये इसी तरह की पहचान दी गई है, वहां पर करीब 100 से ज्यादा जो प्रजातियां हैं उनके 100,000 से ज्यादा पेड़ वहां पर लगाए गए हैं, वो उसको एक सुंदरता के लिए, उसकी क्षेत्रीय पहचान देने के लिए। नॉर्थ ईस्ट हमारा काफी एक रिच कल्चरल और हैबिटेशन का रिच एरिया है, तो उसकी वजह से वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भी ये चीज नजर आएंगी। जहां तक गुवाहाटी एयरपोर्ट की बात है तो गुवाहाटी एयरपोर्ट वैसे तो आज नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसमें सिविल एयरपोर्ट भी हैं और जो डिफेंस पर्पज के एयरपोर्ट हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। जो पुरानी एयर पट्टियां थी उनको लगातार डेवलप किया गया है और वहां पर जो बड़े प्लेन है, चाहे वो डिफेंस के हों चाहे वो पैसेंजर प्लेन हो, वो कनेक्टिविटी बढ़ी है। लेकिन गुवाहाटी चूंकि एक मेन एरिया है और वहां पर कहें कि नॉर्थ ईस्ट का वो द्वार है और वहां पर हमें ज्यादा कनेक्टिविटी की जरूरत थी और वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो इसलिए उस एयरपोर्ट को डेवलप करने का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी को बेहतर करना, क्योंकि दिल्ली से फ्लाइट जा रही है, अगर वो गुवाहाटी उतरती है तो गुवाहाटी से फिर वो हेलीकॉप्टर और छोटे प्लेन से आगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो इसलिए गुवाहाटी एयरपोर्ट भी रणनीतिक तौर पर उसका टर्मिनल 2 जो बनाया गया है उससे कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है और ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी उससे दिल्ली से बेहतर हुई है। अगर हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत ही बिजी एयरपोर्ट में एक है और लंबे समय से बात चल रही थी, और मुझे तो आश्चर्य है कि 2001 में पहली बार ये बात शुरू हुई थी कि हमें जेवर में एक एयरपोर्ट बनाना है, लेकिन वो लटकते रहा, आखिरकार 2018-19

0: इस पे काम शुरू हुआ और ये 2026 की शुरुआत में वो एयरपोर्ट चालू हो पाया। तो ये भी एक सवाल है कि आखिर इतना डिले क्यों हुआ, ये पहले बन जाना चाहिए था। जब 2000 से बात चल रही थी तो पैसे पहले इस पे क्यों फैसला नहीं लिया। तो जहां पर ये एयरपोर्ट से एक लॉजिस्टिक हब राजधानी एनसीआर में कनेक्ट हो रहा है और जो ये प्लान है फ्यूचर में कि जो लॉजिस्टिक प्लेन है उनको जेवर में उतारा जाए ताकि जो दिल्ली के जो एयरपोर्ट है वहां पर पैसेंजर प्लेनों को ज्यादा उतारा जाएगा, तो इससे एक बैलेंस बन जाएगा यहाँ पर। और कई बार हम सुनते हैं, मीडिया में भी रिपोर्ट आती है कि लैंडिंग के लिए इतना टाइम पालम पर लग रहा था कि एक घंटे हवाई जहाज हवा में चक्कर काटता रहा क्योंकि लैंडिंग के लिए उसे रनवे खाली नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि ये समस्या दूर होगी और जो जेवर एयरपोर्ट की वजह से वहां पर एक लॉजिस्टिक हब धीरे धीरे बन रहा है और आने वाले समय में सारे अगर कार्गो प्लेन वहां पर लैंड होते हैं तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र का तो विकास होगा ही, बाकी जो दिल्ली के एयरपोर्ट हैं उनका जो लोड है वो काफी कम होगा। और अभी रिसेंटली अगर हम एक एग्जांपल दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ आए थे, तो जब किसी बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनकी पर्सनल कार, सामान, तमाम कमांडो उनके पहले आ जाते हैं, दोनों पहले। तो दो बड़े बड़े प्लेन उनके जब आए तो वो जेवर एयरपोर्ट पर उतरे, क्योंकि जब दो बड़े प्लेन अगर वो पालम पर उतरते तो वहां पर वो दो दिन खड़े रहते तो वहां पर उतने पार्किंग का स्पेस की प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि वो बड़ा बिजी एयरपोर्ट है। तो अगर ब्रिक्स में रिसेंटली जो ब्रिक्स हुई तो उनके प्लेन दो दिन वहां पर खड़े रहे, तो मुझे लगता है कि ये भी एक फायदा है कि इस तरह की कभी स्थिति आती है तो उससे भी फायदा मिलेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं इनके।
1: सुरेश जी कहते हैं कि एक राष्ट्र केवल भवनों से नहीं बनता, अपनी स्मृतियों और शहीदों के सम्मान से भी बनता है। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि जलियांवाला बाग का सौंदर्यीकरण करवाया गया हो, चाहे नेशनल वॉर मेमोरियल जहां पर अनगिनत शहीदों के नाम उकेरे गए हैं, और जब एक देश का युवा जाकर उन शहीदों के नाम को स्पर्श करता है तो एक अलग अनुभूति होती है। साथ ही साथ नेशनल पुलिस मेमोरियल भी बनाया गया है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये स्थल देश के आम नागरिक में कैसे देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं और विकसित भारत बनाने की दिशा में इनकी क्या भूमिका है।
2: निश्चित ही इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, हम सब इंडिया गेट में जाते रहे हैं, अमर जवान ज्योति है वहाँ, जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी में जो है राष्ट्रपति स्वयं जाके वहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन याद रखें कि वो अंग्रेजों ने बनाई थी और उसमें विश्व युद्ध में जो भारतीय या भारतीय सेना में उस वक्त जो अंग्रेजों के अंतर्गत था उन लोगों के नाम जो है वहाँ जोड़े गए हैं। भारतीय थे, इसमें कहीं कोई भी फौजी का जब शहीद होता है तो वो सम्मान के पात्र है। लेकिन भारत का अपना, भारत ने इतने युद्ध लड़े 47-48 में, 62 में 65 में, करगिल में, उनको भी तो सम्मान देना जरूरी है। तो वो लोग जिन्होंने नए भारत के लिए अपना प्राण निछावर किए, जो शहीद हुए, जिनके वजह से हम लोग हैं आज चैन की नींद सो पा रहे हैं, क्या उनको एक श्रद्धांजलि, एक ऐसा एक उपयुक्त स्थल आवश्यक नहीं था क्या नवीन भारत में? बिल्कुल। मैं समझता हूं कि जो वार मेमोरियल बना है उस दिशा में हमारे अंदर न सिर्फ एक स्वाभिमान का भाव जगाता है अपितु हमारे फौजियों के प्रति, हमारे सिपाहियों के प्रति, जवानों के प्रति हमें एक सम्मान पैदा होता है और हमारे युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं देश के लिए, कि मैं भी इतिहास में अपना एक जगह पाऊं, कि मैं इन वीरों ने जो कुर्बानी दी है, जो बलिदान दिया है, जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उस कारण जो है आज हम आजादी का जो है चैन की सांस ले पा रहे हैं। उस महत्व को समझने की आवश्यकता है। जलियांवाला बाग, मैं अभी भी अमृतसर गया था, जलियांवाला बाग में जो है मैं समझता हूं कि हमारे सबसे खूनी अगर अध्याय हमारे इतिहास में रहा तो वो वहां रहा। बेकसूरों को मार दिया गया गोली मारकर, और क्या उनके लिए एक ऐसा स्मृति स्थल आवश्यक नहीं था क्या? बिल्कुल, वो उपयुक्त हो। पहले भी मैं गया हूं वहां, बड़ा मायूस होकर मैं लौटा कि एक ऐसे जगह जहां कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं, उन जनसाधारण का, जिनको मात्र इसलिए गोलियों से भून दिया गया क्योंकि वे भारतीय हैं, इसलिए उनको भून दिया गया, क्या उनके बलिदान को क्या हम कम आंके? तो मैं समझता हूं उनको भी वही सम्मान मिलना चाहिए। पुलिस मेमोरियल, हमारे पुलिस कर्मी दिन रात 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं, क्या उन पुलिस कर्मियों के लिए? और याद रखें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, अर्धसैनिक बल भी पुलिस में ही शामिल होती है, और उन्होंने चाहे वो BSF हो या ITBP हो, इन लोगों ने भी बहुत शहादत दी है हमारे सरहदों, तो उनके लिए क्या जरूरी नहीं है? वो एक उत्तर पूर्व में एक आलेख है जो उनके वहां लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए दिया। दे गेव देयर टूडे फॉर अवर टूमोरो।

0: उनको हम लोग सम्मान करें, उनके स्मृतियों को सम्मान करें, उनके परिवारों को एक जगह मिले जहां जाके वो अपना श्रद्धांजलि दे सकते हैं। क्या ये कोई भी देश एक कृतज्ञता ज्ञापन होता है कि उन लोगों के लिए, ये नहीं कि वो जो है उन्होंने अपना कर्तव्य किया। क्या हर आदमी ऐसा कर्तव्य कर सकता है क्या? तो उस पराक्रम को पहचानना, उसको सम्मान देना, और वहां जब हमारे राष्ट्रीय नेता जाते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम उन पुलिस कर्मियों को बता भी रहे हैं जो वर्तमान में भी है कि पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा हुआ है। ये संदेश बहुत आवश्यक है और ये नए भारत की पहचान है, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि है, उनका वो भारतीय दृष्टिकोण है कि उन्होंने जो है इन चीजों को भी उतना ही महत्व दिया जितना कोई एक अंतर्राष्ट्रीय सभागार निर्माण करने के लिए दिया हो, उतना जितना उन्होंने नए भवनों के लिए और नए संसद के लिए दिया हो, वही महत्व जो है उन्होंने इस बिल्कुल संजीदगी की जहां जरूरत है, संवेदनशील जो आवश्यकताएं हैं, उसको भी उन्होंने उतना ही दिया।
1: इसी चर्चा को मदन जी अगर थोड़ा आगे लेकर चलें तो स्मृति वन जो लगभग 470 एकड़ में है, और हमारे श्रोता जानते हैं कि जब कच्छ में भूकंप आया था उसके बाद इसका निर्माण वहां पर करवाया गया, उसमें मेमोरियल के साथ साथ अर्थक्विक म्यूजियम और डिजास्टर अवेयरनेस कंपोनेंट्स भी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये भारत में मेमोरियल को लिविंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की नई प्रवृत्ति का एक शानदार उदाहरण है?
2: निश्चित रूप से है, क्योंकि इसलिए है भुज में जो भूकंप आया था तो उसकी त्रासदी, उसमें बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी और काफी लोग उसमें मारे गए थे, तो मुझे लगता है कि ये देश में आया अब तक का सबसे बड़ा भूकंप था। तो एक जब कोई भूकंप आता है तो जाहिर सी बात है कुछ समय तक राहत कार्य चलते हैं, फिर उसके बाद कुछ और फैसले होते हैं, लेकिन उसके बाद वो घटना भूल जाते हैं लोग, फिर उसके बाद फिर कोई भूकंप आता है तो फिर वही चीज़ें होती। लेकिन गुजरात में इस भूकंप को आया तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, ये स्मृति वन भी बनाया गया, और उसमें जिस प्रकार से स्ट्रक्चर को डिस्प्ले किया गया है, और मैं समझता हूँ कि हल्के भुज में जो उसके बाद भुज में जो भी मकान बन रहे हैं वो आर्थिक रेजिडेंस बन रहे हैं, ये भी एक बात है। लेकिन ये जो स्मृति वन वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा प्रचारित करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक भूकंप एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता आज तक। साइंस इतना आगे बढ़ गया लेकिन भूकंप का प्रिडिक्शन अभी तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन भूकंप से 100% बचाव संभव है। भूकंप रोधी इमारतें बनाई जा सकती हैं, और जो इमारतें पहले से भूकंप रोधी नहीं हैं उनको भी आप थोड़ा बहुत काम करके भूकंप रोधी बना सकते हैं। यही चीज शायद स्मृति वन में भी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे आप भूकंप से बच सकते हैं, कैसे लोगों का अवेयरनेस होना चाहिए, और इसके अलावा बाकी जो उन लोगों की स्मृति में बनाया गया, जो लोग उसमें मारे गए उन लोगों को श्रद्धांजलि तो है ही। तो मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को देश के दूसरे हिस्सों में प्रचारित किए जाने की जरूरत है, और भूकंप को लेके, भूकंप के खतरों को लेके और इसके बचाव के तरीकों को लेके लोगों को बड़े पैमाने पर अवेयर किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जो साइंटिफिक रिपोर्टें हैं वो अभी भी हमारे लिए चेतावनी वाली हैं, और जो ये बताती हैं कि भारत के बहुत सारे हिस्से भूकंप के जोन 4 या जोन 5 में हैं। तो जोन 4 और जोन 5 सबसे खतरनाक माना जाता है, तो इस जोन में बहुत सारे इलाके हैं, चाहे वो पहाड़ के इलाके हैं, दिल्ली के कई इलाके जोन 4 में हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम जो स्मृति वन का कॉन्सेप्ट है इसे प्रचारित कर सकें तो एक लोगों को जागरूक करने में काफी अच्छी मदद मिलेगी, और लोग अपने घरों को भूकंप से बचाव के अनुरूप बनाने में सफल भी होंगे।
1: सुरेश जी, अब उस जगह चलते हैं जहां से पूरे देश की नीतियां बनती हैं। दशकों तक भारत उस संसद में बैठता रहा जिसे अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन के लिए बनाया था। लुटियंस दिल्ली की उन चौड़ी सड़कों और इमारतों में एक किस्म की अहंकार और दूरी की गूंज थी। फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बना। एक शिक्षाविद के नाते आपसे ये समझना चाहेंगे कि केवल ईंट और पत्थर का बदलाव है या फिर ये बदलाव उस सोच का है जो भारत की सांस्कृतिक पहचान भी वहां दर्शाई गई है। भविष्य में जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी उसके लिए भी वहां पर सुविधाएं की गई हैं। कह सकते हैं कि वो ईंट और पत्थर के बदलाव से कहीं ज्यादा भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक साथ ही साथ विकास की नई रफ्तार को गति देने वाला वो इमारत है।
0: निश्चित ही, देखिए जो नया संसद भवन है वो नए भारत की पहचान है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन में सेंगोल जो प्रतीक है, वो प्रतीक है कि क्या संसद का अधिकार क्या है, उसका प्रतीक है, वो जनता का प्रतीक है सेंगोल, वहां स्थापित किया। और याद रखिए सर्वधर्म प्रार्थनाएं वहां हुई थी, उसके साथ वो शुरू किया गया था। भारत के जो जिसे कहते हैं कि सर्व पंथ समाभाव के भावना को प्रतिनिधित्व किया गया वहां, प्रतिबिंबित किया गया वहां। और जब ये उद्घाटन हुआ तो आप उस भवन

0: इमारतों को देखेंगे, उस नए भवन को देखेंगे, तो उसमें नए भारत की, वो कहीं विदेश से कोई किसी चीज को आयातित किया नहीं है। हालांकि यह भी बताया जाता है कि जो पुराना संसद भवन है वो भी जो है आप सांची में जो एक बना हुआ था स्तूप, उसी से प्रेरित होकर बनाया था। लेकिन यहाँ प्राचीन हमारे सभ्यता के प्रतिबिंब होने के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से, और जैसे आपने कहा भविष्य की, अगर आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे और प्रतिनिधित्व की जरूरत है, क्योंकि हमारी आबादी आजादी के समय जो आबादी थी उससे 10 गुना बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है, आज उस आबादी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए या नहीं? जहां लाखों लोगों का एक प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या वहां संख्या बढ़ना चाहिए या नहीं? तो ऐसे में, और हम आज बात कर रहे हैं कि एक तिहाई प्रतिनिधित्व हमारे माता और बहनों के लिए हम सोच रहे हैं, उसका विधेयक प्रस्तुत हो चुका है, और जब ये संख्या बढ़ेगी तो उनको कहां बिठाएंगे? कभी भी संसद का संयुक्त अधिवेशन होता था तो सेंट्रल हॉल में जाना पड़ जाता था, लेकिन अगर संख्या बढ़ेगी तो फिर उनको कहां बिठाया जाएगा? बाकी व्यवस्थाएं की गई है, उससे आपको स्पष्ट होता है कि वहां उस विरासत और विकास दोनों को प्रतिबिंबित करते हुए उसको जो है तैयार किया गया है, और आधुनिक भारत का एक प्रतीक बनकर वो उभरा है। तो मैं समझता हूं कि हम सबके लिए गर्व की बात है। निश्चित ही जो पुराना संसद भवन है वह भी हमारा है, उसमें हमारे भारतीय जो मजदूर है उनके मेहनत से वो बना है, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस संसद भवन में निर्णय लेते हैं जो हमने बनाया, वो किसी विदेशी का बनाया हुआ नहीं है, वो नए भारत का जो है बुलंद आवाज है।
1: मदन जी, जब कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो आपसे समझना चाहेंगे कि 25 वर्षों की इस यात्रा में बनी इन सार्वजनिक संरचनाओं में से आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या होने वाली है? उनका आकार, उनका स्थापत्य कला, या फिर उनका उपयोग, या वो कहानियां जिन्हें वे आने वाली पीढ़ियों को सुनाने वाले?
2: देखिए, तीनों बातें सही हैं। ये एक हमारे विरासत को भी प्रदर्शित करती हैं, दूसरा हमारी जरूरत भी है। जैसे मैंने कहा कि सर ने भी बताया कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग क्यों बनानी पड़ी, जरूरत भी थी उसकी सिर्फ, और बाकी जो भारतीयता की पहचान है, एक नई पहचान देने की कोशिश की गई है, वो भी है। तीनों बातें हैं। इसी प्रकार अगर हम सेंट्रल विस्टा की बात करें तो सेंट्रल विस्टा हमारी विरासत की पहचान भी है, हमारी आज की जरूरत भी है, और जो एक नई पहचान देने की बात कही है, कर्तव्य भवन उसका नाम रखा गया, तो एक कर्तव्य पथ का जैसे नाम दिया गया, राजपथ नाम चल रहा था, कब से चल रहा था, क्यों चल रहा था, कोई नहीं जानता इस बारे में, और अब तक क्यों नहीं बदला गया कोई नहीं जानता। तो मैं कहूंगा कि जो नए भवन है, चाहे नए एयरपोर्ट है या नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, तो ये सबसे पहले हमारी जरूरत है, उसकी जरूरत थी। सेंट्रल विस्टा की अगर बात करें तो वहां पर जैसे हम 60-70 साल पुराने वो बिल्डिंगें थी, उस समय की जरूरत तब दूसरी रही होगी, उस समय जो सरकारी स्टाफ रहा होगा कम रहा होगा, अब बढ़ गया, तो स्थिति ये थी कि एक ही ऑफिस 4 अलग अलग बिल्डिंगों में चल रहा था, तो उसको एक साथ आने की कोशिश की गई, तो उससे जो एक इंटरनल कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हुआ। इसके अलावा जब वो बिल्डिंगें बनी उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो हम शास्त्री भवन से लेकर उद्योग भवन में देखते थे कि जिस कमरे में निकलो वहां पर तारों के इतने मोटे वहां पर गुच्छे लटके रहते थे, तो वो सिस्टम नई भवन में इस तरह से बनाया गया है कि आपका वो सीधे सर्वर से निकलेंगे और सर्वर तक ही पहुंचेंगे, वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। फायर सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग से लेके इन तमाम सेंट्रल सेक्रेटरियट के बिल्डिंग में बहुत बड़ा इशू था, फायर सेफ्टी की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इनको फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, भूकंप की हम बात कर रहे थे अभी, तो भूकंप रोधी भी बनाया गया, तो ये भी एक चुनौती थी। इसके अलावा जिस जमाने में बिल्डिंगें बनी होंगी उस समय सिक्योरिटी का उतना जरूरत नहीं रही होगी या उतना खतरा नहीं रहा होगा, आज सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, तो उस सिक्योरिटी को भी इनमें ध्यान में रखा गया। एंट्री एग्जिट पॉइंट पे कहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ खड़ा रहेगा, कहाँ पर उसके दूसरे जो उनके नेटवर्क होते हैं सिक्योरिटी के, उसकी भी सारी व्यवस्था की गई। पार्किंग बहुत बड़ा इशू था। अब आप जो पुरानी जो बिल्डिंगें थी सेंट्रल विस्टा की, जो सेंट्रल सेक्रेटरी जिसे हम कहेंगे, तो उसकी बिल्डिंगों में पार्किंग सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी, और आज जो नए हमारे कर्तव्य भवन बने हैं तो वहां पर इस तरह से मैनेज्ड पार्किंग है कि अगले कई सालों तक उसमें दिक्कत नहीं आने वाली, और अब तो उसे मेट्रो से भी जोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी एक विरासत भी है और हमारी जरूरत भी है, और एक नई पहचान भी इसके जरिए दी गई है।
1: सुरेश जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, इन सार्वजनिक पहचानों के माध्यम से भारत दुनिया को क्या संदेश दे रहा है?
0: एक आत्मनिर्भर भारत जो अपने इतिहास और विरासत पर गर्व करता है, और साथ ही साथ वो आधुनिक सुविधाएं जिसकी आवश्यकता है हमारे अपने लोगों के लिए, और उनके अंदर एक धैर्य और उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगाता है। जब नए भवनों को देखते हैं हमें गर्व ही नहीं आत्मविश्वास भी होता है, तभी जाकर हम जो है सही मायने में विकसित भारत की दिशा में जो है बहुत सकारात्मक और मजबूत कदम उठा पाए।
1: इमारतें बनती हैं लेकिन पहचान बनने में समय लगता है। पिछले 25 वर्षों की सार्वजनिक नेतृत्व यात्रा को देखें तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक तस्वीर लगातार विकसित होती दिखाई देती है। विकास की नई संरचनाएं, प्रशासन की नई जगहें, इतिहास की नई स्मृतियां और भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के नए मंच। लेकिन इन सब की अंतिम कसौटी एक ही है, क्या वे स्थान आने वाले वर्षों में नागरिकों के जीवन, भारत की स्मृति और दुनिया में भारत की पहचान को और बेहतर कर रहे हैं। और इन सब के साथ ही आज का ये विशेष अंक समाप्त होता है। सुरेश जी आपका, मदन जी आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: धन्यवाद।
4: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 20वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा नए भारत की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार मदन जैरा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: अरे मीहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
5: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
4: ओह रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
5: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
4: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
5: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपनी नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
6: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
7: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
6: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
7: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
6: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
7: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
6: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
7: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम।

0: आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:50 होने को है। कुछ पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम भारद्वाज से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी अटल टनल रोहतांग का दौरा, सुरक्षा के किए कड़े प्रबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज शासकीय सेवा में 25 वर्ष पूर्ण, मोदी विकसित भारत संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। भारत EFTA समृद्ध शिखर सम्मेलन 2026 आज। सम्मेलन में भारत और EFTA के सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। और राहुल गांधी की हिरासत के विरोध में प्रदेश कांग्रेस आज करेगी लोकभवन के बाहर प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों हिमाचल प्रदेश के अपने 3 दिवसीय आधिकारिक प्रवास पर हैं। प्रवास के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति का अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं जो अटल टनल रोहतांग का दौरा कर रही हैं। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अटल टनल का दौरा किया था। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबोधन के साथ ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अलग अलग हिस्सों से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बीच भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत आज प्रदेश भर में सेवा ज्योति यात्रा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि इस दौरान पार्टी के विभिन्न संगठनात्मक जिलों में वरिष्ठ नेता इन कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। बिंदल ने कहा कि सेवा भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि संगठन के संस्कार और कार्य पद्धति का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति आज भारत मंडपम में दूसरे भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में भारत और EFTA के सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के कारोबारी और प्रमुख हितधारक शामिल होंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
3: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
2: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं। ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज न करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी और हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को आगामी चुनावों में बड़ा मुद्दा बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरी है और मुख्यमंत्री भगवंत मान के करीबियों पर लगे आरोपों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने हिमाचल सरकार पर भी भ्रष्टाचार और बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर निशाना साधा। रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा दोनों राज्यों में सरकारों के कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने रखकर चुनावी मैदान में उतरेगी। राज्य सरकार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उनके स्थानीय उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद कर रही है। प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ग्राहक पसंद और बाजार की मांग समझने की जानकारी दी जा रही है, ताकि उनके उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बने और व्यवसाय टिकाऊ हो सके। अधिक जानकारी के लिए हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
5: प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग के सौजन्य से विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को बाजार में पहचान दिलाने के लिए समय समय पर बाजार सफलता एवं स्थिरता तथा उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य प्रतिभागियों के उत्पादों को बाजार में सफलतापूर्वक स्थापित करने, कारोबार को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने तथा उद्यमिता के क्षेत्र में उपलब्ध आधुनिक अवसरों और तकनीकों की जानकारी प्रदान करना है। इस दौरान प्रतिभागियों को ब्रांड पैकेजिंग, ग्राहक जुड़ाव, बाजार की मांग को समझने और उद्यमिता के आधुनिक तकनीकों के बारे विस्तार से जानकारी दी जाती है, ताकि स्थानीय स्तर पर तैयार किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और निरंतरता पर विशेष ध्यान देकर उन्हें प्रतिस्पर्धी बाजार में बेहतर पहचान दिलाई जा सके। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस आज लोकभवन के बाहर प्रदर्शन करेंगी। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। शिमला के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में आलू प्रसंस्करण और गुणवत्ता प्रबंधन को लेकर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कल से शुरू हुआ है। 8 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में भारत और बांग्लादेश से पेप्सिको के अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रसंस्करण योग्य आलू के उत्पादन, गुणवत्ता प्रबंधन, टिकाऊ खेती और आलू मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। संस्थान के कार्यवाहक निदेशक डॉ जगदेव शर्मा ने कहा कि प्रसंस्करण उद्योग किसानों और अनुसंधान संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय से उत्पादकता और किसानों की लाभप्रदता बढ़ाई जा सकती है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति के हिमाचल दौरे से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सम्मानित किए होनहार, कहा महंगे इलाज से राहत के लिए सस्ती चिकित्सा के विकल्प तलाशें एम्स। पंजाब केसरी का शीर्षक है, हिमाचल के ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना चिकित्सक की जिम्मेदारी। दैनिक जागरण की एक खबर है, सरकार ने पलटा कार्यवाहक कुलपति बवेजा का आदेश, सिद्धार्थ ही रजिस्ट्रार। हिमकेयर में अब मिलेगा 10 लाख का स्वास्थ्य कवच, शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, 5 लाख बेसिक, 5 लाख टॉपअप कवर देने की तैयारी में हिमाचल सरकार। हाईकोर्ट के हवाले से दैनिक भास्कर लिखता

है, सीनियर लैब तकनीशियनों को पंजाब के समान वेतनमान नहीं मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी अटल टनल रोहतांग का दौरा, सुरक्षा के किए कड़े प्रबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज शासकीय सेवा में 25 वर्ष पूर्ण, मोदी विकसित भारत संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 आज, सम्मेलन में भारत और EFTA के सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। और राहुल गांधी की हिरासत में विरोध में प्रदेश कांग्रेस आज करेगी लोक भवन के बाहर प्रदर्शन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों का कारवां।

गीतों का कारवां कार्यक्रम लेकर हाजिर है हम और आज मैं हूं आपके साथ रीना। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सौदागर फिल्म के खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास और सुखविंदर सिंह ने। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म हमसे। गायक कलाकार है मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म दिलवाले से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और अलका याग्निक। ये खूबसूरत सा संगीत है नदीम श्रवण का। गीत लिखा है समीर ने।

0: जब सुनाना हो दिल का हाल।
1: तो इसमें भाई क्या है सवाल?
0: क्योंकि हेलो धर्मशाला आ रहा है एक नए अंदाज में।
1: उठाइए फोन, मिलाइए हमारे स्टूडियोज का फोन नंबर
0: 01892224391।
1: कीजिए हमसे बात और सुनिए अपने पसंद का गीत।
0: रिकॉर्डिंग हर शनिवार को दिन में 1:30 से 2 बजे तक होगी।
1: कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा प्रत्येक मंगलवार सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, क्योंकि हेलो धर्मशाला पहुँचे दिल से दिल तक
0: आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोता कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की मिलीजुली आवाजों में फिल्म हिना से ये गीत। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म हिम्मत वाला से ये गीत। गायक लगा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर। संगीत बप्पी लहरी का है

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस लोक भजन के साथ, जिसे गाया है अशोक चौधरी ने।

0: टोल रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय।
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं सुनील राणा और मानसिंह की आवाज में ये लोकगीत।

0: अंदाज वही, कुछ अल्फाज है बदले,
1: सौगात नई, कुछ नए तराने,
2: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
0: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
1: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
2: 103.4 MHz आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
0: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
1: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
0: 103.4 MHz आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
2: जो पहुंचे दिल से दिल तक।
3: हिमाचली गीतों व लोक गीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं प्रेम सिंह व साथियों को।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं विनोद सोनी की आवाज में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने हिमाचल दौरे के आज दूसरे दिन अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल पर पहुंच गई हैं। इससे पहले वे टनल के नॉर्थ पोर्टल पर पहुंची, जहां पर उन्होंने ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल की। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। उनके दौरे को लेकर मनाली अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबोधन के साथ ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेता के अलग अलग हिस्सों से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बीच भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत आज प्रदेश भर में सेवा ज्योति यात्रा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि इस दौरान पार्टी के विभिन्न संगठनात्मक जिलों में वरिष्ठ नेता इन कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। बिंदल ने कहा कि सेवा भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि संगठन के संस्कार और कार्य पद्धति का अभिन्न अंग है। नेपाल और श्रीलंका का एक शिष्टमंडल आज जिला हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के मुख्यालय का दौरा करेगा। इस दौरान शिष्टमंडल के सदस्य बोर्ड की कार्यप्रणाली और श्रमिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर उन्हें बोर्ड की गतिविधियों से अवगत करवाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांगड़ा और नगरोटा बगवा में कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 4 वर्ष में 4 लाख नौकरियां देने का वायदा किया था, लेकिन इसके विपरीत आउटसोर्स कर्मियों की नौकरियां छीनी जा रही हैं। उन्होंने मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एक आउटसोर्स कर्मी द्वारा आत्महत्या के प्रयास का भी उल्लेख किया। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के रोबोटिक सर्जरी संबंधी दावों पर भी सवाल उठाते हुए मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक मशीनों और प्रशिक्षित सर्जनों का पूरा विवरण सार्वजनिक करने के लिए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने त्योहारों के मद्देनजर जिले में खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वे जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति और सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने खाद्य पदार्थों विशेषकर मिठाइयों और अन्य सामग्री की नियमित जाँच के निर्देश दिए, ताकि लोगों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण के लिए कर्मचारियों की तैनाती और उचित मूल्यों की दुकानों पर राशन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उपायुक्त ने गैस एजेंसियों को रूट चार्ट और सिलेंडरों के भार की नियमित जांच के निर्देश भी दिए। उन्होंने मिड डे मील के राशन का समय समय पर निरीक्षण करने को कहा। बैठक में उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने के आवेदनों पर भी चर्चा हुई। राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उनके स्थानीय उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने में मदद कर रही है। प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ग्राहक पसंद और बाजार की मांग समझने की जानकारी दी जा रही है, ताकि उनके उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बने और व्यवसाय टिकाऊ हो सके। अधिक जानकारी के लिए हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
1: प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग के सौजन्य से विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को बाजार में पहचान दिलाने के लिए समय समय पर बाजार सफलता एवं स्थिरता तथा उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य प्रतिभागियों के उत्पादों को बाजार में सफलतापूर्वक स्थापित करने, कारोबार को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने तथा उद्यमिता के क्षेत्र में उपलब्ध आधुनिक अवसरों और तकनीकों की जानकारी प्रदान करना है। इस दौरान प्रतिभागियों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ग्राहक जुड़ाव, बाजार की मांग को समझने और उद्यमिता के आधुनिक तकनीकों के बारे विस्तार से जानकारी दी जाती है, ताकि स्थानीय स्तर पर तैयार किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और निरंतरता पर विशेष ध्यान देकर उन्हें प्रतिस्पर्धी बाजार में बेहतर पहचान दिलाई जा सके। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं कव्वालियां। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म सिर्फ तुम की इस खूबसूरत सी कव्वाली के साथ, जिसमें संगीत नदीम श्रवण का है। कवाली लिखी है समीर ने और इसे गाया है जसपिंदर नुरूला और सबरी ब्रदर्स ने।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Why ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: जब सुनाना हो दिल का हाल
5: तो इसमें भाई क्या है सवाल?
4: क्योंकि हेलो धर्मशाला आ रहा है एक नए अंदाज में।
5: उठाइए फोन, मिलाइए हमारे स्टूडियोज का फोन नंबर
4: 01892224391।
5: कीजिए हमसे बात और सुनिए अपने पसंद का गीत।
4: रिकॉर्डिंग हर शनिवार को दिन में 1:30 बजे से 2 बजे तक होगी।
5: कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा प्रत्येक मंगलवार सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, क्योंकि हेलो धर्मशाला पहुँचे दिल से दिल तक
4: आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 103.4 MHz पर।
6: कवालियां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम की अगली कवाली आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बरसात की रात से। संगीत रोशनलाल नागरथ का है, गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और गायक कलाकार है मन्ना डे, आशा भोंसले, सुधा मल्होत्रा, एसडी बातिश और मोहम्मद रफी।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक वाई आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: सच्चाई छुप नहीं सकती।
5: दुश्मन इस फिल्म

अभी आप सुन रहे थे कवालियां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की अगली कड़ी।

0: सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी जी ने। लिखते हैं,
2: ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान उससे सबक लेकर संभल जाए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है साहू पारा सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू और दुलीचंद साहू जी का। वो लिखते हैं,
3: प्रिय उद्घोषक जी मन ला जय जोहार पहुँचे, आपके उमंग एनसीईआरटी कार्यक्रम ला ध्यान लगा के सुनथन, बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, तेवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी।
3: और छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू के साथ साथ शिवम साहू लिखते हैं, सादर नमस्कार,
2: मैं उमंग कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें मनोरंजन तो होता ही है और हमें ज्ञान और सीख व प्रेरणा भी मिलती है। और सफल प्रस्तुति के लिए उमंग परिवार और अजीत जी और विमलेश जी को हार्दिक बधाई।
3: अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर संतोष कायंदे, डॉक्टर अशोक इंगले, डॉक्टर संतोष वावगे और श्री संजय देशमुख लिखते हैं,
2: सीआईईटी द्वारा प्रस्तुत उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है
3: जी।
2: कल उमंग कार्यक्रम में दृढ़ संकल्प की धनी अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानकारी दी गई, जो हमें बहुत अच्छी लगी। हम लोग अकोट जिला अकोला में स्थित श्री शिवाजी महाविद्यालय में अध्यापक हैं। महाविद्यालय में जाने के लिए हर दिन हमें 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उमंग कार्यक्रम में दी जाने वाली रोचक जानकारी से हमारी हर दिन की यात्रा बहुत सुखद और आनंददायी बन जाती है।
3: आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम से न केवल हमारी यात्रा सुखद बनती है बल्कि उससे हमारा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया भी बहुत प्रभावी बन जाती है। उमंग कार्यक्रम हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी, अजीत जी, विमलेश जी और पूरी उमंग टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
3: श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की
2: जी।
3: आज हम आपको एशिया के एक ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो विमलेश जी जरा श्रोताओं को ये तो बताइए कि आज हम किस पुरस्कार की बात करेंगे।
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार की।
3: बिल्कुल सही,
2: लेकिन इस पुरस्कार के पीछे की कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा फिलीपींस के इतिहास में। तो आइए श्रोताओं शुरू करते हैं
3: मैग्सेसे पुरस्कार की कहानी। तो विमलेश जी पहला प्रश्न तो ये है कि इस पुरस्कार का नाम मैग्सेसे पुरस्कार क्यों पड़ा।
2: अजीत जी सचमुच ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल रेमोन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 31 अगस्त 1907 को फिलीपींस में हुआ था। वे अपने सरल जीवन, जनता से जुड़ाव और सार्वजनिक सेवा के लिए जाने जाते थे और जनता में बहुत लोकप्रिय थे
3: जी। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शासन में ईमानदारी और आम लोगों की समस्याओं पर बहुत ध्यान दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि उनके नाम पर पुरस्कार शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। इसके पीछे एक दुखद घटना है। 17 मार्च 1957 को एक विमान दुर्घटना में राष्ट्रपति रेमोन मैग्सेसे की मृत्यु हो गई। बहुत कम उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया।
3: और श्रोताओं उनकी स्मृति को जीवित रखने और एशिया में ऐसे लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1957 में रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई। पहला पुरस्कार समारोह 1958 में हुआ, लेकिन विमलेश जी श्रोताओं को हम ये भी बताना चाहेंगे जरूर कि ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है।
2: अजीत जी ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में समाज और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो, जैसे
3: सामाजिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, कला, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले लोगों को भी ये सम्मान मिल सकता है
2: जी।
3: भारत के कई उल्लेखनीय व्यक्तियों और संस्थाओं को भी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है।
2: मुझे लगता है इस पुरस्कार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमें बताता है समाज में बदलाव केवल बड़े बड़े नामी लोगों से नहीं आता।
3: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी गांव में काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने वाला शिक्षक, कोई सकारात्मक पत्रकार या सामुदायिक हित के लिए लगातार काम करने वाला व्यक्ति भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
2: यानी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की मूल भावना है निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी।
3: जी बिल्कुल, ये पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि किसी भी काम की महानता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसे कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उससे कितने लोगों के जीवनों में सकारात्मक परिवर्तन आया।
2: तो अजीत जी, अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या हमें किसी बड़े अवसर का इंतजार करना चाहिए?
3: बिल्कुल नहीं विमलेश जी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत अपने आसपास से ही की जा सकती है।
2: एक बच्चा पढ़ाना,
3: दूसरी बात किसी जरूरतमंद की मदद करना,
2: पर्यावरण की रक्षा करना,
3: ईमानदारी से अपना काम करना
2: और समाज में सकारात्मक सोच फैलाना,
3: ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
2: जी तो श्रोताओ, आज की कहानी हमें एक सुंदर संदेश देती है कि
3: सम्मान पाने के लिए महान काम मत कीजिए, महान काम इसलिए कीजिए क्योंकि उससे किसी का जीवन बेहतर हो सकता है।
2: और शायद यही रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की। अब सुनिए आज का प्रश्न।
3: तो हमारा आज का प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है?
3: आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
3: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
2: जी,
3: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम है अपना अपना काम।
2: NCERT की तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि हम सबका अपने परिवार और समाज में एक विशेष उत्तरदायित्व और कार्य है, उसे हमें पूरे समर्पण के साथ निभाते हुए कार्य करना चाहिए।

0: बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी।
1: हर पल चलती जाती चींटी, शम का राग सुनाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। ये हो गया मेरा स्कूल का काम। ओहो, मैं तो थक गई।
0: वो सोचने लगी,

0: का काम। स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता।
1: पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं।
2: मैं अभी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ।
1: भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली,
3: तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हमारे जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो?
2: मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ।
3: इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और
1: सिमरन ने कान बंद कर लिए।
2: सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी।
1: फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़।
2: हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता।
1: पेड़ हंसने लगा।
4: मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूं बस। सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं।
1: सिमरन ने आंखें झुका ली।
2: सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। लेकिन इस चिड़ियों की मौज है।
1: सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा,
2: हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था।
5: नाना, ये क्या सोच रही हो? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और तो और,
2: बस बस, मैं समझ गई।
1: वो सोचने लगी,
2: परिश्रम से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए।
1: उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई।
2: सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी।
6: तो बच्चों, सुना आपने? मधुमक्खी, चिड़िया, पेड़, चींटी सभी अपना अपना काम करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा अपना काम पढ़ाई के अलावा और भला क्या क्या हो सकता है? अपना काम हो सकता है जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, स्कूल से आकर बस्ता सही जगह पर रखना, और हाँ, माता पिता की जहां तक हो सके मदद करना, है ना? ये हमारा अपना काम। तो आइए, जब सब करते हैं अपना अपना काम, तो क्यों ना हम सब भी करें अपना अपना काम।
7: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम
8: शिक्षा के हम पंख लगा

0: और आइए अब सुनते हैं भारत के प्रथम इंजीनियर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम।
1: भारत ने सभी क्षेत्रों में एक से एक विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म दिया है। इन प्रतिभाओं का अमूल्य योगदान पूरी मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।
2: ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। वो एक अद्भुत प्रतिभा वाले विलक्षण अभियंता और युग दृष्टा थे। उनका जन्म कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर कस्बे में 15 सितंबर 1860 को हुआ था।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को मनाया जाता है। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकचम्मा था। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्ष गुंडम से यहाँ आकर बस गए थे, इसलिए मोक्ष गुंडम उनके पारिवारिक नाम में जोड़ा जाने लगा।
2: जब बालक विश्वेश्वरैया मात्र 12 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान पर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में हुई। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट ऐसा रहा कि उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ता था।
1: उन्होंने कठोर परिश्रम किया और परिस्थितियों से संघर्ष किया और आखिर आ ही गया वर्ष 1881, जब उन्होंने पूरे मैसूर राज्य में विज्ञान स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
2: बहुत अच्छा काम। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की सभा श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में बुलाई गई है, जिन्होंने पूरे मैसूर राज्य में प्रथम श्रेणी में सबसे अधिक अंक लाकर विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की है। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। भाई वाह, कमाल कर दिया। साथियों, इतना ही नहीं, आज ही विश्वविद्यालय में मैसूर राज्य के दीवान का संदेश आया है कि श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की आगे की पढ़ाई और बाकी पूरा खर्च मैसूर सरकार ही वहन करेगी।
1: पूना के साइंस कॉलेज से उन्होंने सन 1883 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और महाराष्ट्र सरकार के नासिक लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। भवन निर्माण, जल और नगर प्रबंधन जैसे कार्यों में उनका सानी नहीं था।
2: उन दिनों भारत आजाद नहीं हुआ था। हुआ ये कि सक्कर में पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई। बता दें कि सक्कर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ सिंध प्रांत का एक नगर है। इसे सुकूर भी कहते हैं। समस्या के निदान के लिए विश्वेश्वरैया जी को विशेष सलाहकार के रूप में ब्रिटिश सरकार के मुख्य अभियंता द्वारा सक्कर बुलाया गया।
3: सर, गुड
4: मॉर्निंग।
3: नमस्ते फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आज की खास बैठक सक्कर नगर पालिका में पानी की समस्या पर बात करने के लिए बुलाई गई है। हमें इसका समाधान खोजना है।
5: जी सर, इन दिनों अखबारों में भी इसके बारे में बहुत छप रहा है और जनता बहुत परेशान है सर।
3: ये एक सीरियस बात है। हमें खुशी है कि हमारी खास गुजारिश पर आज हमारे बीच मिस्टर मोक्ष गुंडम मौजूद हैं। आपने बहुत सी जगहों पर बहुत उम्दा काम किया है। मिस्टर मोक्ष गुंडम, हम आपके विचार जानना चाहते हैं।
6: धन्यवाद सर। हमें नदी के आसपास हर 500 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे खोदने होंगे ताकि बाढ़ के समय सिंधु नदी का पानी इन गड्ढों में भर जाए और वर्षा के जल का भंडारण हो सके। हमने बहुत से स्थानों पर इस तरीके को अपनाया है सर।
5: आप कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से बाढ़ का पानी गड्ढों में भर जाएगा? इससे बाढ़ का पानी शहर में भी नहीं जाएगा और पानी जमा भी हो जाएगा, है ना?
6: जी सर, और इसके अलावा हमें शहर की सभी ऊंची जगहों पर बड़ी बड़ी टंकियां बनानी होंगी।
5: क्यों?
6: ताकि वहां भी वर्षा का जल जमा किया जा सके।
5: हो,
6: और हाँ सर, ऊंटों द्वारा टंकियों तक जल पहुंचाया जा सकता है।
3: यू मीन वॉटर हार्वेस्टिंग। बहुत अच्छा विचार है आपका। मैं आपके डिपार्टमेंट को आज ही लेटर लिखता हूँ कि आपका तबादला कुछ समय के लिए शक्कर में कर दिया जाए।
6: थैंक यू सर, मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी सर।
3: ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम।
6: थैंक यू।
2: साथियों, विश्वेश्वरैया के सुझाव का परिणाम बहुत ही प्रभावी रहा। बाढ़ की समस्या से भी छुटकारा मिला और शक्कर जैसे शुष्क प्रदेश में जल की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई। ये परियोजना देश के बहुत से जल संकट का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए उदाहरण बन गई। इस समय उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। लोक निर्माण विभाग में रहकर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी ने कोल्हापुर, बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर, अहमदाबाद और पूना समेत कई शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं पर खूब काम किया था।
1: अब तक उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई थी। उन्हें मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त कर दिया गया और साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक संभाग का रेलवे सचिव भी। एक बार उनके साथ बड़ी रोचक घटना हुई। वो ट्रेन से लोक निर्माण विभाग के किसी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने जा रहे थे। ट्रेन में कई अंग्रेज भी थे।
2: सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे और ट्रेन तेज गति से चल रही थी। अचानक मोक्ष गुंडम उठे और ट्रेन की जंजीर खींच दी। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उनका अचानक उठना और तेजी से जाकर ट्रेन का जंजीर खींचना किसी की समझ में नहीं आया।
4: किसने खींची चेन?
5: सर, हमने नहीं किया। हाँ, हमने नहीं किया, इन्होंने किया है। हम तो मना कर रहे थे सर।
6: जी सर, मैंने ही चेन खींची है। सर, मुझे लगा कि आगे की पटरियां उखड़ी हुई हैं।
4: व्हाट? क्या मजाक है ये, आप कैसे कह सकते हैं?
6: श्रीमान, यदि विश्वास नहीं है तो चलकर स्वयं देख लीजिए।
4: आइए आइए, देखते हैं।
6: आइए, हम भी चलते हैं।
4: लेकिन मिस्टर, कान खोलकर सुन लीजिए, अगर बात आपकी गलत निकली ना तो आपको सजा हो सकती है। आइए।
6: ठीक है सर, मुझे मंजूर है।
2: और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की बात सच निकली। कुछ दूरी पर उन्हें पटरियां उखड़ी हुई दिखाई दी।
6: आइए सर, आइए देख लीजिए।
4: अभी तक तो यहां भी ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अरे एक मिनट, यहां पटरियां तो सच में उखड़ी हुई हैं। ये देखिए, यहां पटरियां उखड़ी हुई हैं। अब मिस्टर, आपको कैसे पता चला?
6: सर देखिए, जब सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त

0: थे तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन की गति में अचानक परिवर्तन आ गया है और पटरियों की आवाज भी बदल गई है। सामान्य स्थिति में ऐसी आवाज प्राय सुनाई नहीं देती है, तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
1: थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज बहुत से यात्रियों की जान बचा ली।
2: वी आर सो थैंकफुल टू यू, इट्स अमेजिंग। मे आई नो योर नेम प्लीज?
0: आई एम डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया।
2: ओह, द इंजीनियर इन चीफ ऑफ माइसोर स्टेट।
3: और रेलवे सचिव भी।
1: नमस्कार सर।
0: जी सर, मैं वही हूँ।
2: नमस्कार सर, नमस्कार। We were actually going to attend your meeting only. It's actually our privilege to meet you personally. Thank you very much, sir. Thank you.
0: धन्यवाद।
4: तो ऐसे थे डॉक्टर विश्वेश्वरैया। बांध बनाने की प्रक्रिया में स्वचालित जल द्वारों का प्रयोग उनका अद्भुत नवाचार था। इस तकनीक को डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम पर पेटेंट किया गया। आज भी ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है।
5: कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का नाम पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहा। मैसूर राज्य में उनके योगदान को देखते हुए मैसूर के महाराजा ने उन्हें सन 1912 में राज्य का दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया।
4: लोक निर्माण कार्य में उनके अतुल्य योगदान को देखते हुए उन्हें अनेकानेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1904 में उन्हें 50 साल तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद सदस्यता दी गई। 1921 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किए गए।
5: सन 1955 में कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। जब सर एम विश्वेश्वरैया 100 साल के हुए तब भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 101 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1965 को विश्वेश्वरैया का निधन बेंगलोर आज के बंगलुरु में हो गया।
4: सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता के कारण मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की गई। समाज के संपूर्ण विकास के उनके कार्यों के कारण ही उन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को उनके अतुल्य योगदान के लिए राष्ट्र और विश्व का आभार।
6: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
7: जी मैं रमेश, पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी, सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। और आज जिस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ रीना, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस देशभक्ति गीत के साथ जिसे हमने लिया है फिल्म क्रांति से। ये खूबसूरत सा संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का, गीत लिखा है संतोष आनंद ने, गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर।

0: हर दिन नई जानकारियों और मनोरंजन को लेकर आता है।
1: आपका अपना कार्यक्रम सुबह सुहानी,
0: बातें करेंगे हम आपसे, मनोरंजन की सौगात भी साथ होगी।
1: जब हम मिलेंगे आपसे सुबह 7:10 से 8 बजे तक,
0: ये वो समय होता है जब जुड़ते हैं देश विदेश की जानकारियों के साथ।
1: रोजाना ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचाते हैं,
0: तभी तो आपकी सुबह होती है और भी सुहानी।
1: तो सुनना ना भूलें मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम सुबह सुहानी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अनाड़ी से ये गीत। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और साधना सरगम। गीत के लिए संगीत आनंद मिलिंद का है और गीतकार हैं समीर।

सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं कुर्बान फिल्म से ये गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है सुहाग।

सैनिक साथियों कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मिस्टर नटवर लाल से ये गीत। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार। संगीत राजेश रोशन का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सखी सहेलियों का कार्यक्रम सुनो सखी।

स्वागत सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम सुनो सखी में। जी हाँ, बातों और गीतों के इस मिले जुले सफर में एक बार फिर से हाजिर हैं हम। और आज मैं हूँ आपके साथ, आप सबकी अपनी रेडियो सखी रीना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सखियों, बहुत दिनों के बाद आप सब सखियों के साथ मुलाकात हो रही है, तो आप सब सखियों का हाल चाल ज़रूर जानना चाहूँगी कि कैसी हैं आप सब सखियों और क्या कुछ चल रहा है आजकल। जी हाँ सखियों, बहुत सी जानकारियों और खूबसूरत गीतों के साथ फिर से आ गए हैं हम स्टूडियो में। बहुत अच्छा लगता है आप सब सखियों के साथ बातें साझा करना। तो बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात करेंगे मौसम की और सावधानियों की। जी हाँ, मौसम जी हाँ, आज मौसम ने करवट बदल ली है और हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश जो है वो कई जगह पर हो रही है। बादलों भरा ये मौसम है और बात करें बदलाव भरे इस मौसम की, तो धीरे धीरे ये बदलाव हम अब महसूस कर रहे हैं। कई लोगों ने तो सर्दियों के कपड़े आज पहन कर भी रखे हैं ताकि ठंड ना लगे। और वैसे भी सुबह शाम हल्की ठंड तो अब हो ही गई है और दिन में जब तेज़ धूप खिल रही है तो धूप में बैठने का मन अब कर रहा है। जी हाँ, गर्मियों में जिस धूप से हम भागते हैं भाई, धूप में बैठने का और उसका मज़ा लेने के दिन जो हैं वो आ रहे हैं। और अभी एक दो दिन मौसम के मिजाज बदलने की संभावना भी बताई जा रही है। बारिश या बादल रहने की का जो अंदेशा है वो लगाया जा रहा है। और साथ ही हमारे यहाँ आजकल खेती बाड़ी के काम भी चल रहे हैं या लोग सोच रहे हैं कि अब इनको शुरू कर दिया जाए। धान की कटाई का काम चल रहा है, तो यही कहना चाहूँगी कि अभी एक दो दिन रुक जाएं, मौसम का हालचाल देख लें ताकि आपकी मेहनत और फसल खराब ना हो। और सखियों, मौसम बदलाव भरा है तो इसी मौसम में हम सभी कई बार बीमार भी हो जाते हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार अक्सर इसी बदलाव भरे मौसम में होता है जिससे हम सभी ग्रसित हो जाते हैं। तो अपना ध्यान रखें क्योंकि ये बीमारियां एक दूसरे से बहुत ही जल्दी लग जाती हैं। और अगर किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी है भी तो वे पूरी तरह इसमें अपना ध्यान रखें। भीड़ भाड़ वाली जगह या जहाँ बहुत से लोग हों वहाँ पर ना जाएँ। मास्क पहन कर रखें ताकि आप खुद तो सुरक्षित रहें ही साथ ही साथ आपके साथ वाले भी सुरक्षित रहें। अपना बचाव अपने हाथों में होता है और आजकल के समय में तो हम सभी चाहते हैं कि हम सभी ठीक रहें, स्वस्थ रहें। जिस तरह से आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं और हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उस हिसाब से हम सभी को सतर्क और सजग रहना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छा खाना खाएं और अपने जीवन में योग, व्यायाम और सैर के लिए ज़रूर समय निकालें। सुबह शाम खुद के लिए वक्त निकालें। सबसे बड़ी बात, खुश रहें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। सकारात्मकता होना हम सभी के जीवन और स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। खुशी हमारे मन, हमारे चेहरे और हमारे स्वास्थ्य में चार चांद लगा देती है। आप अंदर से अगर खुश हैं तो ये आपके जीवन और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसलिए हमेशा खुश रहें सखियों और ये कोशिश करें कि आप औरों को भी खुश रखें। और हम तो हैं ही आप सब श्रोताओं के साथ, आपका ध्यान रखने के लिए, आपका मनोरंजन करवाने के लिए खूबसूरत से गीतों के साथ। तो चलिए, कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं एक खूबसूरत सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म भूल भुलैया से। सभी मिलकर सुनते हैं और बाकी की बातें हम करेंगे इस गीत के बाद।

0: पर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY, Y कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
4: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
6: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो। ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
5: RBI कहता है जानकार बनिए,
6: सतर्क रहिए।
7: खूबसूरत से गीत और विज्ञापन के बाद फिर से हाजिर हैं हम सखियों कार्यक्रम सुनो सखी में, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो सखी रीना। और अब हम बात करेंगे आज के खास दिवस की। जी हां, आज का दिन किस रूप में मनाया जाता है? जी हां, आज है 7 अक्टूबर और आज के दिन को हम मनाते हैं विश्व कपास दिवस के रूप में। इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य कपास के वैश्विक आर्थिक और सामाजिक महत्व को उजागर करना है। इससे कपास उत्पादक किसानों और श्रमिकों की आजीविका और स्थिति को बेहतर बनाना भी है। इसके साथ ही इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये भी है कि पर्यावरण अनुकूल और सतत व्यापार नीतियों को बढ़ावा देना। सखियो, कपास को विश्व भर में सफेद सोना कहा जाता है। ये एक प्राकृतिक रेशा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से वस्त्र निर्माण में किया जाता है। भारत में कपास का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय से ही यहाँ कपास की खेती और बुनाई होती आ रही है। इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली के द्वारा की गई थी। अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर हर साल 7 अक्टूबर को इस दिन मनाने की घोषणा की। कपास दुनिया भर में करोड़ों किसानों और मजदूरों को रोजगार देता है, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए ये आय का प्रमुख साधन है। ये वैश्विक वस्त्र और परिधान उद्योग की रीढ़ है। कपास के रेशों के अलावा इसके बीजों से खाद्य तेल, पशुओं का चारा और उर्वरक भी प्राप्त किए जाते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत वैश्विक स्तर पर कपास की खेती में नंबर पहले पर आता है और ये चारों मान्यता प्राप्त प्रजातियों की खेती करने वाला एकमात्र देश है। कपास केवल एक फसल या कपड़ा नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण ताना बाना है। विश्व कपास दिवस हमें याद दिलाता है कि प्राकृतिक और टिकाऊ संपदा का संवर्धन करके हम वैश्विक अर्थव्यवस्था और किसानों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और ये तो हुई बात आज के दिन की, और इसके साथ ही हम बात करेंगे फैशन की, कपड़ों की और स्टाइल की। जी हाँ, हर कोई स्टाइल में रहना चाहता है, नए डिज़ाइन और फैशन से संबंधित कपड़े पहनना चाहता है, और ये अच्छी बात है सखियो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमत से मिलती है और हर कोई चाहता है कि वो सबसे अलग दिखे, सबसे सुंदर दिखे। और कई बार जब हम दूसरों से अपनी तारीफ सुनते हैं कि भाई इनके कपड़े बहुत ही सुंदर होते हैं, इनका स्टाइल सबसे अलग होता है ना, तो कितना अच्छा लगता है। और आज के आधुनिक युग में फैशन हर व्यक्ति के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अक्सर लोग सोचते हैं कि फैशनेबल दिखने के लिए अलमारी में कपड़ों का अंबार होना चाहिए, यानी कि बहुत से कपड़े होने चाहिए, लेकिन बदलते समय के साथ फैशन की परिभाषा भी बदल गई। आज का नया और सबसे लोकप्रिय मंत्र है कम कपड़े ज़्यादा स्टाइल। इसका सीधा मतलब ये है कि आपके पास कपड़े भले ही संख्या में कम हो, लेकिन अगर उनका चुनाव और उन्हें पहनने का सही तरीका आपके पास है तो आप हर महफिल में सबसे अलग और सबसे आकर्षक दिख सकती हैं। कम कपड़े ज्यादा स्टाइल का मतलब है ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फटे पुराने या बेहद ही छोटे कपड़े पहने। इसका असली मतलब मिनिमलिज्म यानी सादगी और समझदारी से है। इसका अर्थ यह है कि ऐसी अलमारी तैयार करना जिससे कम लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े आपके पास हो, जिन्हें अलग अलग तरीकों से मिलाकर पहना जा सके। मिक्स एंड मैच के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आप पर क्या जचता है और क्या मैच करने से एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, और कब हमें क्या कपड़े पहनने चाहिए इसकी जो नॉलेज है, इसका जो ज्ञान है हमें ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आप एक जहां आप मतलब शादी में जाते हैं वैसे आप तैयार होकर चले जाएं, तब भी आप कई बार हंसी का पात्र बन जाते हैं। और इस विचार के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है सखी, ये वाला विचार मिक्स एंड मैच का। जब अलमारी हमारे कपड़ों से भरी होती है तो अक्सर लोग आज क्या पहनूं के भ्रम में पड़ जाते हैं। कपड़े कम और चुनिंदा होने पर तैयार होने में कम समय लगता है। हर बदलते ट्रेंड के साथ नए और सस्ते कपड़े खरीदने की बजाय कुछ अच्छे और सदाबहार कपड़ों में निवेश करना आर्थिक रूप से ज़्यादा फायदेमंद होता है। आज फास्ट फैशन के कारण हर साल लाखों टन कपड़े कचरे में फेंक दिए जाते हैं, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। कम कपड़े खरीदकर हम पृथ्वी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। स्टाइल कपड़ों की संख्या से नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास और उन्हें कैरी करने के तरीके से आता है। जब आप सादगी में भी सलीके से तैयार होते हैं तो आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा निखर कर बाहर निकलता है। मशहूर फैशन डिज़ाइनर कोको शैनल ने कहा है था कि फैशन बदल जाता है लेकिन स्टाइल हमेशा रहता है। कम कपड़े ज्यादा स्टाइल केवल एक फैशन ट्रेंड नहीं बल्कि एक प्रगतिशील और समझदारी भरी जीवन शैली है। यह हमें सिखाता है कि हम बाहरी दिखावे की अंधी दौड़ से बाहर निकलकर अपनी मौलिकता को पहचाने, कम चीजों के साथ भी सलीके से रहना ही असली आधुनिकता और अच्छा स्टाइल है। और इन्हीं बातों के साथ फिर से वक्त मनोरंजन का।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY Why? कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई। गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
5: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में सखियों हम पहुंच चुके हैं और खान पान का ये पड़ाव रहता है। बात करें सलाद की तो खाने में सलाद का अपना ही महत्व है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हम सभी को इसे अपने आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। बात करें अमरूद के सलाद की तो ये बहुत ही टेस्टी होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो आज सुनो सखी की रसोई में हम बनाएंगे अमरूद का सलाद। सबसे पहले अमरूद को पानी से अच्छी तरह से धोकर पोंछ लें। अब इसे छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लें। अगर आपको बीज पसंद नहीं है तो आप इन्हें हटा सकती हैं। कटे हुए अमरूद के टुकड़ों को एक साफ और गहरे बाउल में डाल दें। अब अमरूद के ऊपर नींबू का रस, काला नमक, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लें ताकि मसाले अमरूद के हर टुकड़े में अच्छे से कोट हो जाएं। ऊपर से बारीक हरी कटी मिर्च और हरा धनिया डालकर इसे आप सजाएं। चटपटा अमरूद का सलाद तैयार है। आप चाहे तो इसे तुरंत सर्व करें या इन स्वादों को अंदर तक रचने के लिए आप इन्हें 5 से 10 मिनट तक के लिए रख भी सकती हैं और फिर इस सलाद का मज़ा ले सकती हैं। जी हाँ, अमरूद का सीज़न चल रहा है और आजकल तो आप भी इसे आसानी से बना सकती हैं और सखियाँ बनाती भी हैं, क्योंकि खीरे का भी सीज़न है। कई बार अमरूद के साथ हम अन्य चीज़ों जैसे सेब हो गया, खीरा हो गया, इन सभी को मिक्स करके भी बहुत ही अच्छी चाट और सलाद बना सकते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, बजाय बाहर के किसी भी तले भुने या चाट वाली चीज़ों को खाने से। तो ज़रूर आप भी बनाएं और मज़ा लें इस सलाद का। और चलते चलते हम मज़ा लेते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक का।

आरजू फिल्म के इसी खूबसूरत गीत के साथ सखियों हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंत में। अब मुझे यानी रीना को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति इसी वादे के साथ कि फिर इसी कार्यक्रम में होगी आप सब सखियों से मुलाकात। तब तक स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 1 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कभी नीतिगत निष्क्रियता की चर्चा से जुड़ा भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह बदल गई है।
2: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है। और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
1: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं। श्री शाह ने सभी से इस यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना, वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना और वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य की दिशा में विकास को गति देना आवश्यक है। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचों के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6ठी समिति में लोकसभा सांसद बिप्लव कुमार देव ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने करीब 3.5 साल बाद आज प्रमुख नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 5.5% कर दिया है। ये बढ़ोतरी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के उद्देश्य से की गई है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज लगभग 0.4% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 241 अंक गिरकर 72,827 पर, जबकि निफ्टी 117 अंक की गिरावट के साथ 22,659 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said that India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He said that over the past 12 years, the situation has changed completely.
2: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
3: Home Minister Amit Shah has hailed the completion of 25 years of Prime Minister Modi's public service and described it as a golden and historic day. Addressing the Vikasit Bharat Sankalp Sabha Seva Jyoti Yatra in Gurugram today, he stated that under Prime Minister Modi's leadership, significant work was accomplished, including the abrogation of Article 370, the elimination of nationalism, and the elevation of the country's infrastructure to the highest level. The Reserve Bank of India, RBI, today raised key benchmark repo rate by 25 basis points to 5.5% in a bid to tame rising inflation amidst global uncertainties. Announcing the bi-monthly monetary policy, RBI Governor Sanjay Malhotra said, the Monetary Policy Committee unanimously decided to raise the policy repo rate by 25 basis points.
4: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions, developments and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate under the LAF by 25 basis points to 5.5%. Consequently, the STF rate stands adjusted at 5.25% and the marginal standing facility rate and the bank rate to 5.75%. The MPC also decided to change the stance to calibrated tightening by a majority of 4-2.
3: Central Bureau of Investigation, CBI, has registered an FIR against OSD to Punjab Chief Minister Rajbir Ghuman and his associates in a case of cash for transfers and manipulating postings of officers, including of IAS and IPS rank officers, and other corruption cases to investigate these allegations. Subsequently, raids were conducted at 8 premises. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's partnership with Africa is being built not just for today, but for generations to come. Addressing a gathering at the Foreign Service Institute of Ghana in Accra, he highlighted India's progress in the economy, infrastructure, digital technology and manufacturing. Dr. Jaishankar stressed the need for India and Africa to turn their young populations into skilled and empowered citizens. India has called for stronger climate action and faster implementation of the Paris Agreement at the pre-conference of the parties or COP31 meeting in Fiji. Union Environment Minister Bhupender Yadav said there is a need to close gaps in understanding, fulfill existing climate commitments, and accelerate progress towards the goal of limiting global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. Addressing the plenary session, Mr. Yadav stressed the need for greater capacity building and adequate means of implementation. Prime Minister Narendra Modi today shared an article written by agricultural economist Ashok Gulati on the transformation of Indian agriculture. The article highlights Prime Minister Modi's 25-year journey from Gujarat's agrarian transformation to a broader transformation of Indian agriculture, shows how better irrigation, reliable power, rural roads, technology and market access helped farmers increase productivity and income. And benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% lower during the afternoon session today. Sensex slipped 241 points to 72,827, while Nifty lost 117 points to 22,659 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
5: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
6: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
5: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट टीएनसी अप्लाई।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

अब एक सीधी सी बात हमारे मन में ये है कि अधिक सुनने के क्या क्या फायदे हैं और अधिक बोलने के क्या क्या नुकसान है, ये हमारा सवाल भी है आपसे। अधिक सुनने के क्या क्या फायदे हैं और अधिक बोलने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये आप हमें बता दीजिए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सुनना ही आगे जाने का मार्ग है, आगे जाके सुना हुआ ही हम बोल सकते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि बोलना अपनी बात कहना है, लेकिन सुनना किसी के दिल को जगह देना है। रिश्ते वहीं खूबसूरत होते हैं जहाँ बोलने से पहले कोई सुनने वाला और चुप्पी में भी समझने वाला हो। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सुनना सिर्फ शब्दों को सुन लेना नहीं है, बल्कि किसी के दिल तक पहुँच जाना है। कभी कभी इंसान की सलाह नहीं, बस एक ऐसा कंधा चाहिए होता है जहाँ उसकी बातें बिना किसी शिकायत के सुनी जाए। सच तो यह है कि जब कोई हमें दिल से सुनता है तो आधा दर्द वहीं खामोशी में पिघल जाता है, कुछ जख्म दवा से नहीं सुन लिए जाने से भर जाते हैं। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज कहने सुनने की बात है तो कुछ लोग कहते रहते हैं, ज़रूरी हो या ना हो उन्हें सुनने की आदत नहीं है। कहने से ज़्यादा सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ उपयोगी या ज्ञान की बातें मिले। दूसरों से बात करते समय सोच समझ कर बोलें, ऐसी कोई बात ना बोलें जिससे दूसरों को बुरा लगे, मुझे सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए धन्यवाद। अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं, ये गाना लता जी की आवाज में है, शंकर जयकिशन का संगीत है। किस फिल्म का गाना है ये आप हमें बताइए।

ये जो गीत अभी आपने सुना, ये ससुराल फिल्म का गाना है। बहुत कम श्रोताओं ने इस बात का जवाब हमें दिया है, लेकिन जिन्होंने दिया है सही लिखा है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सिर्फ अपनी ही बात लगातार बोलना और किसी दूसरे को नहीं सुनना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे को सुनना भी और समझना एक बेहतरीन संवाद की नींव होती है। बोलना और सुनना संवाद के दो अहम पहलू है, क्योंकि सिर्फ अपने ही लगातार बोलने से बातचीत अधूरी रह जाती है और एक अच्छा श्रोता बनने से बातचीत अधिक प्रभावशाली और संतुलित होती है। इसलिए अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ बोलना ही नहीं सुनना भी सीखना चाहिए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि दिल अपनी दास्तान सुनाने को बेताब रहता है, पर दिमाग हमेशा ये सोचता है कि क्या जो सोचकर हम बयान करेंगे उसे उसी तरह सामने वाला समझ सकता है, कहीं वो कुछ और समझ लिया तो हमारे मन की बातें कहने का अर्थ नहीं रह जाता है। यही दुविधा हमेशा ही दिल और दिमाग के बीच चलती रहती है। कहते हैं कि कह देने से मन का बोझ कम हो जाता है, पर कभी कभी खामोशी भी मन की पीड़ा को कम कर देती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। राजपूत फिल्म का गाना अब आपके लिए लेकर आए हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। ये तीन कलाकारों पर फिल्माया गया गाना है। कौन से कलाकार हैं ये आप बताइए। और हाँ, हमारा जो सवाल था कि अधिक सुनने के क्या फ़ायदे हैं और अधिक बोलने के क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी।

कुछ इसी तरह की कहानियाँ हमने भी अपनी दादी नानी और अपने पुरखों से सुनी और उन कहानियों को सुनने में बड़ा आनंद आता था और आनंद के साथ साथ हमें कई बातों की सीख भी तो मिलती थी ना, इसीलिए तो वो कहानियाँ बनाई और सुनाई जाती थी। एक साथी ने बहुत सुंदर बात लिखी है, उनकी ये बातें हमारे दिल को छू गई। लिखा है कि सुनना यानी श्रवण केवल एक शारीरिक क्रिया मात्र नहीं है बल्कि ज्ञानार्जन और आत्मिक विकास की पहली सीढ़ी है। हमारे देश में अनादिकाल से श्रुति परंपरा रही है। गुरु द्वारा कहे जाने वाले वेदों और उपनिषदों के मंत्र

लिख रहे हैं कि अधिक बोलने से शब्दों का महत्व कम हो जाता है और अनजाने में दूरी बढ़ जाती है, पर ज़्यादा सुनने से हम बेहतर श्रोता बनते हैं और दूसरे को समझने के साथ उसके मन की बात भी जान पाते हैं, इसलिए अधिक सुनना समझदार होने की निशानी है। और एक साथी ने तो ये बात लिखी है कि मैंने तो एक कप चाय बना ली है और सुरीला सफ़र प्रोग्राम सुन रही हूँ। धन्यवाद आपका। चलिए अब बाबू आना सुनते जाना, ये गाना संगीत किसका है आप बताइए।

0: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना।
1: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
0: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
2: मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो
0: बाबू आना सुनते जाना।
1: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना।

0: लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी।
1: अरे क्या क्या?
0: तू जा जा, अरे जा जा जामू धो के आ।
1: अरे क्या क्या?
0: तू जा जा, अरे जा जा जामू धो के आ।

0: खाके पत्थर भी तोड़ना, ले लो जंगल की बूटी खाके पत्थर भी तोड़ना।
1: ये है जर्मन का मसाला टूटे बर्तन भी जोड़ना, ये है जर्मन का मसाला टूटे बर्तन भी जोड़ना।
0: ए लड़की पहाड़ी है काटे गिला

0: रे मत लड़ना मुझसे वरना मैं दूंगी गालियाँ।
1: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ।
0: रुक जा निकालती मैं तेरा दीवाला,
1: जा रे तू पीस जाके गरम मसाला,
0: अरे क्या क्या?
1: तू जा जा घर जाके आ...

जुमरू फिल्म का गाना, इसमें संगीत किशोर कुमार का। एक साथी की बात, पहले हर परिवार में रिश्तेदारी में कहानी सुनाने वाले हुआ करते थे, जो बड़े तन्मय होकर कहानी सुनाते थे, और कहानी अगर एक दिन में खत्म ना हो तो फिर दूसरे दिन शुरू होती थी, और हम सभी भी सुनते थे, क्योंकि कहते हैं कि अधूरी कहानी सुनने पर रास्ता भटकने का डर रहता है, इसलिए पूरी कहानी सुनना ज़रूरी है। एक साथी लिख रहे हैं कि बोलना अगर चांदी है तो सुनना सोना है। एक अच्छा वक्ता होने के साथ आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा श्रोता बनकर आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। ये हुनर न केवल हमें एक बेहतरीन इंसान बनाता है, बल्कि समाज में संवादहीनता की खाई को भी पाटता है। केवल सुनना एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें आवाज़ें हमारे कानों तक पहुँचती है। ध्यान से सुनना ये एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। इसमें हम सामने वाले के शब्दों के साथ साथ उसकी भावनाओं, लहजे और अनकही बातों, यानी कि बॉडी लैंग्वेज को भी समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए सुनना एक हुनर या कला कहा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वारंट फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत, दो कलाकार कौन हैं आप बताइए।

देव आनंद और जीनत अमान पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रही हैं कि सुनना जहां एक बड़ी कला है, वहीं समय पर सटीक उत्तर देना भी उतना ही ज़रूरी है, वरना लोग आपकी खामोशी को आपकी कमज़ोरी या सहमति समझ लेते हैं। सुनने और जवाब देने का संतुलन, पहले सामने वाले की बात को पूरे धैर्य और ध्यान से सुने ताकि आप उसके संदर्भ को पूरी तरह समझ सकें। जब बात पूरी हो जाए तो अपनी बात को स्पष्ट और संयम के साथ रखें ताकि गलतफहमी

ना फैले। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि सुनना सुनाना जीवन के दो अनमोल पहलू है जो हमारे दिलों को आपस में जोड़ने वाला नाजुक रेशम धागा है। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं तब दूसरों के अस्तित्व को, उनके जज्बात को, एहसासों को अपनाते हैं, निःशब्द मान्यता देते हैं, तो दूसरी ओर सुनना यानी खुद की भाव भावनाएँ, अनुभव और सपनों को आवाज़ का लहजा देकर दूसरों तक पहुँचा देना, दिल में उतार देना ही जिससे मन हल्का हो जाता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि जब मैं घर पर ही हूं और धर्म पत्नी कहे कि सुनिए जी, तो एक बार मैं न सुनने की एक्टिंग करता हूं, फिर कहती है सुनिए जी, ये सुनकर मैं आनंदित होकर प्यार से कहता हूं कहिए जी। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक चुप, और ये आगे लिख रहे हैं कि आगे क्या है मैं भूल गई हूं, लेकिन कहने का मतलब ये कि किसी भी चीज की अति नहीं करना है, न बोलने की ना चुप रहने की। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं, सुजाता फिल्म का गाना, एस डी बर्मन की आवाज़।

सुजाता फिल्म का गाना सुनील दत्त और नूतन पर फिल्माया गया। एक साथी लिख रही है कि एक प्यारी सी बात, कम बोलना कमजोरी नहीं एक खूबसूरत समझदारी है, जब शब्द कम होते हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है, बस उसे सुनने वाला दिल चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि सुनना अमूल्य वरदान है, भगवान की तरफ से सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, सुनाना ये ज़रूरी नहीं है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि बिना सोचे बहुत ज़्यादा बोलने पर वह बगुले वाली हालत हो जाएगी, मुंह से आया हुआ आहार ज़मीन पर गिर जाएगा। बगुला आसमान में चोंच में मछली पकड़ कर ले जा रहा था, किसी ने देखा और चिल्ला कर कहा, अरे बगुला सांप पकड़ा है कि मछली? बगुला सिर्फ सांप सुना, फटाक से बोलने के लिए मुंह खोला और मछली ज़मीन पर गिर गई। ये कहानी भी है और एक इसमें संदेश भी छुपा है। एक हमारे साथी की बात यह है कि कम कुछ सुनो और सुनाओ। मेरा मानना है कि यदि आप एक अच्छे वक्ता हैं तो एक अच्छे श्रोता भी बनिए, ये नहीं बस अपनी ढपली और अपना राग। तो ये बात इन्होंने लिखी, धन्यवाद। और अगला गाना सुहाग फिल्म का ये गाना है, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और परवीन बाबी पर फिल्माया गया है। शैलेंद्र सिंह, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

एक साथी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि सच कहें तो रेडियो से हमें सुनने का संस्कार मिलता है। हम 24 घंटे लगातार बोल नहीं सकते मगर सुन जरूर सकते हैं। शायद इसलिए कुदरत ने हमें दो कान और एक जिह्वा प्रदान की है। सुनना भी वास्तव में एक कला ही है। प्रकृति के नज़दीक खामोशी से सुनिए तो सही, न जाने कितनी मधुर दिव्य आवाज़ें आपको अथाह असीम शांति और सुकून देती हुई महसूस होंगी। किसी फूल पर मंडराते हुए मधुकर के गुंजन, मंद मंद समीर में घुलती हुई रागिनी, बहते दरिया की लहरों की अटखेलियाँ की स्वर लहरियाँ, किसी गौरी की चूड़ियों की खनक और पांवों में बसती पायल के सरगम, कहने का अभिप्राय यही है कि अच्छा सुनने का कौशल हमें मानसिक अवसाद से राहत दिलाता है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे या भला, पर मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। और एक साथी लिख रहे हैं कि इस समय मेरे ऑफिस में रखे रेडियो पर हाथ रखकर मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। मैं बचपन से रेडियो पर विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनता था, आज भी सुनता हूँ और आगे भी अंतिम सांसों तक सुनता रहूँगा। और एक साथी हमारे ये बात लिख रहे हैं कि हमें तो विविध भारती जो भी सुनाती हम चुपचाप सुनते रहते हैं और कहते भी हैं, लिखते भी हैं, क्योंकि विविध भारती हमारी अपनी है। आपके इस प्यार के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सावन भादो फिल्म का ये गाना सुनवाते हैं। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है बताइए हमें।

एक हमारे साथी ने बहुत सटीक बात लिखी, लिखते हैं कि अगर देखा जाए तो हमारी सारी मन स्थिति सुनने पर ही निर्भर करती है। दूर बैठे किसी का फ़ोन भी आ जाए और कोई अच्छी खबर देते तो हम खुश हो जाते हैं, परेशानी कम हो जाती है। सुख दुख अच्छा बुरा सब कुछ सुनने पर ही तो निर्भर होता है। सबसे पहले अगर कोई मन स्थिति को बदलने में सक्षम है तो वो हमारी श्रवण शक्ति ही है। वहीं किसी सुंदर भजन या गीत को सुन ले तो मन आनंद से भर जाता है। कितनी सही बात है ना कि सुनकर ही तो हमें मन को, हमारे मन को खुशी मिलती है, और कोई बुरी खबर सुन ले तो मन उदास भी हो जाता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सुनना, शब्दों को सुनना भर नहीं, उसकी आवाज में छिपी उदासी को सुनना है, उसकी खामोशी में ठहरे अनगिनत सवालों को सुनना है। सामने वाला जब अपनी कहानी कहता है तो वो केवल शब्द नहीं कहता, वह अपने भीतर की परतें खोलता है, अपनी खुशियां, अपनी शिकायतें, अपने अनकहे एहसास हमारे सामने रख देता है। इसलिए खामोशी से किसी को सुनना बेहद

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल के वृद्ध माता पिता जिनके बच्चे बाहर हैं और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, घर में कोई बात करने वाला नहीं है, उनकी बातें सुनने वाला नहीं है, तो ऐसे में रिश्तेदार और पड़ोसियों को इतना तो करना चाहिए कि उनके पास बैठकर इत्मीनान से उनकी बातें सुने और उनको भी कोई साथी मिलेगा और उपयोगी बातें सुनने को मिलेगी। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज के दौर में प्रत्येक इंसान में जो एक चीज़ गायब दिखती है वो है सुनना। इंसान नहीं जानता कि सुनना भी एक तीर्थ है। ये विडंबना है कि हर इंसान सिर्फ बोल रहा है, सुनना बिल्कुल अनचाही सी चीज हो गई है। एक सच जो इंसान नहीं जानता, जिसने सिर्फ और सिर्फ बोलने को तरजीह दी और सुनना छोड़ दिया, उसने अनजाने में धीरज, गहराई और रिश्तों का मोल खो दिया है। चलिए अगला और अंतिम गाना, उजाला फिल्म का गाना है ये, शम्मी कपूर और माला सिन्हा पर फिल्माया गया ये गाना।

यही था आज के सुरीला सफ़र कार्यक्रम का अंतिम गाना, और आपने इस कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक ध्यान से सुना और विषय को लेकर बहुत सारी बातें आपने लिखी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपको ये सुनाना चाहते हैं कि अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आज की त्रिवेणी का शीर्षक है माफी। श्रोताओं नमस्कार। जिंदगी में हम सभी से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। गलती इंसान से हो जाना स्वाभाविक है। कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं तो कभी कोई और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा देता है। ऐसे में मन में शिकायत, गुस्सा और नाराजगी जमा होने लगती है। अगर कोई अपनी गलती को स्वीकार कर ले और उसे सुधारने का प्रयास कर रहा है तो ज़रूर उसे माफ़ करने का साहस दिखाना चाहिए ताकि दिल पर कोई बोझ ना रह जाए। यदि कोई अपनी भूल स्वीकार

कर ले और उसे सुधारने का प्रयास करे तो उसे क्षमा कर देना रिश्तों को मजबूत बनाता है। माफ कर देने का अर्थ गलत को सही ठहराना नहीं, बल्कि अपने मन को क्रोध, द्वेष और बोझ से मुक्त करना है।

जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो सबसे अधिक शांति हमें ही मिलती है। मन हल्का रहता है, रिश्तों में अपनापन बना रहता है और जीवन सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़ता है। इसीलिए जहाँ भी संभव हो क्षमा को अपनाइए। दिल में किसी के लिए कटुता कभी ना रखें। क्षमा करने वाला व्यक्ति सबसे पहले स्वयं को मुक्त करता है। क्षमा सबसे बड़ा साहस है। किसी की भूल को माफ़ कर देने से ना केवल रिश्ते बचते हैं बल्कि अपने मन का हर बोझ कटुता से मुक्त हो जाता है। इसीलिए जहाँ संभव हो क्षमा को अपनाएं और मुस्कुराते हुए जीवन जिएं।

क्षमा रिश्तों को जोड़ती है, मन को सुकून देती है। इसीलिए क्षमा को अपनी ताकत बनाएं, प्रेम और सद्भाव के साथ रिश्तों को लेकर आगे बढ़ें। जब दिल हल्का होता है तो रिश्तों में मिठास बढ़ती है और जीवन अधिक सुखद बन जाता है। तो आज एक छोटा सा संकल्प हम सभी लें, जहाँ संभव हो माफ़ करें, मुस्कुराएं और प्रेम के साथ आगे बढ़ें। तो हम भी आज एक छोटा सा संकल्प लेंगे, नफ़रत नहीं प्रेम बांटेंगे, शिकायत नहीं समझदारी अपनाएंगे और जहाँ संभव होगा दिल से माफ़ करेंगे। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशियों की रोशनी बिखेरते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। और भारत ने 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आज फिजी में एक बैठक में पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इम्पोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रहा है।
1: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
0: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
2: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच, उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
3: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इसमें गुजरात सहित भारतीय कृषि के व्यापक परिवर्तन की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास में उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
5: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगभग चार वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
6: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
7: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं। समिति ने 2-4 मतों से अपने रुख को सोच समझकर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
6: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 4-2।
0: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है, बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जन

0: स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
1: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
0: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
2: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
0: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
3: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ SJ ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार नगमे। कार्यक्रम का पहला जो गीत है ये आज और कल, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र.
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है. हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है, दैट इज अ +1. ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व. सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है.
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी.
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है. उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है.
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर. सदाबहार नगमे कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए बहुरानी फिल्म का गाना. लता मंगेशकर की आवाज़, साहिल उद्यानवी के बोल, संगीत सी रामचंद्र का.

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो केंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना हाल। हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना हाल। प्यार की कसम।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, रवि का संगीत, फिल्म का नाम भरोसा। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हिमाचल प्रवास के आज दूसरे दिन अटल टनल रोहतांग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल की। राष्ट्रपति ने कहा कि अटल टनल ग्लोबल स्टैंडर्ड का एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, जिसे सीमा सड़क संगठन ने बहुत मेहनत से बनाया है। उन्होंने कहा कि आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की टेक्नोलॉजी की काबिलियत, पक्के इरादे और सबसे मुश्किल इलाकों में भी बिना रुकावट कनेक्टिविटी बनाए रखने की वचनबद्धता का सबूत है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिंबा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। उनके दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कभी नीतिगत निष्क्रियता की चर्चा से जुड़ा भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह बदल गई है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्षों में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी बड़ी पूंजी है।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूँ कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा जनता के अटूट आशीर्वाद और समर्थन से संभव हुई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और शासन में सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र की बर्मा पापड़ी पंचायत में सेवा ज्योति यात्रा का नेतृत्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने किया। इस अवसर पर बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए गरीब व किसान की सेवा, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को अवसर उपलब्ध करवाना और देश की सुरक्षा को मजबूत करना शासन के केंद्र में रहा है। बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश को नई गति दी है। दिल्ली में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आज लोकभवन शिमला के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और SIR प्रक्रिया को बंद करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता बनाए रखना आवश्यक है और कांग्रेस इस मुद्दे पर अपना संघर्ष जारी रखेगी।
2: आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोक भवन के बाहर प्रदर्शन किया है। कल हमने पूरे प्रदेश में धरने का कार्यक्रम बनाया है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जिस प्रकार मुख्य विपक्षी दल के पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को गिरफ्तार करके आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, तो उस संदर्भ में पूरे प्रदेश में कल धरना प्रदर्शन होगा।
0: प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। आज प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी।

0: जबकि अन्य इलाकों में गरज के साथ बारिश व ओलावृष्टि हो रही है। राजधानी शिमला में दोपहर के समय तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। इस वर्षा व बर्फबारी से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं कुछ स्थानों पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनने सामयिक चर्चा। विषय है एशियाई खेल 2026। वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल का।
2: आर्ड के नाम से भी जाना जाता है, एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है जो हर 4 साल में एक बार आयोजित की जाती है। वे एशिया ओलंपिक परिषद द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इसमें वर्तमान में 45 भागीदार देश या क्षेत्र हैं। 20वें एशियाई खेल हाल ही में जापान के आइची नागोया में आयोजित किए गए। ये प्रमुख आयोजन 16 दिनों की गहन विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में आयोजित किया गया था। इसमें एथलेटिक्स उत्कृष्टता के भव्य प्रदर्शन में 43 खेल और 71 खेल विधाएं शामिल थीं। खेलों के दौरान 469 रोमांचक आयोजनों में कुल 1,407 पदक प्रदान किए गए। एशियाई खेलों के साथ साथ जापान 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2026 तक आइची नागोया में 5वें एशियाई पैरा खेलों की मेजबानी भी कर रहा है। जापान ने पहली बार पैरा खेलों की मेजबानी की है। एशियाई खेलों के साथ भारत का संबंध बहुत शुरुआत से है, जब पहला एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये एशियाई देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के प्रयासों की पृष्ठभूमि के खिलाफ किया गया था, जिसमें एशिया के कई क्षेत्रों को हाल ही में उपनिवेशवाद से मुक्त किया गया था। एशियाई खेल प्रतियोगिता का विचार भारत द्वारा एकता प्रदर्शित करने और एशियाई देशों के बीच संबंधों के पुनर्निर्माण के साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे युद्ध ने तोड़ दिया था। एशियाई खेलों को आयोजित करने का सुझाव पहली बार 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के एक सम्मेलन में दिया गया और इसे एशियाई खेल कहने का निर्णय लिया गया था। उद्घाटन एशियाई खेल मार्च 2051 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। 11 देशों ने उस समय पहले आयोजन में 6 खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए 489 एथलीटों को भेजा। भारत उस वर्ष जापान के बाद पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने एशियाई खेल 2026 में अपने अब तक के सबसे बड़े बहु खेल प्रतिनिधि मंडलों में से एक को मैदान में उतारा, जिसमें 36 खेल स्पर्धाओं में 501 एथलीट दल शामिल थे। दल में 300 से अधिक एथलीट एशियाई खेलों में पदार्पण कर रहे थे। 2026 एशियाई खेलों में भारत के आशियान को 21 स्वर्ण पदक से उजागर किया गया, जो स्टीक स्पर्धाओं और टीम खेलों में मजबूत प्रदर्शन से जुड़ा था। तीरंदाजी ने शूटिंग और मुक्केबाजी द्वारा समर्थित 5 खिताबों के साथ स्वर्ण तालिका में सबसे आगे रहा, जिसमें प्रत्येक ने 3 स्वर्ण पदक जीते। टीम खेलों में भारत ने क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में एक व्यापक गोल्ड रश को अंजाम दिया। पहले खेल में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। आइची नागोया 2026 एशियाई पैरा खेल 18 से 24 अक्टूबर 2026 तक जापान में आयोजित किए जाएंगे। इन खेलों में एशिया भर की 45 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियों के लगभग 3000 एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। इन खेलों में 18 पैरा खेल शामिल होंगे। सरकार ने 1 जुलाई 2025 को भारत की राष्ट्रीय खेल नीति खेलो भारत नीति शुरू की। ये एक मजबूत समावेशी और प्रदर्शन संचालित खेल प्रणाली का निर्माण करना चाहता है। यह प्रशिक्षण और सुविधाओं में ग्रामीण शहरी अंतर को पाटने पर केंद्रित है। यह प्रशिक्षण लागत को कम करने के लिए सामुदायिक भागीदारी और साझेदारी पर जोर देता है। यह नीति 2036 ओलंपिक में उत्कृष्टता पर अपनी दृष्टि निर्धारित करती है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत खेलों को स्कूली शिक्षा से जोड़ती है। यह महिलाओं, आदिवासी समुदायों और दिव्यांगजनों का भी समर्थन करता है। खेलो इंडिया जमीनी स्तर के खेलों के लिए प्रमुख कार्यक्रम है। जुलाई 2026 तक इसने 1067 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए थे। इसमें 3176 करोड़ रुपए की 349 नई खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 2018 से अब तक 63,000 से अधिक एथलीटों ने खेलो इंडिया गेम्स में भाग लिया है। फिट इंडिया मूवमेंट लोगों को फिटनेस को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

0: संसद ने अगस्त 2025 में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक पारित किया। ये खेल संगठनों को मान्यता देने के लिए एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड का प्रावधान करता है। एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण खेल विवादों का निपटारा करेगा। इसके साथ ही सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: हाँ जी, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा।
1: और हमारे जो साथी हैं सुनने वाले, वो भी हर जगह हमारे साथ होंगे। बहुत सारे संदेश वो हमें भेज रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं महत्वाकांक्षा और भविष्य निर्माण के बारे में। तो मंदाकिनी जी, महत्वाकांक्षा का मतलब होता है कुछ बड़ा सोचना या बड़ी अपेक्षाएं रखना। और देखा जाए तो एक सफल इंसान बनने के लिए ये जरूरी भी होता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर हम एक दायरे में सिमट कर रह जाते हैं ना, तो किसी बड़े लक्ष्य को पाना मुश्किल हो जाता है।
0: मुश्किल हो जाता है। और चंचल, महत्वाकांक्षा या आवेग दोनों ही जो है हमारी एनर्जी होते हैं। बस दोनों में फर्क इतना ही है कि महत्वाकांक्षा में एक दिशा होती है और आवेग जब आता है तो उसमें गति होती है। और जब गति बिना दिशा के हो जाती है तो भविष्य नहीं बनता, बिखर जाता है। और महत्वाकांक्षा अकेली भी खतरनाक हो सकती है। तो परेशानी कब शुरू होती है? तब शुरू होती है जब महत्वाकांक्षा कब और कैसे को भूलकर सिर्फ क्या चाहिए पर अटक जाती है।
1: बहुत सही बात बताई आपने मंदाकिनी जी। और इसी तरह की बड़ी इच्छाएं या महत्वाकांक्षाएं अगर आपकी हैं, जैसे भाई आपको इंजीनियर बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, या बहुत बड़ा बिजनेस करना है, आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इस तरह की जो भी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, कई बार ये जिंदगी में बोझ भी बन जाती है।
0: बिल्कुल,
1: भविष्य आदमी भविष्य की तरफ एक कल्पना के चित्र में ही जीने लगता है। उसे लगता है कि जब वो मिल जाएगा तब मुझे खुशी होगी, और वो जो दिन है ना कि ये मिलने पर खुशी होगी या ये महत्वाकांक्षा पूरी होने पे खुशी होगी, वो दिन जिंदगी में कभी भी नहीं
0: आता नहीं है, क्योंकि हम वैसी मेहनत नहीं करते ना चंचल। उस दिशा में हम अपना कार्य कर नहीं रहे होते, केवल खामों की दुनिया में बैठे होते हैं। इसलिए निराधार जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो हमें थकाती हैं, क्योंकि हम हर दिन खुद को असफल महसूस करते हैं। और आवेग जो है महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन है। आवेग का अर्थ ही है बिना सोचे तुरंत एक्शन रिएक्शन दे देना, प्रतिक्रिया दे देना।
1: और इसीलिए केवल आवेग में जो निर्णय लिए जाते हैं वो हमें बहुत ज्यादा भविष्य में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जैसे हर थोड़े समय के बाद अपने करियर की फील्ड को बदल लेना, जॉब को बदलना, दिखावे में आकर ईएमआई की सुविधाओं पर चीजें लेते जाना, गुस्से में इस्तीफा दे देना अपने नौकरी पर, किसी से रिश्ता तोड़ देना। तो आवेग में किसी भी तरह का निर्णय हो, चाहे वो निजी तौर पर हो या आपके कामकाजी तौर पर हो, ये आपको तकलीफ तो देगा ही देगा।
0: बिल्कुल देगा। और आपका जो एक हर्डल आपकी जिंदगी में हमेशा आती रहेगी आपके इस व्यवहार से भी।
1: जी,
0: ऐसी तमाम समस्याओं का समाधान यही है चंचल, कि महत्वाकांक्षा में अनुशासन को हम जोड़ें। सबसे बड़ी बात है कि भविष्य न तो सिर्फ सपने देखने से बनता है और न ही जोश से बनता है। एक सूत्र याद रखें हम, कि महत्वाकांक्षा दिशा है, अनुशासन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, और आवेग जो है वो स्पीड ब्रेकर है।
1: हाँ, यानी कि जब भी आवेग आए तो थोड़ा थम जाइए, रुक जाइए, अपनी गति को धीमा कर लीजिए। और महत्वाकांक्षा सिर्फ दिखावे के लिए ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है मंदाकिनी जी।
0: बिल्कुल,
1: असली महत्वाकांक्षा शोर नहीं करती, वो चुपचाप से रोज हमें जगाती है। क्योंकि हमारी अगर कोई सच्ची महत्वाकांक्षा है तो वही हमारा भविष्य बना सकती है, अगर तीन चीजों से हम उसको जोड़ दें, अनुशासन, धैर्य और भविष्य।
0: बिल्कुल, और भविष्य में कुछ अच्छे आपको नतीजे चाहिए तो अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा छोटा कर लें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। 5 साल का लक्ष्य सीधे न देकर उसे 6 महीने के टुकड़ों में तोड़कर

0: जत है वही पढ़ाई है, लेकिन जो व्यक्ति इस बोरियत को सह गया वो ही आगे निकल जाता
1: है। और हर इंसान सोचता है ना कि बड़ा आदमी बनना है, ये कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, ना ही फैंटेसी है। महत्वाकांक्षा होती है हमारे भविष्य का नक्शा बनाना। और जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और नियोजनबद्ध तरीके से उस पर काम भी करते हैं तो वही महत्वाकांक्षा है जो हमारा भविष्य बनाती है, क्योंकि इसमें क्या, कब, कैसे, ये तीनों
0: चीजें आती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही चंचल तूने। और पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा था, जो हमारे कितने बड़े आइडियल हैं आज भी
1: हम सबके लिए किसी ना किसी तरह से वो प्रेरणा के।
0: बिल्कुल, उन्होंने कहा था सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो नींद न आने दें।
1: क्या बात,
0: मतलब सपना बड़ा रखो पर उसे पूरा करने के लिए रोज नींद कुर्बान करने की तैयारी में भी रखो।
1: बिल्कुल, और इसी तरह से हमें अगर इसे आसानी से समझना चाहें तो महत्वाकांक्षा हमें गाड़ी में बिठाती है और आवेग उसका स्टेयरिंग छीन लेता है और अनुशासन जो है वो हमें
0: मंजिल तक पहुंचा देता है। और इसलिए बड़ा सोचो पर आज के छोटे फैसले को हल्के में मत लो, क्योंकि भविष्य कल नहीं बनता, वो आज के आवेग पर काबू पाने से बनता है।
1: और देखिए हमारे साथी लिख रहे हैं कि महत्वाकांक्षा और भविष्य निर्माण, महत्वाकांक्षा है वो जीवन को आगे बढ़ने के लिए दिशा देती है। सपने तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें मेहनत, धैर्य और सही दिशा का साथ मिलता है। भविष्य अचानक से नहीं बनता, वो आज के छोटे छोटे प्रयासों और निर्णयों से आकार लेता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण उन्होंने भी दिया है और आगे लिख रहे हैं कि साधारण परिस्थितियों से आगे बढ़कर उन्होंने भी अपने ज्ञान, परिश्रम, दृढ़ संकल्प के बल पर ही देश के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने का गौरव भी प्राप्त किया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और उनका जीवन तो हमें सिखाता है चंचल कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, बड़े सपने और निरंतर प्रयास ही हमारा भविष्य बदल सकते हैं।
1: और भी आगे संदेश हैं?
0: बस अभी तो हमने इतने ही पढ़े हैं, एक गाना सुन ले ताकि कार्यक्रम की थोड़ी दिशा बदल जाए।

0: हाँ, तो बड़ा प्यारा गीत तुमने सुनवाया अभी, और हमारे श्रोता भी बहुत पसंद करते हैं इस गीत को, और साथ ही हमारी जो सखियाँ हैं वो पसंद करती हैं नंदना साड़ी को भी।
1: हाँ, और कई सखियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें नंदना साड़ी के बारे में नहीं पता था। हमारी एक सखी ने लिखा भी है कि इस साड़ी के बारे में, भैया इसका नाम जो है उन्होंने
0: पहली बार सुना है।
1: तो चलिए बताते हैं कि नंदना साड़ी या नंदना प्रिंट मध्य प्रदेश के कोई एकदम गुमनाम 400 साल पुरानी ये कला है। और ये साड़ी मध्य प्रदेश के नीमच जिले के तारापुरा और उम्मेदपुरा गाँव की एक कला है, और इसे वहीं के खास समुदाय के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी से आज भी जिंदा रखा हुआ है।
0: तो ये नंदना जो प्रिंट है कोई बुनाई नहीं है चंचल, बल्कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और डाबू रजिस्ट प्रिंट की एक तकनीक है। यानी पहले के समय में कुछ खास जनजाति की महिलाओं के मोटे सूती घाघरे लेंगे इसी प्रिंट के बनते थे, पर अब साड़ी, सूट, दुपट्टा, बेडशीट और सब इसी से बनने भी लग गए हैं। साथ ही नंदना साड़ी की खासियत यही है कि ये 100% प्राकृतिक और इको फ्रेंडली है। इसमें केमिकल नहीं लगता, इसके रंग बनते हैं नील यानी इंडिगो, अनार के छिलके, हरड़ा, अलेजरीन और लोहे के जंग जैसी चीज़ों से ये साड़ी बनती है, और कपड़े को नरम करने के लिए अरंडी के तेल और सोडा के पानी में इसको गलाया जाता है।
1: और देखिए ना, हमारी एक सखी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। वो कहती हैं कि मैं गुस्ताखी के लिए माफ़ी मांगते हुए अपनी सखियों को इस सखी सहेली के मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी।
0: क्या?
1: कि साड़ी के बारे में मेरा ये कहना है कि गूगल से हमें सभी तरह की जानकारी मिल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ों की जानकारी व्यक्तिगत रूप से हम सभी बांटेंगे तो वो ज़्यादा परफेक्ट होती है। तो अगर किसी के पास इस टाइप की साड़ी या इस टाइप के कपड़े होते हैं तो वो अपनी बात को साझा करें, और ये बड़ी अच्छी बात लिखी है।
0: हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने हमारी बात कह दी एक तरह से। हम भी अपनी सखियों से अक्सर कहते हैं कि भाई आपके पास ये नंदना या कोई भी साड़ी है तो उसका जिक्र कीजिए। अभी भी हम कहेंगे अगर आपके पास नंदना साड़ी है और या आप कभी लेने गई थी, आपको पसंद आई, आपने किसी को गिफ्ट दी, तो उसका जिक्र अभी आप कर सकती हैं, तो हम उन्हें शामिल कर लेंगे।
1: तो ये जो साड़ी है इसका लॉट जो है वो लगभग 800 मीटर का होता है, और उसे तैयार करने में करीब करीब 18 स्टेप और 25 से 30 दिन की मेहनत लग जाती है। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें कपड़े को गलाना, अरंडी के तेल में भिगोना, थोड़े से धुलाई करना, हरड़ा का पाउडर लगाना, बिछलाई यानी कि गोंद और मिट्टी की छपाई होती है ना, उसको रोकना, ब्लॉक की छपाई, नील में रंगाई, धूप में सुखाना, फिर अंत में धुलाई, और इतने स्टेप से होकर जब ये गुजरता है ना, तभी कपड़ा जो है वो पक्का
0: होता है। यानी ये वो हीना की तरह हो गई कि पिसकर ही हीना जो है रंग लाती है ना। और नंदना में पारंपरिक रूप से 4 मुख्य बूटे होते हैं, और हर डिजाइन और मोटिफ का अलग मतलब होता है। मिर्ची का मतलब है तीखापन और बुरी नजर से बचाओ, तो चंपाकली का मतलब है कि इसे खास समुदाय की अविवाहित लड़कियां पहनती थी। अंबा का मतलब है कि इसे साड़ी और गर्भावस्था के समय शुभ माना जाता था, और जलम यानी बूटा का मतलब है समृद्धि का प्रतीक। तो आजकल इनमें अमरूद, यूकेलिप्टिस, सागवान, नीम के पत्तों के इको प्रिंट भी बन रहे हैं।
1: और इस साड़ी में जो है रंग का विज्ञान और इसकी मान्यताएं वो भी अलग अलग हैं। नीले और हरे रंग जो हैं वो इसीलिए खेत में जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए होता है, ताकि वो गंदा कम दिखे।
0: अच्छा।
1: और नील को सबसे शुभ भी माना जाता है, इसीलिए कारीगर भी ये मानते हैं कि गाय जो है वो नील का पानी पीती है तो ताकतवर बनती है, और नील के लगे हाथ से खाना खाने से पेट की बीमारियां भी नहीं होती। कुछ पारंपरिक मान्यता है।
0: अच्छा, ऐसा। तो ये साड़ी बनाते समय इन सब बातों का भी ख्याल रखते हैं। और नंदना साड़ी में जितनी बारीकी से काम किया जाता है तो साड़ी की कीमत भी उतनी ज्यादा। यानी एक असली हाथ की बनी नंदना साड़ी 2500 से लेकर 8 से 10 हजार तक की होती है। और पहले तारापुर, उम्मेदपुरा में लगभग 100 से ज्यादा परिवार ये काम करते थे, और अब सिर्फ 8-10 परिवार ही बचे हैं, क्योंकि ये बहुत थकाऊ और समय लेने वाला काम है, और बाजार में इसका केमिकल प्रिंट भी मुश्किल से मिलता होगा, तो कम लोग अब इसको बनाते हैं।
1: हाँ, क्योंकि कई बार कारीगरों को भी लगता है ना कि मेहनत बहुत ज्यादा है, और उसकी अपेक्षा में जो दाम है वो उनको नहीं मिल पाते, और इस तरह से जो बहुत सारी कलाएं हैं वो लुप्त होती जा रही हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो हम सभी को मिलकर इनको बढ़ावा देना चाहिए, और इसीलिए सरकार अभी से GI टैग दिलाने की प्रक्रिया में है, और इसका जरिया बना रही है। बनवारी जरिया, पवन जरिया को राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 और स्टेट अवार्ड 2002 और 2022 में भी मिल चुका है। व्यवसाय, राजनीति, फिल्म जगत, हर क्षेत्र में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो भी इस साड़ी को अपनी पसंद में शुमार करती हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर है नंदना साड़ी। तो हमारी सखियां बताएं कि उनके पास नंदना साड़ी है भी कि नहीं।
1: तो हम एक गीत सुन लें।
0: हाँ?

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं।
1: बिल्कुल, तो चंचल बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस इन दिनों हम मना रहे हैं, विश्व कपास दिवस, और इसकी बड़ी महत्ता है। हम सभी जानते हैं कि ये दिन जो है आज के दिन खास मनाया जाता है, और कपास को सफेद सोने के नाम से भी हम जानते हैं।
0: हाँ।
1: क्योंकि ये सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों की रोजी रोटी भी है।
0: सही कहा मंदाकिनी जी। और इस दिन का आयोजन, इसकी जो पहल की गई थी वो 7 अक्टूबर 2019 को जिनेवा में हुई, जब व्यापार विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय में पहली बार कपास दिवस मनाया गया था। और इसे शुरू करने की मांग अफ्रीका के 4 सबसे कम विकसित कपास उत्पादक देशों ने की थी। ये 4 देश हैं बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली। और इन देशों ने कॉटन फोर को, इन देशों को कॉटन फोर भी कहा जाता है। आगे चलकर बाद में कोट डी या आईवोर भी इसमें शामिल हो गए।
1: हाँ बिल्कुल, 30 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी और एक प्रस्ताव पारित करके 7 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाने का फैसला किया। और ये दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कपास दुनिया के 5 महाद्वीपों में करीब 75 से ज्यादा देशों में उगाई जाती है
0: जी।
1: और दुनिया भर के 10 करोड़ परिवार सीधे कपास उत्पादन से जुड़े हैं और लगभग 28 करोड़ लोग टेक्सटाइल सेक्टर में भी काम करते हैं।
0: बिल्कुल, जब भी हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो इस बात के महत्व को हम जरूर समझें कि बहुत सारे परिवार हैं जो इससे रोजी

0: रोटी भी कमाते हैं और बहुत सारे कहते हैं ना कि अलग अलग कड़ियों से होकर कोई कपड़ा हम तक पहुंच पाता है।
1: वही तो अभी आपने कहा ना कि देखिए करीब 75 से ज्यादा देशों में ये कपास होती है, कितना महत्वपूर्ण है ये और कितना रोजगार मिलता है इससे ना।
0: और बहुत सारे कम विकसित देश हैं उनके लिए कपास का कुल निर्यात 50% तक हिस्सा है। कपास से सिर्फ कपड़ा नहीं, कपास के बीज का तेल, पशु आहार और कागज भी बनता है। महिलाओं की भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है इसमें। कपास चुनने उसकी प्रोसेसिंग में 40% से ज्यादा काम जो है वो महिलाएं ही करती हैं। खाद्य और कृषि संगठन का हर प्रयास हर साल जैविक कपास, कम पानी वाली खेती और किसानों को उचित दाम मिले इसी पर होता है।
1: हाँ, और अगर हम अपने देश की बात करें भारत की, तो भारत और कपास का बहुत ही गहरा संबंध है चंचल, और इसीलिए ये दिन भारत के लिए बहुत खास है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। दुनिया की 26% कपास ही उगती है। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, ये मुख्य उत्पादक राज्य हैं और भारत की कपास को काली मिट्टी में उगने के कारण उच्च गुणवत्ता का भी माना जाता है।
0: बिल्कुल, और कपास की खेती में किसानों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं ना, वो है जलवायु परिवर्तन, कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग, किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम दाम मिलना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं वो होती हैं, चुनौतियां होती हैं। इसीलिए विश्व कपास दिवस मनाने का उद्देश्य यही होता है कि कपास को सिर्फ एक वस्तु या पदार्थ या नहीं समझा जाए, बल्कि गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के साधन के रूप में भी इसको हम देखें। और वैसे भी संयुक्त राष्ट्र ने इसकी परमानेंट थीम है, स्थायी थीम जो रखी हुई है वो है कॉटन फॉर गुड, लेकिन इस साल इसे एक उप शीर्षक इसके साथ जोड़ा गया है, यानी 2026 के लिए जो थीम है वो है कॉटन फॉर गुड बिल्डिंग प्रॉस्पेरिटी थ्रू ट्रेड ट्रांसफॉर्मेशन एंड पार्टनरशिप। इसका मतलब है कपास अच्छाई के लिए व्यापार परिवर्तन साझेदारी के माध्यम से समृद्धि का निर्माण
1: करना। बिल्कुल,
0: तो चलिए अभी गीत सुन ले
1: जी।

0: बहुत ही सुंदर गीत तुमने सुनवाया है चंचल, और हमारी सखियां और सखा इस गीत का आनंद भी ले रहे होंगे जैसे कि हम प्रकृति का आनंद लेते हैं।
1: हाँ। और प्रकृति जो शब्द है ये संस्कृत का बहुत गहरा शब्द है जो प्र और क्र इनसे मिलकर, जो इसके मूल शब्द हैं उनसे मिलकर बना है, और इसके कई मतलब अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। प्रकृति का सामान्य अर्थ वैसे अगर देखा जाए तो हम सभी जो समझते हैं वो नेचर या प्रकृति कुदरत से ज्यादा समझते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और प्रकृति मतलब वो जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है, जैसे पेड़ पहाड़ नदी जानवर मौसम पर्यावरण ये सब चीजें, या हम कहते हैं ना अपनी प्रकृति के बारे में कि हम अगर किसी
0: हमारी प्रकृति ये है
1: तो वो भी हमने नहीं बनाई है। प्रकृति का मतलब ही ये है जो कुदरत
0: ने बनाया है। जी, तो आज हमने शब्द जो दिया था हमारे श्रोताओं को प्रकृति, और श्रोताओं ने अपने अपने विचार हम तक पहुँचाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिसका निर्माण प्रकृति, जिसका निर्माण इंसान ने नहीं ईश्वर ने किया है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें इंसान पेड़ पौधे जीव जंतु नदियां पर्वत समुद्र वायु मिट्टी समेत प्राकृतिक प्रक्रियाएं सभी शामिल हैं। संस्कृत में प्रकृति शब्द में प्राकृ से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है मूल स्रोत या मूल आधार जिससे कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और इसे कायम बनाए रखने में हम इंसानों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। प्रकृति ने अपनी गोद में बिठाकर हर जीव को इनकी जरूरत के अनुसार सुख सुविधा दी है, उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हम इंसानों की बनती है। इंसान का प्रकृति से हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा।
1: क्या बात है, अच्छा संदेश है। और प्रकृति शब्द पर हमारे जो श्रोता हैं वो विचार अपने अपने प्रकट कर रहे हैं। एक संदेश में लिखा गया है, प्रकृति का व्यापक अर्थ है संपूर्ण भौतिक जगत ब्रह्मांड, और इसमें पेड़ पौधे नदियां पहाड़ जीव जंतु पर्यावरण शामिल है जो इंसानों द्वारा नहीं बनाए गए, प्रकृति प्रदत्त है। किसी भी प्राणी वस्तु का जन्मजात गुण उसका स्वभाव या प्रकृति कहलाता है। आग की प्रकृति गर्मी देना है। मनुष्य का शरीर भी प्रकृति के पांच बुनियादी तत्वों क्षिति यानी मिट्टी, जल पावक अग्नि, गगन आकाश और समीरा यानी वायु से मिलकर बना हुआ है। साधु और बिच्छू, बिच्छू का डंक मारना उसकी प्रकृति है, और उसके बाद साधु को उसी को
0: पानी से बचाना,
1: ये साधु की प्रकृति।
0: बहुत सुंदर बात, इन्होंने एक शब्द से कितनी ही बातें निकाल दी हैं, जिनका हमने कहा था कि आप किस अर्थ में प्रकृति को लेते हैं। प्रकृति, एक श्रोता लिखते हैं कि प्रकृति केवल हमारे चारों ओर फैले पेड़ पौधे नदियां पर्वत और खुले आसमान का नाम नहीं है, बल्कि जीवन का मूल आधार है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि ये हमें बिना किसी भेदभाव के सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए पानी, और जीने के लिए भोजन भी देती है।
1: मतलब प्रकृति कहते हैं ना कि हमारे स्वभाव को प्रकृति कहा जाता है कि भाई इस इंसान की प्रकृति है बहुत गुस्सा करना, इस इंसान की प्रकृति है बहुत नरम शांत है ना, तो हमारे स्वभाव को भी प्रकृति कहा जाता है। तो इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि प्रकृति के अलग अलग अर्थ अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हो सकते हैं। प्रकृति, एक संदेश में पढ़कर सुना रही हूं मंदाकिनी, जिसमें लिखा है कि प्रकृति केवल हमारे चारों ओर पेड़ पौधे पर्वत नदियां खुले आसमान का नाम नहीं, बल्कि ये जीवन का मूल आधार है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि ये हमें बिना किसी भेदभाव के सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, और जीने के लिए सबसे जरूरी चीज भोजन देती है।
0: बहुत अच्छा आपने लिखा है, कम शब्दों में गहरी बात लिख दी है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति बड़ा बेमिसाल मुद्दा है, प्रकृति के साथ रहना और बड़ा होना सभी को लुभाता है। शाम को अस्त हुआ सूरज के नीचे सिर पर पगड़ी बांधा गडेरिया जब अपनी भेड़ बकरियों को हांकता है तो बड़ा लुभावना लगता है। सुबह में सिर पर डोकरी लेकर निकलती है मलान कितनी बेमिसाल लगती है, जब उसके हाथों में चूड़ियां और सिर पर धानी चुनरियां उड़ी हो, गली से जब वो जाती हैं नैनाभिराम लगती हैं।
1: एक संदेश में लिखा है, प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, हमारी माँ के समान है। यदि प्रकृति स्वच्छ सुंदर रहेगी तभी हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।
0: वहीं एक श्रोता का कहना है कि हमारे घर के आसपास पेड़ बहुत ही कम है, इसलिए मैंने तो छत पर ही करीब 40 गमले रख लिए हैं, नियमित देखभाल करती हूँ और इस तरह प्रकृति के बीच कुछ समय गुजार लेती हूँ। बिल्कुल अच्छा कहा आपने, गुजर जाता है आपका वक्त ऐसे तो।
1: और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि वो प्रकृति के बीच में आनंद लेते हैं, तो भाई इस प्रकृति की रक्षा सुरक्षा हमारे ही हाथों में है।
0: बिल्कुल।
1: और अब हमारे हाथों में है कि
0: हमें गीत सुनवा दें।

0: अब हम क्या ढूंढने वाले हैं कि गुड़ हमने कहाँ रखा है रसोई
1: हाँ,
0: में।
1: हाँ भाई, और इतने मीठे मीठे गाने सुन रहे हैं, थोड़ी सी मिठाई की बात ना हो, वो भी ऐसा मीठा जो हमारे सेहत के लिए नुकसान भी ना पहुंचाए, वो होती गुड़ की मिठाई।
0: बिल्कुल वही तो हमने कहा कि गुड़ एक पारंपरिक और कहते हैं कि अपरिष्कृत जो है प्राकृतिक मीठा ठोस पदार्थ इसको माना जाता है, जिसे गन्ने के रस या ताड़ या खजूर के रस को उबालकर और गाढ़ा तैयार करके बनाया जाता है, है ना। तो ये गुड़ जो है सफेद चीनी के बिल्कुल विपरीत होता है, प्राकृतिक गुड़ है, इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और जिंक जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ मौजूद रहते हैं।
1: तो चलिए क्यों ना व्यंजन भी इस कहते हैं ना कि सेहतमंद जो चीज है गुड़ उसे ही बना जाए।
0: बिल्कुल।
1: तो गुड़ के शक्करपारे बनाने के लिए एक बाउल में एक कटोरी आटा ले लें और एक बड़ा चम्मच भर के मोयन डालें। एक बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर गुड़ को गला दीजिए ताकि वो पहले से ही पिघल जाएगा,
0: ठीक है।
1: और गैस पर जलाकर इसको या तो पिघला भी सकते हैं अगर आपने पहले से नहीं रखा है तो। इस पिघले हुए गुड़ के आटे से पानी को गूंदना है।
0: इसके पानी से आटा को गूंदना है, गुड़ के आटे से नहीं गूंदना है।
1: गुड़ का जो पानी हुआ है ना, गाड़ी गाड़ी चाशनी आपने बनाई,
0: लग रहा है कि फटाफट बनाऊं और खाऊं।
1: तो ये जो गुड़ की चाशनी बनाई इसे आपने आटा गूंद लिया और कढ़ाई में गरम गरम घी या तेल डालकर उसमें धीमी धीमी आंच पर तलिए तो शक्करपारे तैयार
0: हो जाएंगे। वाह क्या बात है, इच्छा हो गई है खाने की। और एक देखिए गुड़ की लापसी भी हमारे घरों में बनती है चंचल। गेहूं के दलिये को घी डालकर हल्का भूरा होने तक थोड़ा हम सेक लेते हैं, फिर उसमें गर्म पानी डालकर कुकर में एक सीटी दे देते हैं और गुड़ में पानी डालकर पिघला लें, फिर छानकर कुकर में बने दलिये में डालें, थोड़ा और पकाएं, देसी घी डालें, इलायची डालें, कुछ मेवा डालना चाहें तो डाल दें। पौष्टिक और स्वादिष्ट जो है लापसी तैयार हो जाती है और पुराने समय में गांवों में शादी ब्याह में भी ये बहुत ज्यादा बनाई जाती थी।
1: सच्ची में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।
0: मीठा मिष्ठान के रूप में लापसी ही बनाई जाती थी, बचपन में हमने बहुत जगह लापसी का सेवन किया है।
1: और जब हम कहते हैं ना कि जब किसी का स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो पेट को हल्का रखने के लिए भी खिचड़ी और लापसी इसी तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, विकल्प होते हैं खाने के लिए। तो गुड़ की खीर के बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजा है कि हमारे प्रांत में छठी और जन्मदिन की नई बहू, जन्मदिन या हो या कोई नई बहू आती है तब त्योहारों पर चने की दाल पूरी गुड़ की खीर जरूर बनती है और छठ पूजा में भी जो गुड़ की खीर है वो बनाई जाती है और इसी से सूर्य देवता का भोग लगाया जाता है। तो बासमती चावल में दूध को पकाना है और जब खीर गाढ़ी हो जाए पककर तब गुड़ को अलग से पिघलाकर थोड़ी ठंडी होने पर ऊपर से पिघले हुए गुड़ को मिला देना है, फिर इलायची नारियल और किशमिश मिला देने या जो भी आप मेवे डालना चाहें वो मेवे डाल सकते हैं। इसी तरह से स्वादिष्ट खीर तैयार हो जाती है। एक दूसरा तरीका इन्होंने बताया है कि गुड़ के पानी में चावल को पका सकते हैं क्योंकि चावल पकने में बहुत ज्यादा समय लगता है।
0: हाँ।
1: और जब चावल पक जाएगा तो ऊपर से गाढ़ा किया हुआ रबड़ी नुमा दूध है वो मिला दीजिए तो खीर तैयार हो जाती है। इस तरह की खीर में ये ध्यान रखा जाता है कि गर्म गर्म खीर में या दूध में जब गुड़ डाला जाता है तो फट जाता है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ, मतलब बनाते समय हमें ध्यान तो रखना ही पड़ता है, देखिए कि कोई चीज से किसी तरह का नुकसान नहीं हो जाए। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गुड़ के पुए भी बनते हैं।
1: हाँ।
0: अरे मन हो गया है पुए खाने का। हमें अपना बचपन याद होया जहाँ हमारी माँ हमें गुड़ के पुए खिलाया करती थी। ये लिखते हैं कि आटे के साथ मिलाकर और जो मुझे पसंद है वो है पूरन पोली, जिसमें चने की दाल को भिगाकर उसको उबालकर गुड़ के साथ घी में सेकते हैं और उसमें गुड़ डालते हैं, साथ में जो सूखे मेवे पसंद हो वो डाल दें, पेस्ट तैयार करें, आटे की लोई में भरकर घी से सेके और जो बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती है।
1: तो भाई इतने मीठी चीजों की बात चल रही है तो मीठा गाना भी तो होना चाहिए।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो चंचल, हमारे श्रोताओं को भी इंतजार है कि आगे हम गुड़ के लेकर क्या रेसिपी बताने वाले हैं, है ना।
1: तो गुड़ को लेकर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि गुड़ हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर आने वाली पीढ़ियों के लिए। और कुछ मिठाइयां हैं जैसे गुड़ के शक्कर पाड़े, गुड़ का रसगुल्ला, ये इन्हें हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं इनको बड़े पसंद है। और चीनी के रसगुल्ले जो तैयार किए जाते हैं, इसमें चाशनी की जगह अगर गुड़ की चाशनी बना दी जाए तो ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और गुड़ की तो हम पंजीरी भी बनाते हैं, और ये पंजाबी शायद लिख रहे हैं कि पंजाबी में तो ये बहुत ज्यादा बनाई जाती है। और गुड़ को भून कर इसकी पंजीरी तैयार की जाती है, घी डाला जाता है, भूना जाता है, पूरे तरीके से इसको बनाया जाता है, तो बहुत स्वादिष्ट लगती है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सर्दियों में गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं, तो गुड़ से बनाने से वो पौष्टिक हो जाते हैं। गुड़ के गुलगुले बनाइए और गुड़ के भजिए कह रहे हैं, और मीठे भजिए बना सकते हैं। गुड़ को गर्म पानी में पिघलाकर उसे छानकर उसमें आटा, नारियल की कतरन और इलायची डालकर घोल बनाकर तेल में पुए तल लीजिए। गुड़ और चने की दाल की पूरन पोली भी आप बना सकते हैं, है ना।
1: इसी तरह से जब

0: भाई चाय का समय होता है ना, तो बहुत सारे लोगों को
1: 3 बजे चाय चाहिए होती है। इन्होंने मेरे मन की बात कह दी। मैं जब से सोच रही थी कि गुड़ की चाय जब हम पीते हैं, या कई बार चाय फीके रखते हैं और हाथ में गुड़ की डली लेकर भी सर्दियों के दिनों में हम लोग ऐसा चाय का सेवन करते थे, तो लिख रहे हैं कि ऐसे भी गुड़ की चाय बनाकर पी जा सकती है
0: जी। और बिना फटे स्वादिष्ट और परफेक्ट गुड़ की चाय बनाने की आसान सी विधि भी इन्होंने लिख कर भेजी है कि इसके लिए सामग्री चाहिए 2 कप चाय आप दोनों दीदियों के लिए।
1: क्या बात है।
0: 1 कप पानी, 2 कप दूध जो कि अलग से गर्म किया हुआ है, यानी कि पूरी तरह से औंटाया हुआ खौलाया हुआ ये दूध है। चाय पत्ती चाहिए 2 छोटे चम्मच, और चाय पत्ती की मात्रा आप अपने हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा कम कर लीजिए। आपको बहुत कड़क पीनी है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें चाहिए गुड़ थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ या पाउडर के फॉर्म में बनाया हुआ, 2 से 3 चम्मच चाहिए, या फिर स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम और ज्यादा भी कर लीजिए। अदरक चाहिए 1 इंच कुचला हुआ, हरी इलायची चाहिए 2, वो भी अच्छे से कुचली हुई या पाउडर बनाया हुआ। इसे बनाने के लिए एक पैन में या सॉस पैन में 1 कप पानी डालना है, कुचला हुआ अदरक और हरी इलायची डालकर पानी को अच्छी तरह से उबलने देना है। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें चाय की पत्ती डालनी है, 2-3 मिनट तक इसे भी उबालें ताकि अच्छा रंग और स्वाद चाय पत्ती का आ जाए। अब इसमें पहले से गर्म किया हुआ दूध है वो डाल देना है। दूध को हमेशा उबाला हुआ या गर्म किया करके ठंडा किया हुआ दूध डालने से चाय फट सकती है, ऐसा ही ने आगे लिखकर बताया है। और दूध डालने के बाद चाय को धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, फिर गैस को बंद कर देना है। बंद करने के बाद जो कद्दूकस किया हुआ या पाउडर के फॉर्म में लाया हुआ गुड़ है वो डाल देना है, फिर अच्छी तरह से मिला लीजिए, छान कर गर्मा गर्म गुड़ की चाय का
1: आनंद ले सकते हैं। तो आपने 2 कप चाय भेजी है ना, ये 2 कप मुझे ही पीने पड़ेंगे क्योंकि चंचल दीदी जो है चाय नहीं पीती है।
0: तो चलिए आपके लिए डबल चाय हो जाएगी, लेकिन मैं जो है ना गानों की मिठास से ही काम चला।
1: चलिए फिर।

0: मन ही मन में लड्डू फूटे, अगर लड्डू गुड़ के होंगे ना तो ज्यादा सेहतमंद होंगे।
1: और अभी तो हम गुड़ के लड्डू की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि गुड़ की बात है तो लड्डू भी गुड़ के ही होंगे। गुड़ की बात निकली है तो एक श्रोता लिखते हैं, कह दूं कि दोपहर के भोजन के साथ गुड़ जरूर लेता हूं, भोजन के पूरा होने के बाद गुड़ के साथ एक रोटी खा लेता हूं, और भोजन के अंत में गुड़ खाने से पाचन क्रिया आसानी से हो जाती है,
0: क्योंकि गुड़ ही गुड़ है।
1: गुड़ ही गुड़ है।
0: और आगे एक श्रोता लिखते हैं कि हम भी गुड़ और आटे के मालपुए खाने हैं, और आपकी बातें सुनकर हमें भी लग रहा है कि हम इसे जरूर बनाएंगे।
1: वहीं एक श्रोता लिख रही है कि अब सर्दियां आने वाली हैं और गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में ये बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है।
0: तो भाई आप जरूर गुड़ के व्यंजन का मजा लीजिए, लेकिन कार्यक्रम का समय क्योंकि पूरा हो चला है तो हमें जाने की इजाजत भी दे दीजिए।
1: बिल्कुल। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
0: चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं और हमारे केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जा रहे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुनने वाले हैं उन्हें जिनकी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों हमारे मन को छू रही है, खास तौर से इसके कुछ गीत जैसे कि ये
1: हो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: और ये गीत तो हमारे दिल में घर ही कर चुका है,
2: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: तो आज हनुमान अंश फिल्म की शूटिंग और सृजन से जुड़ी बातें हमसे साझा करने आए हैं निर्देशक विशाल चतुर्वेदी। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता
3: सिंह।
0: आइए सुनते हैं इस दिलचस्प बातचीत की पहली कड़ी।
4: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे लेखक निर्देशक की आमद है जो इन दिनों बहुत चर्चा में है। ये है युवा लेखक निर्देशक और आजकल इनके नाम के दीवाने हो रहे हैं लोग, वो हैं जाने माने निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी जी। उनकी फिल्म बहुत हिट हुई है। विशाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
5: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए ममता जी।
4: विशाल जी, सबसे पहले तो बधाई लीजिए अपनी फिल्म की हनुमान अंश। हमने भी देखी और समूह के साथ देखी, बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बहुत बधाई।
5: धन्यवाद।
4: और अब हमें बताइए कि ये हनुमान अंश की कहानी ने कैसे आपके दिल में दस्तक दी, कैसे आपके मन में विचार आया?
5: तो एक तो हनुमान अंश टाइटल है और दूसरा हनुमान अंश की जो कहानी है वो श्री नीलकंठ बाबा महाराज जी के बारे में है, जो भारत के पिछले सदी के आई थिंक सबसे रिवर्ड संत आज की डेट में कहे जा सकते हैं। साईं बाबा भी थे और इसके अलावा बहुत सारे श्री अरविंदो, ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं, जिसमें श्री नीमकरवी बाबा की जो कहानी है वो मुझे बहुत खास तौर पे इंटरेस्ट इसलिए करती है क्योंकि बहुत सादगी से भरी हुई है और किसी तरह का कोई आडंबर उनके जीवन में था नहीं
4: जी।
5: इसके अलावा वो मतलब हर तरह की चमत्कारों से वो हरदम भागते रहे और किसी एक स्थान पर रुक के उन्होंने किसी तरह का एक अपना एक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की। उनका उद्देश्य सिर्फ जगह जगह पे हनुमान जी के मंदिर बनाना और लोगों को भूखों को भोजन, भक्तों को प्रसाद, ये उनका टोटल आइडिया था। और भी उनकी कुछ सीख थी जो जीवन में देते थे, पर वो आध्यात्मिक सीख होंगे, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, एक मानव के रूप में मुझे वो बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं इंटरेस्ट करते हैं। प्लस उनकी चेहरे पे जो एक अजीब सी कोई ऐसा अट्रैक्शन है कि हर व्यक्ति आभा है, कुछ तो है ऐसा जो कि हर व्यक्ति उनको देख के ना देखते ही रह जाता है, तो ये भी एक चीज़ थी। इसलिए मुझे लगा कि ये होना चाहिए। पर मैं खुद से उनको फॉलो करता हूँ कुछ पिछले 20 साल से, और जब मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था, पहली पोस्टिंग मेरी हल्द्वानी में थी, वहाँ से एक मेरे साथ भी कुछ ऐसा इवेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं नया पर्सपेक्टिव मिला लाइफ को लेकर कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं उनकी कहानी बहुत समय से फॉलो कर रहा था। हनुमान अंश टाइटल मुझे नीप करोरी गांव है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे उन्होंने साधना अर्ली एज में की, वो अपने फिल्म में दिखा
4: हुआ।
5: तो वहाँ पे जब मैं गया था रिसर्च के लिए, तो वहाँ के लोग उनको आंशिक हनुमान और आंशिक अवतार हनुमान का बोलते थे, हनुमान जी का बोलते थे, जिस वजह से मुझे वो टाइटल बहुत अच्छा लगा और मैं उनके नाम से फिल्म नहीं बनाना चाहता था। पहले दिन से क्लियर था कि मुझे उनके नाम से फिल्म नहीं बनानी, क्योंकि वो इतने पॉपुलर हैं कि वो ऐसा कहीं से प्रतीत ना होने लगे कि मैं उनके नाम पे राइड कर रहा हूँ। और प्रतीत होने से ज़्यादा खुद से स्वयं से भी अंदर से भी वो इच्छा होती है ना कि आप एक कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ना कि किसी तरह की बायोपिक पे आप राइड करके कि भाई बड़ा व्यक्ति है उसकी बायोपिक बनाने मिल गई तो अब ये अच्छा उसमें नंबर्स आएंगे, यू विल ऑलवेज गेट आई मीन अ लॉट ऑफ, आपको बहुत तालियां मिलेंगी, अप्रिशिएशन मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट क्या हम समाज को क्या दे रहे हैं कॉन्सेप्ट लेवल पे, आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट के लेवल पे, तो ये आई थिंक उद्देश्य था। इसलिए हनुमान अंश और श्री नीमकरोली बाबा, दिस इज द रीजन एंड दिस इज हाउ उनकी आमद हुई।
4: तो नीमकरोली बाबा को एक भक्ति भाव से लोग देखते हैं और कुछ चमत्कार के रूप में भी देखते हैं, भले ही वो चमत्कार ना करते हों, और रहस्य के रूप में भी। तो ये उनके पूरे व्यक्तित्व को फिल्म में आपने उतारने की कोशिश की है, तो किस तरह की चुनौतियाँ आई, कौन सा भाव पक्ष आप ज़्यादा लाना चाहते थे और आपको लगा कि ये सही हुआ?
5: मुझे लगता है कि उनकी मैंने एक मानवीय कहानी बोलने का ज़्यादा प्रयास किया है, चूंकि वो स्वयं चमत्कारों से बचते थे तो हम भी चमत्कारों से फिल्म में बचे हैं
4: जी।
5: लीलाएं होती हैं जब आपके कोई संत महात्मा आपके जीवन को देख लेता है, वो अकाल जो बोलते हैं ना कि वो उनको त्रिकालदर्शी होते हैं, वो समय को देख सकते हैं, आपके पास्ट को भी देख सकते हैं, आपके फ्यूचर को देख सकते हैं, तो वो आपको आपके अंदर एक ऐसा छोटा सा चेंज लेके आते हैं जो ऑन अ ट्रेजेक्ट्री लेवल, अगर वो आज उन्होंने 0.5% का अगर उन्होंने एंगल चेंज किया आपकी लाइफ का, डायरेक्शन रीडायरेक्ट किया आपको, तो इन द कोर्स ऑफ टाइम 10 years और 20 years कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। लाइक अब मेरा अपना स्वयं का एक वो है कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाज़ा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है। और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 ईयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वॉज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम 20 ईयर्स बैक। तो इसको लीला बोलते हैं, तो इसको चमत्कार नहीं बोल सकता मैं। चमत्कार तो कोई जादूगर भी कर सकता है, वो होते ना कि हवा में ऐसे कुछ करते हैं, कुछ ले आते हैं, तो चमत्कार ही व्यक्ति लोग उनके उनको चमत्कारी बोलते हैं पर वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा उन्होंने। उन्होंने हरदम बोला कि हनुमान जी ने किया होगा, आपका राम जी कृपा होगी, भगवान कृपा होगी, ऊपर वाली कृपा होगी। तो इस तरह से तो मैं मानवी उनके साइड को ज्यादा तवज्जो देने का प्रयत्न मैंने किया है।
4: जी, ये फिल्म में आपने दर्शाया भी है जब वो क्रांतिकारी अंदर कमरे में है और वो बेल बजाते हैं तो वो पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है, तो ये क्लियर है कि जैसे वो चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं या इंट्यूशन हुआ है, इस बात को आपने दर्शाया भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज का जो युग है इसमें ज़रूरी है कि चमत्कार से दूर जाया जाए। और आपने बताया कि, और हम सभी जानते हैं कि आपने मेडिकल की पढ़ाई की, MBBS पढ़ रहे थे और अचानक फिल्मों की ओर रुख कर लिया, कैसे ये संभव हुआ, कहाँ से आपके मन में ये बदलाव आया?
5: मुझे लगता है कि लखनऊ, जब मैं रहने वाला बुंदेलखंड का हूँ, वहीं पढ़ाई पला बड़ा भी वहीं पे हूँ और पढ़ाई भी वहीं से की है। जालौन ज़िले में एक छोटी सी जगह है कौंच, वहाँ पे मैंने अपनी 10+2 तक पढ़ाई की, उसके बाद एक साल ग्वालियर था, वहाँ से लखनऊ आ गए। और लखनऊ में जो एक जैसे बोलते हैं वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ की जो अपनी अपनी तहजीब है
4: जी।
5: वो कहीं ना कहीं मैंने उसको इम्बाइब करना शुरू किया। तो पहले तो भाषा सुधरी वहाँ जाके, एक ठेठ बुंदेलखंडी और खड़ी हिंदी बोलने वाला व्यक्ति, एक थोड़ी नफासत आ जाती है, एक आपकी जबान में थोड़ा उर्दू आ जाती है। तो पोइट्री वहीं से फूटी, वहीं से मैंने म्यूज़िक में इंटरेस्ट मेरा आया। मैं जिस गली में रहता था वहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र जी, जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनकी हवेली जस्ट घर के सामने थी, छनूलाल जी मिश्रा और ये सब लोग जो है ना वो गली का ही पार्ट थे, तो उसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस हुआ। फिर मैं भातखंडे जाना शुरू किया, फिर मैंने भातखंडे में कुछ एक साल विशारद का प्रथम वर्ष भी किया, मतलब संगीत में गायकी में।
4: अच्छा।
5: और वो एक साल ने मुझे काफी हद तक जो है ना परिवर्तित कर दिया। एक मेरा जो एक क्रिएटिव साइड होगा जो मुझे पता नहीं था, वो सडनली स्फुटित हो गया। और उस वजह से मुझे लगता है कि लखनऊ हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। तो बेसिकली वो मेडिकल का सिलेक्शन होने से पहले ये सब मेरे अंदर इम्बाइब हो गया था। तो तैयारी करता था शाम को 6 बजे से, वहाँ की क्लास होती थी, तो शाम को 6 बजे तक सब फिनिश हो जाता था, तो वहीं से अपने कोचिंग से लौटता था मैं और 1 घंटे की वो क्लास करके घर आता था। और उसी बीच में आगे कहीं प्ले हुआ कोई तो देख लिया, या कुछ ऐसा कार्यक्रम चलता रहता रहा, उमरनाथ बली नाम का एक वहाँ पे एक प्रेक्षागृह है, तो वहाँ पे प्रेक्षागृह में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था
4: जी।
5: तो वो एक रूटीन बन गया। और फिर वो सिलेक्शन होने के बाद में मैं नहीं चाहता था कि मैं MBBS करने जाऊँ
4: जी,
5: तब तक मेरा काफ़ी इंटरेस्ट चला गया था इसमें। तो मेरी माता जी ने मुझे बोला कि तुम ये कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना हो तो कर लेना। एंड मेरा जब मैं गया, मुझे कॉलेज जो मिला वो गोरखपुर था
4: जी,
5: तो गोरखपुर का थोड़ा कला वगैरह से थोड़ा सा कम लेना देना है, ऐसा नहीं कि नहीं है पर, और हमारा कॉलेज भी बिल्कुल मेडिकल कॉलेज
4: ग्रामीण परिवेश है, बिल्कुल आंचलिक
5: जी, और शहर से बाहर भी है, तो वो करीबन 7-8 किलोमीटर दूर था। तो शहर जाने के लिए फिल्म देखने के लिए जाते थे हम लोग बस, बाकी वो हमारा जो 12-15-50-40-50 acres की जो कॉलेज कैंपस था वो वही दुनिया थी हमारी
4: जी।
5: तो उसके अंदर की जो सो खैर, कहने का मतलब ये है कि MBBS किया तो उस बीच में जितनी भी क्रिएटिव परसुइट्स थी उनको फॉलो भी किया वहाँ पे, बट इवेंचुअलिटी में अब होता ये कि आप किसी चीज़ के साथ में बहुत समय तक रहने लगे तो आपको वो भी अच्छा लगने लगता है। तो मैं लास्ट फाइनल प्रोफेशनल तक मैं सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ता था
4: जी जी।
5: फाइनल प्रोफेशनल में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सडनली मेडिसिन अच्छी लगने लगी, एज एन द वे पीपल जब वो अच्छे हो जाते हैं, जब वो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है, प्लस आप जो मानवीय शरीर है उसको आप बहुत डिटेल में देख रहे हो और कैसे रिएक्ट करता है ऑल ऑफ दैट, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया
4: जी।
5: तो फिर मैंने कहा कि अब जॉब भी करते हैं, और पहला जॉब इसीलिए हल्द्वानी में, पिथौरागढ़ में था एक्चुअली, कुछ महीने के बाद मैंने वो छोड़ के हल्द्वानी में आ गया था मैं, और वहाँ से ये नई ट्रेजेक्ट्री शुरू हुई, जिसे हनुमान अंश की यात्रा जिसे बोलेंगे, वहाँ से शुरू हुई जी।
4: तो अब यहाँ पर आपने बहुत सारा जिक्र किया, गाने का भी जिक्र किया, मतलब कि ऐसा लगा कि आप गाते भी हैं, और हनुमान अंश में आपकी आवाज़ में एक गाना है जो काफ़ी प्रचलित भी है और लोग पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनना।
5: आप जो कहेंगे वो सारे गाने मुझे बहुत प्रिय हैं, हृदय में जिनकी सीताराम जो मैंने गाना गाया है वो भी बहुत क्लोज टू माई हार्ट है, और वो बहुत ही कमाल की बात है कि उसको मैंने कंपोज नहीं किया, वो अचानक से मेरे दिमाग कहीं से उतर आया हूँ
4: जी जी।
5: और वो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी फिल्म में अपने म्यूजिक को ना इंक्लूड करूँ। मैं आया तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने ही था सबसे पहले मुंबई में, और विशाल भारद्वाज मेरे लिए बहुत, जिसे बोलते हैं ना, वो बहुत ही मेरे लिए आइडियल थे
4: जी जी।
5: लेकिन विशाल जी को मैंने बहुत ज्यादा उनकी फिल्म जो है ना मकबूल को मैंने 27-28 बार देखा, मतलब लिटरली उनकी वो जो सीडी थी मेरे पास में वो घिस दिया था, मतलब ऐसा हो गया था कि स्क्रैच आ गए थे उसमें, इतना देखा मैंने मकबूल।
4: क्या बात है।
5: तो कहने का मतलब ये कि होता ये है कि आप जब आते हो कुछ करने के लिए फिर आपको समझ में आता है कि नहीं आपका अल्टीमेट गोल ये है, फिर आप ये क्यों कर रहे हो। कोशिश मैंने बहुत की कि अपने आप को अवे रखूं म्यूजिक से, क्योंकि वो मेरे लिए, मेरी अपनी आत्म शांति के लिए मैं म्यूजिक करता हूँ। मेरा सुबह का रूटीन अभी पिछले एक साल से तो बिगड़ गया, लेकिन सुबह का रूटीन मेरा एक हनुमान चालीसा जो मैं गाता हूँ अपनी खुद से, मैंने कंपोज की थी वो मैं अपने लिए गाता हूँ, उसको रिलीज ही नहीं किया मैंने, इट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई लोगों को बहुत सारों के पास। तो हृदय में जिनके सीताराम आई से के इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बट यू specifically ask me any of the song, I love all the songs, I can sing any one of it, I won't mind.
4: लेकिन मैंने आपकी आवाज के गाने का जिक्र इसलिए किया कि वो गाना तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आपकी आवाज में यहाँ पर हम चाहते हैं कि श्रोताओं को भी सुनवा दें।
5: चलिए तो मैं पहले हृदय में जिनके सीताराम ही गा देता
4: हूं। जी एक लाइन सुना दीजिए।
5: एक ही लाइन है, उसमें दूसरा लाइन है भी नहीं।
4: जी।

0: क्या बात है, एक साधक की मुद्रा में आप आ गए थे और वो ऐसा लग रहा था कि कहीं आपने जैसे साधना की हो बैठ के।
1: जी
0: तो यहाँ पूरी फिल्म में हनुमान अंश में हनुमान चालीसा को कथा के रूप में कहीं कहीं पिरोया है
1: जी
0: आपने, तो ये कहाँ से आपके मन में विचार आया? कुछ पहले से सोच रखा था या
1: जी
0: फिल्म बनते समय?
1: तो एक तो वो इवेंट जो है वो रियल इवेंट है
0: जी
1: जो फिल्म में आपने देखा है, लेकिन मैं 2021 में जब कोविड बहुत पीक पे था और मेरे बहुत परिवार के और मेरे दोस्तों के, मेरे मित्रों के फैमिली मेम्बर्स एक एक करके जा रहे थे, तो मेरे फर्स्ट कज़िन, मेरे मेरे लोकल गार्जियन थे कॉलेज में, वो ऐसे करते करते मेरे मामा जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड रघुवेंद्र सिंह हैं, उनकी माता जी,
0: जी
1: ऐसे
0: जी
1: बहुत सारे लोग कुछ 5-7 दिन के अंदर ही बहुत सारे लोग चले गए। और वो एक एज अ डॉक्टर मुझे जो है ना, मैं घर पे बैठा था, मैं क्योंकि मेडिसिन प्रैक्टिस छोड़ के बहुत साल हो गया है और बाकी सब तो कुछ कर नहीं रहे हैं, अब मैं एज अ मेडिकल मतलब डॉक्टर आई शुड डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए था। और मेरे पास कोई सच कोई डायरेक्ट कनेक्ट बचा नहीं था, तो जितना हेल्प कर पा रहा था मैं कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा एक क्लब हाउस नाम की एप्लीकेशन थी जहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिलना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो एक अलग चीज़ बन गई थी जहाँ पे सब लोग वॉइस में बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे ऐसा दिल में ऐसा ख्याल आया कि जितने लोगों को शांति चाहिए है वो शायद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वो शायद होप देगी लोगों को। तो हमने हनुमान चालीसा नाम का एक क्लब चालू किया 2021 में, अप्रैल का महीना था। पहले दिन ही लोग 8 घंटे तक उसमें हनुमान चालीसा होते हैं, लोग आईसीयू में लेटे हुए हैं और वो हमारे क्लब को सुन रहे हैं, पीपल रिकवर्ड फ्रॉम देयर आईसीयूज, जो कि आईसीयू से बहुत कम लोग निकलते थे उस वक्त, तो आईसीयू से बाहर निकले, फिर वो हमारे मॉडरेटर्स बन गए, तो वो क्लब आज भी वो क्लब चला रहे हैं।
0: जी
1: तो
0: जी
1: एक एक 12,000 से ऊपर उसके सब्सक्राइबर हो गए, लोग अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते थे और वो हनुमान चालीसा। तो ऐसे में मेरा एज अ फाउंडर ऑफ दैट क्लब मेरा रूटीन बन गया कि 2-2.5 घंटे तो हनुमान चालीसा को डिकोड करना शुरू किया मैंने।
0: जी जी जी
1: उसके पहले तो पढ़ना होता था, फिर हनुमान चालीसा को डिकोड करना, वो मेरी एक एक एक तरह से मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बन गया। तो कहें तो हनुमान अंश का कोर जो है वो हनुमान चालीसा है। अगर आप वो, उसमें भी एक डायलॉग है फिल्म के अंदर जहाँ पे बच्चा पूछते हैं मान जी उससे के, मान जी पूछते हैं कि आपका जो है क्यों हनुमान जी का ही पाठ क्यों है, ओके ओके,
0: बिल्कुल
1: तो कहते हैं क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है, तो क्या तो तुम्हारे भजन राम जी को पावे, तो वो कहते हैं किसी से प्रेम नहीं है, तो कहते हैं कि नहीं माँ से था क्यों, बोले माँ राम जी के पास चली गई, और
0: बहुत बढ़िया
1: करना क्या
0: सर।
1: चाहते हो, राम जी के पास पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा के पास पहुंचना है। तो ये पूरी फिल्म को हनुमान चालीसा में क्या लिखा है और एक बच्चे की भावना अपने माँ के प्रति क्या है और वो कितना अकेला अपने को महसूस कर रहा होगा कि वो जो है ना अपनी या माँ से इतना प्रेम था कि वो उन तक पहुंचना चाहता है क्योंकि किसी ने बोल दिया कि राम जी के पास चली गई, तो उसने पूरा अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि मुझे राम जी तक पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा तक पहुंचना है। एंड प्रॉब्ली दिस इज़ वन ऑफ दी मोस्ट, जिसे बोलते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो लाइन लोगों को पसंद आती है, स्पेशली मदर्स हैं,
0: जी जी
1: बच्चे हैं, बच्चे इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं उस लाइन से। वो हुआ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आई सॉर्ट ऑफ डिकोडेड हनुमान चालीसा फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, अभी भी मुझे बहुत मजा आता है। अब अगर आप मुझसे आप बात करेंगे तो आई विल लव टू चैट अबाउट हनुमान चालीसा फॉर आवर्स।
0: अभी सुनाइए
1: नहीं, हनुमान चालीसा चैट एज एन
0: थोड़ा सा तो सुना सकते हैं।
1: मैं जी
0: देखिए वहाँ एक बात मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहती हूँ, वो जो दृश्य है जिसका आपने जिक्र किया सचमुच बहुत मार्मिक दृश्य है कि एक पिता अपनी दूसरी

0: शादी करके आ रहे हैं और बच्चा बोलता है कि मुझे राम जी के पास जाना है जी। तो ये बहुत मार्मिक था और हम सबको यहाँ पर इमोशनल भी किया आपने, मतलब देखा कि लोग रो रहे हैं वहाँ पर। और इस पूरी फिल्म में कई जगह ऐसे लगता है कि हाँ हम कहीं, आपने जो साधक के रूप में दिखाया वो साधना में हम सब लीन हो रहे हैं, कई ऐसे दृश्य आए।
1: जी, जी।
0: तो यहाँ फिर से वापस लौटते हैं हनुमान चालीसा पर, तो वो अगर आप गाते हैं तो
1: नहीं
0: तो
1: हनुमान चालीसा तो मैं गा दूंगा, बट मैं हनुमान चालीसा को जो डिकोड करता हूँ मैं हनुमान चालीसा को, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, आई विल ऑल्सो सिंग कपल ऑफ लाइन्स। मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा जो है ना बहुत ही मल्टीपल कॉस्मिक कॉन्सेप्ट हैं, उनका संकलन है। और आपके जीवन में आप कैसे आध्यात्म की तरफ जब बढ़ते हो और आपको जब अल्टीमेट को जो आप पाना चाहते हो, भगवत प्राप्ति जो आप करना चाहते हो, तो उसका राह वो आपकी सुगम करती है, आपके जीवन को भी बहुत सॉर्ट करती है। जैसा कि श्री नीपकोली बाबा भी बोलते थे कि वो कहते थे राम नाम का जप करते रहने, राम नाम लिखते रहना, और हनुमान जी की भक्ति के लिए हरदम बोलते थे। तो आप भक्त क्या होता है वो आप हनुमान जी से सीख सकते हो कि वो अपने ईष्ट से ज़्यादा बलशाली हैं, पर वो सरेंडर उनको ही करते हैं,
0: इसको
1: ही करते हैं। भक्ति इसको बोलते हैं कि आप किसी भी, तो ये एक तो चीज है, और प्लस जो है ना उसमें तीन और कोड्स हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। तो हनुमान जी की भक्ति के बिना, हनुमान जी को समझे बिना, उनकी आज्ञा के बिना आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, दैट इज वन। द अनदर लाइन इज दैट राम रसायन तुमरे पासा, सो यू हैव द कॉस्मिक कोड और द कोड द फॉर्मूला टू रीच राम, सदा रहो रघुपति के दासा। तीसरी लाइन है तुमरे भजन राम जी को पावे, एज एन अगर आप हनुमान जी को भजते हो या आप हनुमान चालीसा करते हो तो आप भगवान राम को की प्राप्ति आप कर सकते हो। ये तीन लाइनों के अलावा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय भसम सुरभूप, हृदय भसम सुरभूप का मतलब क्या है कि आपको उनको दिल में, आपको दिमाग में नहीं रखना है, आपको हृदय में रखना है, इसलिए वो हृदय में जिनके सीताराम जैसा लाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता, आठ सिद्धियां आप ही दे सकते हैं, और यही प्रॉब्ली नीमकोरी बाबा के उनकी लाइफ में भी आप देखें जो सिद्धियां, जिनके प्रचलित सिद्धियां हैं वो कहीं ना कहीं उनको हनुमत भक्ति से आई हैं, क्योंकि हनुमत भक्ति जो है ना कलयुग में शायद वही एक भक्ति है जो आपको सुगम तरीके से, क्यों, क्योंकि अगली लाइन उसकी है अष्ट दिन दाता असबर दिन ऐसा वर सीता दिन दिन जानकी माता, तो जो जगत जननी माता सीता है उन्होंने आपको एक वरदान दिया कि आप ये सिद्धियां जो आपके पास ऑलरेडी हैं वो आप किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा ही एक भगवान राम ने भी उनको वरदान दिया कि सहस बदन तुम रो जस गावें इसका श्रीपति कंठ लगावें, जब लाए सजीवन लखन जी आए, जब वो संजीवनी लेके आए तो उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया सहस बदन तुम रो जस गावें, इसलिए आज भी भगवान राम से भी ज्यादा पॉपुलर हनुमान जी हैं
0: जी,
1: क्योंकि हनुमान जी को सब जानते हैं। तो आपको साउथ अमेरिका चले जाएंगे आपको वहाँ पे जो टेम्पल्स हैं वो पेरू वगैरह में, वहाँ पे भी आपको हनुमान जी की मूर्ति मिल जाती है जो कि 5,000 साल पुराने टेम्पल्स हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: ही वाज सो पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड एंड स्टिल इट इज ही इज पॉपुलर, कि आपका जो अमेरिका का राष्ट्रपति, जो पिछले राष्ट्रपति थे, वो हनुमान जी की मूर्ति जेब में रखते थे, बराक ओबामा,
0: बिल्कुल।
1: तो
0: हनुमान चालीसा लोग अपने पास रखते हैं, सिरहाने रख के सोते हैं, पर्स में रखते हैं, डर से निजात पाने के लिए हम सब भी वो करते, डर लगता
1: था, डर लगता तो हनुमान चालीसा पढ़ना,
0: हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अंधेरे कमरे में पार करना है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हो जाना
1: है। वो फिल्म में वो सीन जो है ना वो डेडिकेटेड टू दैट लाइन है कि आप पढ़ते तो हनुमान चालीसा इसलिए हो क्योंकि आपको भूत पिशाच निकट नहीं आवे, उस लाइन के लिए पढ़ते हो आप, लेकिन वो लाइन तो बीच में आती है तो आपको पढ़नी तो पूरी है
0: जी जी,
1: तो मन से पढ़ना बहुत आवश्यक है, इंटरनलाइज करना, और आपको जिस भी आप देवता, जिस भी भगवान को आप ईष्ट हैं आपके, उनको अंदर से मन से उनका ध्यान करना, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे जी,
0: बिल्कुल सकारात्मक भाव पैदा होता है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, कौन सा गाना सुनते हैं?
1: मैं भी आपको हनुमान चालीसा ड्यू है, मैं आपको दो कम से कम लाइनें सुनाता हूँ
0: जी जी, प्लीज सुनाइए
1: जी जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुं लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, जय सिया राम जय सिया राम, हाथ वज्र और ध्वजा बिरा

0: अभी मतलब मैं तो गाता रहूंगा तो 15 मिनट इसी में निकल जाएंगे, बट
1: गाने की बात चलिए हनुमान चालीसा आप गा ही रहे तो हम आपके पीछे की ओर बचपन की ओर ले चलते हैं, बचपन के गलियारों में। वहाँ आपने जिक्र भी किया कि आप विशारद करना चाहते थे, पंडित चन्नूलाल मिश्र का जिक्र किया, तो क्या बचपन में आपने सोचा था कि आप गायकी की दुनिया में आएंगे या फिर सोचा था उस समय क्या सपना था आपका?
0: मुझे लगता है कि बचपन में सपने तो थे पायलट बनने के, फिर लग गया चश्मा, फिर पता चला कि वो तो नहीं कर सकते, फिर लगा के फिर ऐसा लगा कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो सुदूर जो जगह है वहाँ पे
1: डॉक्टर इंजीनियर
0: आईएएस, तो मेरा थोड़ा पायलट सोचता था, मैं थोड़ा आगे की सोचता था, लेकिन वो शायद एनीवेज। तो हुआ ये कि लखनऊ आने से मैंने डिस्कवर किया कि आई कैन सिंग, उसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था। तो 17 साल तक की उम्र तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं गा सकता हूँ या मैं एक पोइट्री लिख सकता हूँ, ये भी नहीं मुझे पता था। तो लखनऊ आके वो परस्यूट्स

0: साल किया था मैंने, 5 साल में से एक ही साल करके फिर आई टू गो फॉर द मेडिकल मेडिसिन. तो 4 साल 5 साल वहाँ पे फिर वो रॉक वॉक गाते थे और पॉप रॉक में दुनिया में चले गए, फिर क्लासिकल भूल गए. क्लासिकल को दोबारा से मैंने पिछले 4 से 5 साल में फिर से दोबारा से आई स्टार्टेड यू नो प्रैक्टिसिंग एंड वर्किंग ऑन इट एंड आई डू इट प्राइमरली फॉर माई सेल्फ. तो मतलब वो कम्प्लीटली मेरे उसको कमर्शलाइज करता नहीं हूँ, म्यूजिक को कुछ भी कमर्शलाइज नहीं करता. सो इट्स अ वेरी सोल सेटिस्फाइंग सॉर्ट ऑफ एन इवेंट फॉर मी एवरी डे. लेकिन नेक फॉर म्यूजिक, फाइंडिंग ग्रेट म्यूजिक, रिकग्नाइजिंग ग्रेट टैलेंट, म्यूजिकल टैलेंट इज प्रॉब्ली वन आर्ट आई डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ मतलब मल्टीपल ईयर्स डेकेड साल से. तो अनुभव सिन्हा जी के साथ में मैंने करीबन 3 साल काम किया. उसमें भी ऐसा हुआ कि वो साल भर के बाद उनको पता चला कि मेरा म्यूजिक सेंसिबिलिटीज ऐसी हैं, तो उन्होंने फिर मुझे म्यूजिक भी सारा दे दिया करने के लिए. तो बनारस बीट नाम का उनका एक अपना एक छोटा सा
1: जी,
0: था. तो
1: हाँ.
0: बनारस बीट मैं हैंडल करता था,
1: उसी के नाम से उन्होंने अपना रखा फोन नंबर भी.
0: हाँ जी जी जी. तो बनारस बीट जो है मैंने काफी समय तक वो भी चलाया. बहुत सारा म्यूजिक मैं सिलेक्ट करता था उनके लिए, या एटलीस्ट चूज करता था कि सुनिए आपको क्या अच्छा लगता है. एंड दैट्स हाउ प्रॉब्ली आई थिंक द फिल्म बिकेम अ म्यूजिकल, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है. एंड आई बिलीव द ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट साउंड, 45% विजुअल्स होते हैं, 55% जो है ना वो साउंड होता है, और वही आपको सबकॉन्शियस लेवल पे हिट भी करता है, अफेक्ट भी करता है. विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग डिलीवरीज, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग संबोधन जो है उसमें भी जो पॉकेटेड इन्फॉर्मेशन होती है अपार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड द सॉन्ग्स विच वी सेलेक्ट एंड वी गो फॉर. तो मुझे लगता है कि म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मैं सारे फिल्म मेकर्स को ये सजेस्ट करता हूँ जो हम सडनली गानों से दूर भागने लगे हैं एज इंडस्ट्री, कि लिप सिंक नहीं करना है, बैकग्राउंड में कहीं कहीं गाने डाल देना है. गानों से पूरा वाइब क्रिएट होता है फिल्म का. थर्ड वीक ऑनवर्ड्स गाने चिपके हैं. अच्छा, आप अच्छा है खराब है मुझे पता नहीं, पर पहले 2 वीक तक कोई गाना चला ही नहीं, और वही कारण था कि फिल्म भी डिप करी थी. फिर फिल्म के बारे में भी लोगों ने बात करनी शुरू हुई, फिर गाने भी डिस्कवर होना शुरू हुए 4th week से,
1: और गाने बजने
0: और फिर गाने ऐसे बजने लगे कि फिल्म को उन्होंने उठा दिया.
1: हाँ, और रील बनने लगे,
0: रील बनने लगे, हजारों की संख्या, मतलब अनगिनत है. तुम गिन भी नहीं रहे, गिनना बंद कर दिया. अब जो मिलता है उसको रीशेयर कर देते हैं, वरना तो हाँ निकल ही रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट इतना बन रहा है कि हम वी कांट सी. 24 घंटे भी देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे,
1: बिल्कुल
0: इतना कॉन्टेंट बन रहा है.
1: तो यहाँ पर गानों का जिक्र चला है और आपकी फिल्म के गाने के रील बन रहे हैं, और ज्यादातर इस गाने के पार्वती
0: जी
1: जो है, तो वो सुना दे श्रोताओं को.
0: जी मतलब वैसे साधु तिवारी जी का गाना है, उनसे परमिशन लेके मैं गाता हूँ वैसे, लेकिन चलिए मैं सुनाता हूँ. जब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तऋषि, सप्तऋषि सप्तऋषि, अरे काय जिद कर रही, अरे काय खुमर रही, अरे काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप, जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप, इतने सीधे सादे हैं सब कहते भोलेनाथ, भोलेनाथ, शंभो शिव शंभो.

0: बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: इस गाने के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपने बातचीत के दौरान जिक्र किया अनुभव सिन्हा जी का
2: जी।
1: अनुभव सिन्हा जी विविध भारती के स्टूडियो
2: में, और
1: उनसे सौभाग्य मेरा कि उनका भी इंटरव्यू मैंने ही लिया था, बातचीत की थी
2: जी।
1: तो उनसे कुछ निर्देशन की कुछ बारीकियां भी आपको मिली क्या गानों के बारे में ही?
2: मुझे लगता है कि उनके सानिध्य में काम करना, मैं उनके अंडर तो काम करने का मुझे मौका नहीं मिल पाया
1: जी, जी।
2: उनके सानिध्य में काम किया
1: जी,
2: पर बहुत सारी जो जिस तरह से उनकी वो जिस तरह से इलेवेट करते हैं चीज़ों को ना सिनेमा, हाँ सिनेमा में इलेवेशन क्या होता है कि आप जब हम फिल्म देखते हैं तो आप जब जिस तरह से हीरो को पोजीशन करते हो, जिस तरह से इलेवेट करते हो, बहुत बारीक बारीक नज़र है उनकी, बहुत सुंदर सुंदर, वो भी उनके बहुत कान बहुत तेज हैं उनके भी, म्यूजिकल तुम बिन उनकी पहली फिल्म भी इतनी बड़ी ह्यूज म्यूजिकल हिट थी,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और आप चाहे वो रावण का म्यूजिक सुने या मुल्क का, हाँ थप्पड़ के गाने, मुल्क के भी गाने बहुत सुंदर थे, पर मुझे लगता है कि रावण के गाने बहुत सुंदर थे और वो उसके पहले भी जितनी फिल्में उन्होंने की हैं, मतलब आप चाहे कैश पकड़ लो, फिर उसके पहले एक और फिल्म थी उनकी
1: अनेक भीड़
2: तो ये अभी की फिल्म है, लेकिन एक वो जो कमर्शियल फिल्म बनाते थे उनके म्यूजिक एल्बम, ओ माई गॉड क्या क्या एल्बम उन्होंने चूज किए। तो कहीं ना कहीं वो मेरा अनुभव सर का ये बहुत ही, जैसे बोलते ना कि हमारे बहुत सारे विचार, लेकिन हम बहुत, मैं उनका इतना सम्मान है हृदय में, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि वो कभी भी आपके, आप क्या सोचते उस पर इंटरफेयर नहीं करते। और मैं उनके उनके ऑफिस में बैठ के मैंने एक फिल्म लिखी थी जो उनकी पसंद की फिल्म थी, उन्होंने कहा कि इस फिल्म को लिख पूरा, एक शॉर्ट फिल्म सुनाई थी जिस पे उन्होंने कहा कि इसको तो पूरा फिल्म बना के लेके आया।
1: अच्छा।
2: फिल्म का नाम था, उस वक्त उसका नाम डीमो था, फिर उसका नाम भसाड़ हो गया, कॉमेडी फिल्म थी, एक रात की कहानी, दो दोस्त मिलते हैं और क्या होता है उस रात को, लेकिन उन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो प्रॉब्ली उनको हो सकता ना ही पसंद आई हों, पर उन्होंने उसमें मेरे कभी काम में इंटरफेयर नहीं किया। और यही एक सबसे बड़ी फिल्म मेकर की खासियत होती है कि वो आप क्या सोच रहे हो वो आपकी सोच है, मैं क्या सोच रहा हूँ मेरी सोच है, हम दोनों एक सब्जेक्ट को डिबेट कर सकते हैं पर मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा जो चीज सीखी उनसे मैंने वो

0: यही सीखी और मैं इस बात के लिए मतलब सदैव उनको याद करता हूँ और हर बार यही बात बोलता हूँ। और मेरी बात उनसे 2 साल दो बार ही होती है और लेकिन तो मतलब मेरा सम्मान उतना ही उनके लिए हृदय में उतना ही सम्मान है जी।
1: बेहतरीन बातचीत हुई थी और बेहतरीन इंसान। यहाँ पर आपकी फिल्म का हम गाना सुनना चाहते हैं, मतलब उसका जिक्र करना चाहते हैं, मैंने तेरे ही भरोसे।
0: जी
1: ये सुनील लोधी बुंदेलखंड के
0: जी
1: गायक
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो ये कैसे मिले आपको, कहाँ से, क्यों बुंदेलखंडी गाते हैं वो?
0: हाँ, तो मैं बुंदेलखंड में पैदा हुआ, जैसे मैंने बताया बुंदेली मुझे बहुत पसंद है, अभी भी सोते मेरी पहली फर्स्ट लैंग्वेज भी आप बुंदेली बोल सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, फर्स्ट बोली है, क्योंकि बोली है वो तो लैंग्वेज नहीं है। तो बुंदेली मुझे चूंकि तो मैं क्या हो रहा था पिछले 2-3 साल से ना, एक बुंदेली दुनिया नाम का एक चैनल था,
1: जी
0: तो मैं बहुत सारे ऐसे बुंदेली गीतों को के लोग
1: सुना
0: जो बनाते
1: करते
0: तो
1: थे।
0: उनको फॉलो कर लेता था मैं।
1: अच्छा,
0: तो उसमें देखा कि मैंने ये लड़का जो है ना ट्रेन में गाता है और
1: और
0: उसका
1: नेत्रहीन है,
0: नेत्रहीन है
1: नेत्रहीन
0: वो,
1: है।
0: और वो ट्रेन में गाता है या ट्रेन में ट्रेवल करते किसी ने वीडियो बनाया तो इसलिए वो फेमस हो गया कि ट्रेन में लड़का गाता है। अच्छा, मैं काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा था, एक दिन मैंने दिखाई दिया कि वो इंस्टाग्राम पे उसे कोई पिक्चर दी, वर्सोवा बीच पे है वो।
1: ओ
0: मैंने कहा ये कहाँ से वो आ गया, एंड मैं उसको अप्रोच करने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था कि इसको किसी को बोलता हूँ कि इसको अप्रोच करके बुलाओ मुंबई, पर मुंबई बुलाने के लिए संसाधन चाहिए होते हैं और
1: जी
0: हमारी बहुत
1: जी
0: छोटी फिल्में, हम ऐसा नहीं है फ्लाइट टिकट देंगे भाई आ जा तू। बट चूंकि ये मौका था कि वहाँ पे था, तो मैंने उसको रात में ही 11:30 बजे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजा, और हैपन सो दैट इन हाफ एन आवर ही वॉज इन द स्टूडियो, इन आर ऑफिस एंड स्टूडियो। फिर हमने उसके बाद में सेटल किया कि भाई कब जा रहा है वो, क्या है कैसा, तो पता चला कि वो 11 बजे सुबह निकल रहा है 12 बजे। तो उसके पहले हमने एक स्टूडियो बुक किया और सारे जो भी उसके जो गाने थे उसके पास में वो उसने सुने उससे हमने, और ये गाना मैंने तेरे ही भरोसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने कहा कि इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उसने अपने ही उस पर तंबूरे पे एक तारे पे अपने उसने रिकॉर्ड किया, एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ में रिकॉर्ड किया, मैंने कुछ उसमें लाभ लगे बट कुछ किया ही नहीं, इट्स जस्ट दैट। और वो लोग बोले थे इसके ऊपर कुछ म्यूजिक नहीं करोगे, इनफैक्ट उसने भी बोला मुझे कि सर आपने इस पर कुछ कराया नहीं, और तो मैंने कहा कि नहीं इस पर कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही वर्क कर रहा है और ऐसे ही वर्क करेगा, क्योंकि स्ट्रेट इट द वॉइस गोज डायरेक्टली टू योर हार्ट, कोई दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं,
1: जी
0: स्ट्रेट
1: जी
0: टू द हार्ट कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, और बहुत गूढ़ शब्द हैं उसमें,
1: जी जी
0: सागर में नैया डार दे, कौन उसमें लाइनें हैं कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई, अरे काहे की वो नाव बनाई, काहे की
1: हाँ
0: पतवार,
1: जी जी बिल्कुल याद आई।
0: और काहे की लगा दई जंजीर सागर में नैया डार दे। सो बेसिकली इज अ क्वेस्ट कि दैट मैं सागर में नैया डार दे के मतलब, और हनुमत कौन है खेवन हार, तो पार कौन लगाएगा लेकिन खेवन हार कौन है, देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। अब आंसर क्या है, सीता सखी वहां में बैठन हारी
1: जी
0: शक्ति उसमें बैठेगी, रामा पार लगाए वो आपको पार लगाएंगे, लेकिन खेवन हार कौन है, हनुमत खेवन हार सागर में नैया डार दे, मैंने
1: हनुमान
0: तेरे ही
1: जी
0: भरोसे
1: हैं
0: आप ही खेवन हार हो, यू
1: जी
0: विल टेक मी दैट साइड।
1: जी
0: सो इतनी सिंप्लीफाइड एंड इतनी गूढ़ और इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पॉकेटेड एक इतने खूबसूरत अगर गीत में है, तो मैं उसमें क्यों लाग लपेट करूं, क्यों उसमें मैं इंस्ट्रूमेंट डालूं और क्यों उसको भरूं और क्यों उसको ग्रैंड बनाने की कोशिश करूं, वाइल इट इज वर्किंग सो वेल, स्ट्रेट हार्ट टू हार्ट वर्क करता है, इधर से आवाज निकली सीधे दिल में लगती है, दैट्स हाउ इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन ऑन इंटरनेट, यू कैन सी थाउजेंड एंड थाउजेंड एंड थाउजेंड। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 15 दिन पहले मैंने देखा था 2.5 लाख रील्स थी उसकी, पिछले 15 दिन पहले 2.5 लाख रील्स थी, भी पता नहीं हुई, अभी देखेंगे तो लगता है मिलियन हो गई हूँ या 500K के
1: जी
0: हो गया
1: बिल्कुल, बहुत तेजी से ये चर्चित हो रही फिल्म और गाने हिट हो
0: गाने।
1: रहे,
0: हाँ
1: गाने लोगों के जुबान पर। बहुत
0: जी
1: मुश्किल है आज के इस युग में गाने को हिट करना,
0: जी
1: और गाने हिट हो रहे हैं, रीलें बन रही, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर वही गाना हम श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: जी

0: दई।
1: गाने के बाद हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने सुना है कि आज के इस डिजिटल युग में भी आप कलम से कागज से लिखते हैं और ये पूरी फिल्म आपने कलम और कागज से लिखी है, तो ये क्या मामला है? आपको पसंद नहीं है डिजिटल मतलब लैपटॉप पे टाइपिंग करना, या आप कागज कलम को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या बात है?
2: हुआ ऐसा कि मैं सारे जीवन में डिजिटली ही लिखते आया हूँ, तो मैं पेन एंड पेपर पे लिखता नहीं था, कभी कभी लिख दिया तो लिख दिया। पर वो ऐसा रहा था कि जब फिल्म हमने अनाउंस कर दी और मैंने जो भी मेरे दिमाग में सीन्स थे उनको उतारने के लिए जब मैं लिखने बैठता था, तो मैं ऑब्वियसली द डिजिटल डिवाइसेस आर सो डिस्ट्रैक्टिव बिकॉज ऑल द टाइम कुछ ना कुछ आ रहा है, या तो कोई कॉल कर रहा है या तो किसी मैसेज कर रहा है, उसको आपको रिप्लाई करना है, इंस्टाग्राम पे कुछ आ रहा है, तो इट्स डिस्ट्रैक्टिंग। एंड ऑल्सो आप अगर उसको सर्च करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी जाते हो इंटरनेट पे, तो वो भी आपको कहीं से कहीं ले जाता है,
1: दिख जाता है
2: और समय बहुत जाता है उसमें। तो मैं एक दिन तंग आके और गुस्से में मैंने आके सारी डिवाइसेस बाहर निकाल दी।
1: क्या बात है, बहुत
2: मैं सब कमरे से बाहर। तो हमारे ऑफिस में एक छोटा सा स्पेस है जो स्लीपिंग पॉड है, जो जिसको हम गुफा भी बोलते हैं कि हम, तो मैं वो गया, वो शट हो जाता है, पूरा पैक हो जाता है, सारी डिवाइसेस बाहर की, पेन पेपर पकड़ा और मैंने लिखना शुरू किया। पहला सीन जैसे क्रैक हुआ, मैं गया अंदर, मैंने लिखना शुरू किया। इन 15 दिन में रिकॉर्ड 15 डेज टाइम में मैंने पूरी स्क्रिप्ट फिनिश कर दी। आपको बिलीव नहीं होगा कि पहला ड्राफ्ट ही है जो मैंने शूट किया है, देयर इज नो चेंज इन द फिल्म, इज स्ट्रेट एक बार में। तो मेरा सजेशन लोगों को यही है कि डिजिटल डिवाइसेस आर सो डिस्ट्रैक्टिव, जब भी आपको लेखन करना है, जैसे आपने भी पेन पेपर पे लिखा है सब,
1: बिल्कुल
2: है ना,
1: मोबाइल में है, जबकि
2: मोबाइल में आप लिख सकते हो, पर आप जो आपको जैसे बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन से कनेक्ट फील होता है ना आपको, आपका माइंड वो बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बोलिए जो भी बोलिए, कि आपको कहीं ना कहीं एक लूप है वो, हाथ से जब लिख रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से जो निकल रहा है वो हो रहा है, और उसमें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो डिवाइस आपके आंख में रोशनी नहीं छोड़ रही है, वो ऊपर से एक मैसेज नहीं आ रहा उसमें और बीच में से कॉल नहीं आ रही है, ऑल दैट हैपेंस। एंड देयर आर पीपल जो कि सिर्फ जो है ना मोबाइल फोन पे लिख लेते हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ना वो सैंक्टिटी चली जाती है,
1: बिल्कुल कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन
2: होते रहते हैं।
1: सही कह रहे हैं, और ये बात है कागज पे लिखा हुआ भले दिमाग में लिखा हुआ लेकिन कागज रखा है साथ में, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनाए?
2: मुझे लगता है कि फूलों के रंग से इज माय ऑल टाइम
1: फेवरेट,
2: प्रेम पुजारी का गाना
1: है, साहब का लिखा हुआ, सचिन देव बर्मन संगीतकार, तो सुनते हैं।

0: प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना था, और इस गाने के साथ एक बार हम आपको फिर बुंदेलखंड ले चलते हैं।
1: जी,
0: बुंदेलखंड की कोई ऐसी यादगार घटना हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: बुंदेलखंड में जब मैं पढ़ने से पहले भी, मतलब मुझे लगता है मैं स्कूल में भी नहीं गया था, तो मैंने हमारी मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में, मेरे माता जी पिताजी के साथ में ट्रैवल कर रहा था एक कालपी से उरई के बीच में, और वहाँ पे रास्ते में एक भवानी मंदिर, भवानी जी का, माता का मंदिर होता है। फर्स्ट मेमोरी मेरी वही है सबसे स्ट्रॉन्ग। और अचानक से वो गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है, और सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अरे मतलब डकैत डकैत ऐसा नहीं। एंड गाड़ी रुक जाती है, सब सहम जाते हैं, पर मैं बहुत इंटरेस्ट से आगे चला जाता हूँ। लिटरली वो था ग्लास जो होता है उसके पास, मैं बच्चा हूँ मैं, वो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। जहाँ पे फिर मैं देख रहा हूँ वो बड़ा सा घोड़ा और उस पर एक छोटी सी महिला,
0: महिला
1: उसने जो है ना पट्टा बांध
0: बैठी
1: रखा है, उसके हाथ में बंदूक है। वो बड़ा फैसिनेटिंग था, मतलब फॉर अ किड, अचानक से इतना कोई आया है जिसको, और ऐसी वेशभूषा में किसी को देखा नहीं। तो वो फिर वो दर्शन वर्शन करती हैं, वो भवानी मंदिर में अपने सर झुकाती हैं, और फिर वो चली जाती हैं वहाँ से। किसी को कुछ होता नहीं है, मतलब ऑब्वियसली वो लूट के नहीं आई थी, वो दर्शन करने के लिए आई थी। तो एक वो है, और दूसरा जो मेरे स्कूल के समय, जब मैं स्कूल और कॉलेज जब मैं पढ़ रहा था, कौंच भी जो ना कुंच ऋषि की धरती थी, वो मुझे बहुत लेटर समझ में आया। वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जब जब वहाँ से निकली थी और वो चोटिल थी, घायल थी, तो कौंच में एक जगह थी जहाँ पे उन्होंने रात गुजारी थी, मलहम वगैरह भी वहीं पे हुई थी उनकी। तो ये सारी चीज़ें जो थी, और प्लस बुंदेलखंड में वो जो भाषा है बहुत ही, मतलब ब्रज की लठमार, और थोड़ा सा उसके अंदर हल्का सा भाव और प्रेम भी आ जाता है।
0: जी
1: तो वो लहजा जो है ना, मुझे हरदम से बहुत फैसिनेट करता है। स्पेशली पान सिंह तोमर और बैंडिट क्वीन वगैरह जो फिल्म्स हैं, इन सब के अंदर, इनफैक्ट वो नत्था, वो यूज टू स्पीक उसमें पीपली लाइव में, वो भी बुंदेली बोलता है। फिर वो
0: जी
1: एक
0: जी जी
1: एक और बहुत भाभी जी घर पे हैं, वो एक सीरियल है, वो मेरे बहुत क्लोज
0: जी
1: मित्र
0: जी
1: थे, जिनके जिनके अभी उनका देहांत हो गया, जिन्होंने जो राइटर थे उसके, वो उन्होंने वो एक कैरेक्टर हप्पू सिंह। तो ये सब बहुत बुंदेली बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, एक्चुअली पॉपुलर बोली है, पर वो कभी ऐसा मेन स्ट्रीम में, वो गाने मेन स्ट्रीम नहीं हुए थे। और ऐसा नहीं कि मैंने बुंदेली ढूंढने के लिए बुंदेली ढूंढा था, मुझे तो उत्तर प्रदेश और मध्य भारत की बोलियों में गाने चाहिए थे। तो लगभग 50% सॉन्ग से ऐसे जो है ना, सासा आले हंसा चाले अवधी है, फिर ये ब्रज है, आवागमन थोड़ा ब्रज और इसके बीच का है, आवागमन
0: जी
1: मिटा दो भोले शंकर। तो ये सारे गाने जो है ना एक एक करके, वो आइडिया ये था कि जितना हो सके हम मिट्टी की खुशबू इस फिल्म के अंदर लेके आए।
0: तो यहाँ पर गाना सुनवाते हैं।

0: आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश, फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी सुनिएगा अगले सप्ताह इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को है कुछ ही देर में। पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम एशिया में संकट पैदा नहीं हुआ होता तो अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल होता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 में इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। विदेश मंत्रालय के पश्चिमी

मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में इटली के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय में G7, G20 अंतर्राष्ट्रीय खतरों और एकीकृत रणनीति के निदेशक पावलो मारी से मुलाकात की। श्री मारी नई दिल्ली में आतंकवाद निरोध पर भारत इटली के संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक की सह अध्यक्षता करने के लिए भारत यात्रा पर हैं। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले आज फिजी में आयोजित एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना, वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना बेहद आवश्यक है। आज विश्व कपास दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य कपास के वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व को उजागर करना है। इस वर्ष कपास दिवस का विषय है खुशहाली के लिए कपास, व्यापार, बदलाव और साझेदारी के माध्यम से समृद्धि का निर्माण। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि कपास क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को इस दिवस की शुभकामनाएं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रूप कुमार राठौर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में अभी आपने ये भजन सुना। गैर फिल्मी भजन इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

कर्नल राणा और साथियों की आवाजों में अभी आपने ये भजन सुना। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:25 हुए हैं। इंतजार खत्म हुआ युवा दोस्तों का, लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम युवा मंच।

कार्यक्रम युवा मंच में सभी युवा दोस्तों का स्वागत। सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और साथ ही साथ सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी हम प्यार भरा स्नेह भरा नमस्कार भेज रहे हैं और सभी का कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम आज आप सुनेंगे अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ। जी हाँ युवा दोस्तों, उम्मीद है मौसम का मिजाज जैसा भी हो आपका मूड अच्छा होगा और अगर आज पढ़ाई काम या किसी और वजह से थोड़ा प्रेशर है तो खुद को याद दिलाइए कि हर चीज़ एक साथ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक समय में एक कदम, एक काम, एक कोशिश। युवा उम्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और फिर से शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए आज अपने लिए एक छोटा सा पॉजिटिव थॉट रखिए, कंप्रेशन कम और इम्प्रूवमेंट ज़्यादा। और इसी पॉजिटिव वाइब के साथ अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की। जी हाँ, युवा मंच कार्यक्रम में आज है बुधवार, वेडनेसडे और आज बात होगी स्पोर्ट्स बीट्स की, जहाँ खेलों से जुड़ी कुछ खास बातें और जानकारियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन इन जानकारियों और बातों तक आपको हम पहुँचाएँ उससे पहले बीच में इंतज़ार कर रहा है एक प्यारा सा गीत हमारे युवा दोस्तों और श्रोताओं के लिए।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
3: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
4: बस यही पूछो व्हाई। रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक व्हाई आपको फ्रॉड से बचाए।
5: हमेशा पूछो WHY, व्हाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
4: आपका साइबर रक्षक।
6: अरे मुन्ना, जरा एक ग्लास पानी देना, और हाँ, पानी को उबाल कर ही देना।
7: दादू, पानी तो साफ लग रहा है, फिर उबालना क्यों?
6: बेटा, दिखने में साफ पानी भी पीलिया, डायरिया और दस्त जैसे रोग फैला सकते हैं।
8: ध्यान दे, सुरक्षित पेयजल के लिए पानी को तेज उबाल आने के बाद 3 मिनट तक खौलाना जरूरी है।
9: उबला पानी पिए, स्वस्थ हिमाचल बनाए।
10: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
11: कार्यक्रम युवा मंच में सभी युवा दोस्तों का, सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत। जीवा दोस्तों, जीवन में पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई के बहुत मायने हैं, लेकिन खेलों में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो भी एक बेहतर विकल्प है। एशियन गेम्स जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है, हमारे युवाओं ने वहां पर जो हासिल किया, जो अर्जित किया, वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम में आज बात हो रही है स्पोर्ट्स बीट्स की, और चलिए खेलों की इस पूरे हफ्ते की तस्वीर को रिवाइंड करते हैं और आपको बताते हैं क्या कुछ खास हुआ इस बीते हफ्ते में। शुरुआत बेशक एशियन गेम्स से ही होगी, जहां बात करें 1 अक्टूबर की, तो भारत के खाते में 6 पदक आए, 3 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज। रेसलिंग में नितेश सिवाच ने 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में सिल्वर जीता। सेलिंग में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरुसिंकल नोवल ने सिल्वर अपने नाम किया, वहीं हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा की जोड़ी ने ब्रॉन्ज जीता। स्क्वैश की बात करें तो भारत की पुरुष और महिला टीमों ने ब्रॉन्ज हासिल किया, जबकि तीरंदाजी में गणेश थिरुमरु ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसी दिन पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई, और क्रिकेट में भारत ने

श्रीलंका को 124 रन से हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया। यानी एशियन गेम्स के आखिरी दौर में भारत की मेडल रेस लगातार तेज होती जा रही थी। 2 अक्टूबर का दिन भारत के लिए बेहद शानदार रहा। एक ही दिन में भारत ने 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज सहित कुल 10 पदक जीते। महिला हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर गोल्ड जीता और निर्णायक गोल किया लाल रेमी सियामी ने, जबकि गोलकीपर सविता पुनिया की शानदार बचत ने जीत पक्की की। ये महिला हॉकी का 44 साल बाद एशियन गेम्स गोल्ड था और इसी के साथ टीम ने लॉस एंजलिस 2028 के ओलंपिक्स के लिए सीधा क्वालिफाई भी किया। कार्यक्रम में बातचीत को अब थोड़ा सा विराम एक बार फिर हम लगाएंगे और एक बार युवा दोस्तों का फिर से मनोरंजन करवाएंगे इस प्यारे से गीत के साथ।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
3: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: जिंदगी के सपने तभी सच होते हैं जब आप करते हैं स्मार्ट प्लानिंग।
5: LIC लाया है एक नया प्लान, नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान, एक ऐसा प्लान जो दे आपको डुअल बेनिफिट, इंश्योरेंस भी सेविंग्स भी। इसमें आपको मिलता है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शंस के साथ अट्रैक्टिव गारंटेड एडिशंस एंड एनहांस्ड गारंटेड एडिशंस टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स।
4: अपने गोल्स के लिए चुनिए एक प्लान जो हो सिंपल, सिक्योर और स्मार्ट, LIC नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान के साथ। अधिक जानकारी के लिए अपने LIC एजेंट से संपर्क करें या www.licindia.in पर विजिट करें। LIC हर पल आपके साथ।
6: आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी धर्मशाला और साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी। एशियन गेम्स की बात हो रही है, 2 अक्टूबर की बात हम कर रहे थे, बात आगे बढ़ाते हैं। बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सिंग में भारत ने एक के बाद एक 3 गोल्ड जीते। रेसलिंग में भी सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड अपने नाम किया और तीरंदाजी में अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम अनिल मोहोड़ ने की महिला रिवर्स टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर गोल्ड अपने नाम किया। यानी 2 अक्टूबर के दिन भारत के लिए सिर्फ मेडल्स का दिन नहीं, कॉन्फिडेंस का भी दिन रहा। बात 3 अक्टूबर की, पुरुष क्रिकेट के फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन बनाए और अभिषेक शर्मा ने 61 रन की पारी खेली, जबकि तिलक वर्मा ने सिर्फ 22 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 192 रन ही बना सकी और भारत ने मुकाबला 19 रन से जीतकर एक बार गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। यानी एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम भी चैंपियन रही और हॉकी में भी भारत ने कमाल किया। फाइनल में भारत ने मलेशिया को 5-1 से हराकर गोल्ड जीता। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए, जबकि जुगराज सिंह, हार्दिक सिंह और शिलानंद लाकड़ा ने 1-1 गोल किया। इसके साथ भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना खिताब बरकरार रखा और लॉस एंजलिस 2028 के लिए भी क्वालिफाई किया। इस दिन रेसलिंग में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता। कुमकुम अनिल मोहोड़ ने महिला व्यक्तिगत रिकवर में गोल्ड अपने नाम किया और प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत गोल्फ में भारत के लिए ऐतिहासिक गोल्ड जीता। 4 अक्टूबर की बात करें श्रोताओं, तो 4 अक्टूबर एशियन गेम्स का समापन दिन रहा। इस दिन एशियन गेम्स का समापन हुआ और भारत ने कुल 85 पदकों के साथ 4वें स्थान पर अपना अभियान खत्म किया। भारत के खाते में आए 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल। इस बार एशियन गेम्स में क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी में भारत ने महिला और पुरुष दोनों वर्गों में गोल्ड जीतकर शानदार गोल्डन डबल पूरा किया और कई खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। बातचीत को एक बार फिर थोड़ा टाइम के लिए रोकते हैं और एक बार फिर से मनोरंजन करते हैं अपने युवा दोस्तों श्रोताओं का इस गीत के साथ। लौटते हैं इस गीत के बाद।

0: बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
3: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
2: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
5: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
6: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
7: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
6: आपका साइबर रक्षक।
0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
8: कार्यक्रम युवा मंच में सभी युवा दोस्तों का और श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत। एशियन गेम्स के बाद अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट बीट्स सेगमेंट में आज बात हो रही है और खेलों से जुड़ी खबरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। महिला क्रिकेट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हरमनप्रीत कौर ने भारतीय महिला टीम की तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। इसके बाद स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई ऑल फॉर्मेट कप्तान बनाया गया। हरमनप्रीत की कप्तानी में भारत ने 2025 का महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता था और 2026 एशियन गेम्स में भी गोल्ड हासिल किया। अब स्मृति मंधाना के सामने भारतीय महिला क्रिकेट की आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। श्रोताओ, अब टेनिस की दुनिया से एक बड़ी खबर। दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी यानिक सिनर के घुटने की चोट से उबरने के लिए 2026 के बाकी पूरे सीजन से हटने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब है कि वे इस साल अब ATP फाइनल्स और बाकी बचे टूर्नामेंट्स में नजर नहीं आएंगे। और कार्यक्रम में आगे बात अब करते हैं क्रिकेट की दुनिया की। युवा दोस्तों, 6 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच शुरू हुई 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला भी काफी धमाकेदार रहा। लखनऊ में खेले गए इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए। शाई होप के 52 और शेरफेन रदरफोर्ड के 56 रन की पारी इन्होंने खेली। भारत की तरफ से डेब्यू कर रहे नमन धीर ने 3 विकेट लिए, लेकिन असली कहानी शुरू हुई भारत की पारी में। 172 रन का लक्ष्य जिसका पीछा करते हुए भारत ने सिर्फ 14.4 ओवर में 2 विकेट खोकर मुकाबला अपने नाम कर लिया और इस जीत के सबसे बड़े स्टार रहे कप्तान श्रेयस अय्यर। तो शुरुआत ही ऐसी है कि भारत सीरीज में 1-0 से आगे और श्रेयस अय्यर का बल्ला सीधे शतक के साथ ऑन। अब देखते हैं आगे के मुकाबलों में क्या होता है और भारत की टीम जो है इसी मजबूती के साथ आगे खड़ी रहे और इस टूर्नामेंट को भी जीते, यही हमारी उम्मीद है। खेल जगत से आज की ये जानकारियां स्पोर्ट्स बीट्स में हमने आपके साथ साझा की और बातचीत आज बस इतनी ही। चलते चलते आपका मनोरंजन एक बार फिर इस प्यारे से गीत के साथ।

यह था आज का कार्यक्रम युवा मंच और सेगमेंट स्पोर्ट्स बीट्स। कार्यक्रम आपने सुना अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ, तकनीकी सहयोग सुनील शर्मा का और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में जानकारी हमारे इस सभा में बाकी के बचे हुए रिले तथा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुरमई सांझ ये कार्यक्रम शाम 6:05 पर आप सुनेंगे। 6:30 का समय रहेगा कार्यक्रम मौजा गराइंदिया के प्रसारण का। 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती बाड़ी। शाम 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन सुना जा सकता है। रात 8:00 सुनिएगा विविध गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस। देशभक्ति गीत आपको सुनवाएंगे रात 8:30 पर। रात 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9:00 न्यूज एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। रात 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के लिखे कुछ गीत। 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है जिसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। रात 10:00 कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे आपके अनुरोध पर। सजीव फोन इन यानी लाइव फोन इन ये प्रोग्राम रहेगा और श्रोता फोन कर सकते हैं रात 10:00 से 10:30 तक। और कुछ फिल्में लेकर हाजिर होंगे जिनमें से अपनी पसंद का गीत आप सुन सकते हैं। और रात 10:00 लुत्फ उठाएगा पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। सभा के अंत में समाचार सुने जा सकते हैं। 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। श्रोताओं ये था कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:58 हुए हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे ठीक 6:00 जिन्हें आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हिमाचल प्रवास के आज दूसरे दिन अटल टनल रोहतांग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल की। राष्ट्रपति ने कहा कि अटल टनल ग्लोबल स्टैंडर्ड का एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, जिसे सीमा सड़क संगठन ने बहुत मेहनत से बनाया है। उन्होंने कहा कि आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की टेक्नोलॉजी की काबिलियत, पक्के इरादे और सबसे मुश्किल इलाकों में भी बिना रुकावट कनेक्टिविटी बनाए रखने की वचनबद्धता का सबूत है। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने मनाली के प्रसिद्ध हिडिंबा माता मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उनके दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राष्ट्रपति का कल दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कभी नीतिगत निष्क्रियता की चर्चा से जुड़ा भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह बदल गई है।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के ऐतिहासिक 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भाजपा द्वारा विभिन्न स्थानों पर आज विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। कुल्लू में आयोजित सेवा ज्योति यात्रा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर और पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सेवा ज्योति यात्रा देश के प्रधानमंत्री के लगातार 25 वर्षों के सेवाकाल का प्रतीक है और उनका संकल्प देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
3: प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से जो बात की, ये महत्व का विषय नहीं है कि मैंने 25 साल का कार्यकाल पूरा किया। महत्वपूर्ण ये है कि देश ने अपनी विकास यात्रा में बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया है, यानी कि देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, ये ज्यादा महत्व का विषय उनके लिए। प्रधानमंत्री जी ने साफ और स्पष्ट किया कि बिना लक्ष्य निर्धारित किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 2047 तक भारत विकसित भारत के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाए, उसके लिए हमको मजबूत कदम के साथ अपनी यात्रा आगे की शुरू करनी चाहिए।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सहित अन्य सांसदों को हिरासत में लिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वे आज शिमला स्थित लोक भवन के बाहर इन नेताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करने के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवाज उठाई है, जिसे कोई नहीं दबा सकता। मुख्यमंत्री सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता कल पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे।
4: आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोक भवन के बाहर प्रदर्शन किया है। कल हमने पूरे प्रदेश में धरने का कार्यक्रम बनाया है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जिस प्रकार मुख्य विपक्षी दल के पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को गिरफ्तार करके आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, तो उस संदर्भ में पूरे प्रदेश में कल धरना प्रदर्शन होगा।
1: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व मंत्रिमंडल के सदस्य हर्षवर्धन चौहान, अनिरुद्ध सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार सहित कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा हमला बोला है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अपने दोहरे मापदंड का जवाब देना चाहिए। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का सिद्धांत बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है कि चुनाव जीते तो जनादेश, चुनाव हारे तो चुनाव आयोग जिम्मेदार। उन्होंने सवाल किया कि अगर किसी चुनाव में हार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफा मांगा जा सकता है तो हिमाचल में ईवीएम व बैलेट दोनों पर हार के बाद क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी कांग्रेस इस्तीफा मांगेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
5: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 हुए हैं और शाम का ये वक्त जब दिन की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है और मन तलाशता है कुछ पल सुकून के, जी हाँ सुकून के वो पल लेकर हाजिर हैं हम। वक्त है कार्यक्रम सुरमई सांझ का। लेकर आ गए हैं एक ऐसी सुरमई सांझ जहाँ बातें होंगी संगीत की, यादों की, उन एहसासों की जिन्हें शब्दों से ज्यादा खूबसूरती से गीत कह जाते हैं। तो आइए इस शाम को थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं खूबसूरत से गीतों के साथ। कार्यक्रम की पहली पेशकश

जिसने भी ये गीत छेड़ा बहुत खूब छेड़ा। जी हाँ, ये बेहद प्यारे से खूबसूरत से गीत, और ये गीत केवल सुनाई नहीं देते, कभी कभी हमारे साथ चलने लगते हैं। कभी किसी की याद की तरह, कभी किसी के एहसास की तरह, तो कभी किसी अपने खास की तरह।

0: सुरमई सांझ, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आपने इसे ट्यून किया है और शाम अभी बाकी है, सुरों का सिलसिला भी बाकी है, कहीं जाइएगा नहीं। हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: सुरमई सांझ कार्यक्रम में एक बार फिर सभी श्रोताओं का स्वागत। जी हाँ, गीत संगीत की ये महफिल जमी है और बात हो रही है शाम के एहसास की, प्यार के एहसास की, मोहब्बत के एहसास की। मोहब्बत में सबसे खूबसूरत बात यही है, जुबां कुछ नहीं कहती, दिल कुछ कहता है और सामने वाला बिना कुछ कहे समझ जाता है। इसी अनकहे एहसास को आवाज़ देता है ये अगला गीत।

0: जी हाँ, आकाशवाणी धर्मशाला की ये दुनिया आप ही से जन्नत है। आपका, श्रोताओं का साथ है तभी हमारी अहमियत है, तभी हमारा एहसास आपके साथ जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम सुरमई सांझ आप सुन रहे हैं और गीत संगीत की बात हो रही है। इस सांझ को हम बेहद सुकून भरा आपके लिए बनाते हैं और कोशिश हमारी रहती है हर रोज कुछ नया आपके लिए लेकर के आए।
1: तुम मुझसे बात

सुरमई सांझ प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। आर कार्यक्रम की अंतिम पेशकश ये गीत आप सभी श्रोताओं के रेडियो सेट्स पर।

0: ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਕਨੇ ਕਰਨੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼
1: ਜੀ।
2: सभी प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
2: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
2: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
1: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: किसान साथी हो आशा आशा करने कि यह प्यारा दे लोक गीत तुसां जो पसंद आए होना। और इस लोकगीत दे बाद उन्हां चलना अगली जानकारी दी तरफ।
1: जी कने जानकारी अजा सांझा करनी है कृषि उन्नति योजना दे बारे च।
0: जी जी
1: कने देखो भी ये योजना जिहड़ी है से केंद्र सरकार दी इक अमरेला इक छाता जी हुंदा ते इस किस्म दी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र दा वैज्ञानिक कने समग्र विकास करना है कने फसलां दी उत्पादकता जो बढ़ाना कने किसानां दी आय विच वृद्धि करना है। इस कन्ने कन्ने पारंपरिक फसलां दे अलावा जिहड़ी साड़ी दलहनी फसलां तिलहन फसलां कन्ने बागवानी फसलां जो भी बढ़ावा देना इस योजना दा जिहड़ा से मुख्य उद्देश्य है।
0: जी
1: कन्ने देखो भी कृषि यंत्रां सिंचाई कन्ने इनपुट पर सबसिडी दे करी भी किसानां दा खर्च जिहड़ा से घट करना भी इस योजना दा एक मुख्य उद्देश्य है। मृदा स्वास्थ्य जो बनाई रखदे होए टिकाऊ कृषि जो प्रोत्साहन देना कने इस योजना दे तहत जिहड़े साढ़े कृषि विभाग दियां जिहड़ी 11 प्रमुख योजना न जिन्हां जो 21 मतलब 21 बोलते ना सूई च परोई के इक्की धागे च परोई के एकीकृत करी करी मतलब इस योजना जो कट्ठा करी के चलाना 11 प्रमुख योजना जो कट्ठा करी करी किसानां जो लाभ दिलाना है ना जी।
0: जी जी जी
1: तां अगर सारे तो पहले अस गल करिए जिहड़ी एकीकृत बागवानी विकास मिशन है तो इस विच फल सब्जी मसाले फुलां दी खेती जो बढ़ावा देने वास्ते जिहड़ा से काम किया जाना है।
0: बिल्कुल कने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की गल की जाए तो इस जियां कि भाई गेहूँ चावल दलहन तिलहन का जिहड़ा उत्पादन बढ़ाना है कने इस दे बाद जियां कि सतत कृषि वास्ते राष्ट्रीय मिशन तो ऑरगैनिक फार्मिंग कने मृदा स्वास्थ्य सुधारने वास्ते भी ये मतलब जिहड़ी योजना है कने कृषि विस्तार उप मिशन तो किसानों तक नई तकनीक जानकारी कने ट्रेनिंग भी इस योजना के माध्यम कने के भी पहुंचाई जानी है।
1: जी कने बीज कने रोपण सामग्री पर

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है। इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
4: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उप केंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जांच करवाएं और अपनी आंखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: किसान साथी इसी कने कार्यक्रम मौजा ग्राएं दा समय एतु संपन्न होकर दा जानते पहले दसिए कि कार्यक्रम च तकनीकी सहयोगी सुनील शर्मा प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह हुण अपने ट्रायल दस्ते से बड़का चाचू
3: कने देर ताई जो दिया अनुमति।
2: अच्छा जी जय हिंद।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा गराई दिया आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। शाम के 7 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार।

0: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन के बोर्ड सदस्यों के साथ इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले वार्ता की। ये संगठन मोबाइल संचालकों तथा इससे जुड़े उद्योगों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। श्री मोदी ने विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सवेरे श्री विनायक मंदिर में देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट पैदा न होने पर अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देश में शामिल हो जाता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 से इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी व्यवस्था में अगले चरण के सुधारों के लिए 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने का आधार भाषा के इस्तेमाल को थोपने के बजाय इसमें अधिक अवसर और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देना है। हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक में उन्होंने कहा कि जब हिंदी रोजगार और पेशेवर अवसर सृजित करेगा तो इसके इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की कौशल पत्रिका का भी लोकार्पण किया गया। रूस ने कल रात यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में 4 बच्चों सहित 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के अनुसार उत्तरी चेर्निहिव क्षेत्र का प्रिलुकी सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को दिया गया है। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह सम्मान उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुना कर दे सारे ही किसान बागबान भाई बहना जो बड़का चाचू की तरफा दे राम राम। किसान साथियों आज ट्याले पर मंजसो की देर होता है तो देर होता है जी राम राम।
1: राम राम बड़का चाचू जी कने कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुना कर दे सारे ही किसान कने बागवान भाई पैणा जो मेरी तरफ ते फ्री ते एक बारी ते राम राम कने बड़का चाचू जी और सुना भाई तुसा क्या काम काज लाया अजकल करें।
0: दिखा देर होता है कि काम काज तो बोले किसान दे कभी मुकदे नहीं ना, है ना।
1: जी जी जी बिल्कुल
0: पर फिर भी किसान साथी कहन भी अपने इतने व्यस्त होने के बावजूद भी मतलब जियाँ कि हूँ त्यौहारा वाला जोड़ा सीजन के भी आने वाले ना, है ना।
1: जी
0: जियाँ दशहरा हो गया गां फिर करवा चौथ हो गया दियालियाँ हो गई ना, तो इन चीज़ों वास्ते भी जरूर जोड़ा समय के भी निकालना जरूरी है।
1: जी साड़ी किसान भैणा जड़ी है ना देखा भाई लाड़ूं सवाड़ूं तो लगी है ना
0: जी जी जी जी
1: सोगी सोगी हूँ भाई चर्चा भी करा कर दियाँ बरात आई है बोलिया भैन जी बोलिया है सूटे खरीदना कता जाना कांगड़े बाजारे जाना कि कुथु जाना बोलिया है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कने कुथु कुथु ते समान जड़ा से लेना है ना कुछ सस्ता मिलता कुछ बढ़िया मिलता है ना जी।
0: जी जी जी जी
1: ता मतलब जेडे त्यौहार होंगे ना साढ़े ये भी एक जीने च एक उमंग भरी है ना जी।
0: बिल्कुल जी
1: जिते
0: बिल्कुल
1: त्यौहार होंगे तो देखा भाई बड़ा चा शौक होंगे कने मतलब एक बोलते ना फुर्ती आई जाती शरीर च झटपट काम कमाना कने भाई फिरी अपने समाने लेना जाना है त्यौहार की तैयारी भी करनी है ना जी।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: देखा
0: जी
1: त्यौहार भी बहुत अच्छी जड़ी एक भावना साढ़े अंदर भरते हैं ना जी।
0: बिल्कुल कने एक ही दूगे कने मेल जोल की भावना भर देन और ये भी एक साड़ा जीने का जियाँ कि एक हिस्सा है कि मतलब हाँ बड़ी आप शुरू पहले मतलब हर चीज़ जो ले पे सोचना कि हाँ ये चीज़ लैनी है ये चीज़ लैनी उस हिसाब ना बेस्ट बनाना है बड़ी सारी चीज़ा कहने पे सन जो दिखना पौंदी ना।
1: जी कने देखा भाई अहाँ अगर ग्राएं की गल करन तो ग्राएं च जड़ा माहौल है से कुछ और किस्में दा होंदा कने जड़ा साढ़े शहरा दा माहौल होंदा से कुछ और किस्में दा होंदा कने इस बीच अहाँ गल करिए कि जी मोहल्ले दे कन्ने कन्ने जड़ी सुविधा न तिना दी व्यवस्था भी शहरां च कने ग्राएं च अलग अलग होंदी है ना जी।
0: जी जी जी जी
1: ग्राएं दा जड़ा जीवन होंदा से शहरां दे अपेक्षा थोड़ा दे कठिन बोली सकदे सुविधा दी थोड़ी दी कमी जड़ी है रहिंदी जिसदा कारण भूगोलिक स्थितियां भी होई सकदियां
0: बिल्कुल
1: जी है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कई जगह ऐसियां ने कि जित्थू सड़क जड़ी है सुतनी अच्छी नहीं है क्योंकि भूगोलिक स्थितियां ठीक नहीं हैं। कई जगह अगर बिजली दी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि शहरां च अच्छी है ना जी
0: जी जी जी
1: है ना
0: जी
1: कई और चीज़ां दी पर जिहड़ा ग्राएं दा जीवन है तिसदा आनंद ही कुछ और है ना जी। साफ सुथरी हवा तुहां साफ सुथरा पानी पिया मेल मिलाप उठना बैठना है ना जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कोई ग्राएं च ब्याह शादी है प्रोग्राम है कुछ भी है तो एक दूए ने काम करना जाना है ना जी
0: जी जी जी
1: है
0: जी
1: ना।
0: जी
1: तो देखो भई साड़ा जिहड़ा समाज है सभी साढ़े जीने का एक आधार है ना जी क्योंकि जल ही साढ़े घर कोई मतलब खरी बुरी हो जाती तो आस पड़ोस वाले साढ़े रिश्तेदार जोड़े होंगे स तिस टाइम में जो कटाना भी आते हैं ना जी।
0: जी जी जी जी बिल्कुल
1: ता ग्राएं का जोड़ा माहौल है स बहुत अच्छा है कि नहीं देखो भी अगर कमियों की गल कर तो एक अहाँ जितनी भी कमी होंगी तिस तिना ये दूर करने वास्ते साढ़े सरकार जड़ी हैं अलग अलग योजना लियादियाँ रहा ना जी।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: एक कमी दी अहाँ गल करन जियाँ हूँ अगर बिजली की गल करन तो बिजली की कमी दूर करने वास्ते भी देखा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जी साढ़े देश विच लागू है ना जी।
0: बिल्कुल
1: कने ये योजना देखा भाई साढ़े देश विच नवंबर 2014 ते लागू है ना जी। कने ताली ते स योजना जो निरंतर जड़ा स मतलब कि ग्राएं विच सुविधा देना जड़ा स लगी है ना जी।
0: बिल्कुल कने दिखा कि ये जड़ी योजना खास कर जियाँ कि कुछ ऐसे जड़े क्षेत्र थे असा दे मतलब भारत देश दे ग्रां दे

0: किसान कने बागवान साथियों, इस प्यारे दे लोकगीत ते बाद आहां एक वरी फिर सुननी है जानकारी, ता ओ सुनदे ने जानकारी।
1: जी किसान साथियों, जिया कि तुसा जानते हैं कि टियाले के माध्यम कने असा तुहांजे तक ढेर सारी जानकारियां कने भी पहुंचाते रहते हैं, चाहे से जानकारी डॉक्टर दी होए, विज्ञानिक दी होए, या फिर असा दे उन्नत किसान भाई दी होए। ता अज इसे कड़ी विच गलबात करनी है विज्ञानिक विधि द्वारा मशरूम उत्पादन। इस संबंध च इस वेले साडे टियाले पर मौजूद हैं डॉक्टर अरुण कुमार सूद, प्रधान प्रसार विशेषज्ञ एवं कार्यक्रम निदेशक मशरूम, चौधरी सरवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। सारे दे पहले डॉक्टर साहब तुसा दा टियाले पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जिया की असा दा किसान साथी अपनी खेती बाड़ी दे काम काज दे अलावा कई तरह दे व्यवसाय जो करता है, जिस च खुंभ उत्पादन भी शामिल है, अगर असा दा किसान साथी खुंभ उत्पादन दा काम करना चाहता है ता शुरू च किना किना जेड़ी गल्ला बातां कहन से ध्यान च रखना चाहिए जी?
2: नमस्कार, सब ते पहले ता ए है कि अगर कोई खुंभ दी खेती करना चाहता ते सो ट्रेनिंग लेना बड़ा जरूरी है, प्रशिक्षण लेना बड़ा जरूरी है
1: जी।
2: कने ए प्रशिक्षण जेड़े न अहां दे हिमाचल विच कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विश्वविद्यालय ने खोलियो, हर एक जिले ची के कृषि विज्ञान केंद्र है, ता इथु यंदी या हमारा प्रसार शिक्षा निदेशालय पालमपुर है ते इथु ट्रेनिंग हो जांदी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऐसे मशरूम दा यूनिट है पालमपुर, उथु ती दी ट्रेनिंग करवाई जांदा। कने एक है प्रसार शिक्षा डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन चंबागाट स्थित है, इथु भी दी खुंभा दी प्रशिक्षण जे ट्रेनिंग करना चाहे से ले सकदा
1: जी। डॉक्टर साहब, अगर जी असा दा जेड़ा किसान साथी है या फिर बेरोजगार युवा साथी है खुंभ दी खेती करना चाहता है, विभाग की तरफ अदे भी कोई मदद वगैरह दी जाती है?
2: जल तुहानी ट्रेनिंग हो जानी, तुहें सर्टिफिकेट मिलना, फिर जेड़ा बागवानी विभाग है इस वास्ते तुहें कमरे बनाने वास्ते भी पैसा उपलब्ध करवा, जे तुहें खाद मशरूम दी लैनी इस वास्ते भी तुहें कुछ न कुछ जेड़ा सा
1: अनुदान
2: अनुदान जेड़ा सा मिलता।
1: सुरच मतलब सिखलाई लेना बड़ी जरूरी है
2: जी,
1: क्योंकि कोई भी यहाँ अगर नया काम कर दे ता सिखलाई लेके करेंगे ता फिर इसे काम समझो थोड़ा आसानी ने हो जाना। जालू असदा जेड़ा युवा बेरोजगार साथी या फिर किसान भाई मतलब सिखलाई लेना चाहता है ता सुरच क्या इदे बारे च कोई प्रार्थना पत्र देना पौंदा या फिर क्या प्रक्रिया रहिंदी है?
2: प्रार्थना पत्र जेड़े ना सै जेड़ा बागवानी विभाग है इसे दे दिया, कृषि विज्ञान केंद्र ने इथू दे दिया, फिर ये ग्रुप बनाई के जेड़े ना सै हाला भिजवाई दे या बागवानी विभाग जो भिजवाई दे पालमपुर सै फिर ट्रेनिंग जेड़ी करवांदे रहिंदे।
1: ये ट्रेनिंग कितने कितने दिन दी होनी है और क्या इहदी जेड़ी प्रक्रिया रहनी है?
2: 5 ते 6 दिन तक ट्रेनिंग होंगी, इस च तुहें सारा मशरूम दे बारे च जानकारी दिंदे। तां जियां हुण मशरूम ही है ये भी बड़ियां किस्मां दे हुंदे, जियां तुहें दसदा सफेद खुंभ हुंदे, फिर एक डिंगरी हुंदी, एक मिल्की मशरूम हुंदी, एक दाना पर लगदे मशरूम हुंदे, एक नवे शिटाके है न, फिर एक होर है ऋषि मशरूम है, बाकी तुहां गुछिया ना तो सुने होना
1: जी जी जी।
2: तां इस टाइप दे बड़े भारी मशरूम हैं, पर हां जेड़े मेन करी सकदे सै है ना वाइट बटन मशरूम, जेड़ी सफेद खुंभ है खुंभी है कने डेंगरी
1: जी जी,
2: इहदी खेती जेड़ी है सां उहदी प्रोपर ट्रेनिंग दिंदे। कने जेड़ा वाइट बटन मशरूम है ए भी 2 तरीके ने बनदी
1: जी,
2: इहदी खाद जेड़ी है 2 तरीके ने बनदी, एक लघु विधि हुंदी कने एक लंबी विधि हुंदी, एक डेंगरी हुंदी। जेड़ी डेंगरी है सै तां खैर बड़ी आसान लगाना
1: जी जी। अच्छा, इस दे अलावा जिया अहां खाद दी गल कीती है ता ए खाद कुथु जाई के मिलदी है या फिर किसान भाई के भी अप्पू भी बनाई सकदा ऐसा खाद जो?
2: जद तुहां जेड़ी हां ट्रेनिंग देनी ना तिस चाहे तुहां यूं 2 किस्मां दीयां खादां बनाना दसणियां, लंबी विधि ने भी नहीं छोटी विधि ने। जेड़ी छोटी विधि है तिस च क्या हुंदा कि सारी मशीनरी लगदी
1: जी जी,
2: तां कने लंबी विधि जेड़ी है तुहां अप्पू अपने हाथां ने अपने घरें भी बनाई सकदे। कने जेड़ी छोटी विधि है इस वास्ते जेड़ा तुहां पहले तां मटीरियल चाहिदा वी क्या मटीरियल लगना, तो इस वास्ते जियां हां मन्नी लिया कोई 10 क्विंटल खाद बनानी है इसकी, तो 10 क्विंटल जेड़ी अहें तूड़ी चाहिए
1: जी जी,
2: फिर यहाँ जी बड़ूइया की खड़े हैं सह 20 किलो चाहिए, फिर मुर्गिया की बिठ होंगी जान देना तुम
1: जी जी, जी।
2: 400 किलो सह चाहिए, फिर कणका का बरादा हों के गलांदे तो हाँ क्या गलांदे जी जो चोकर
1: जी,
2: तो चोकर 50 किलो चाहिए दिसो, कने यूरिया भी कोई 10 ते 15 किलो लगना, कने एक जिप्सम हों सह तिस पौधा कोई 100 किलो, तो यह चीजा अगर हो गई हाँ जी है छोटी विधि ने शुरू की खाद बनाई सकते। अगर तुह घरें अपने लंबी विधि ने बनानी हो तो इस वास्ते मनी लिया कि तुह 3 क्विंटल खाद बनानी है, इस वास्ते जेड़ी है चोकर जेड़ी तुहाड़ी 15 किलो लगनी, यूरिया 3 किलो लगना, कैन है 9 किलो लगनी, मिर्ट पोटास हुंदी 3 किलो लगनी
1: जी,
2: सिंगल सुपर फास्फेट है 3 किलो लगनी, मोलासिस मोलासिस मतलब हुंदा है गुड़े दे नहीं हुंदे हराब दे
1: जी,
2: पता होना तुहानू सै 6 किलो लगनी, कने जिप्सम जेड़ी है 30 किलो लगनी, कने और कोई बीमारियां बुमारियां दा कोई कीटनाशक जेड़ा सै बीच पई जांदा।
1: ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਖਾਦ ਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
2: ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਜਿਹਾਂ ਤੁਹਾਂ ਮੰਨੀ ਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਲੈਣੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਾਂ ਮੰਨੀ ਲਈਏ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਤੂੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਭਿਗੋਣਾ
1: ਜੀ,
2: ਕਈ ਭਗੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਚ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 400 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਸਹਿ ਪਾਈ ਦੇਣੀ, ਕੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੂਈਆਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਦੱਸੀ ਸਹਿ ਪਾਈ ਦੇਣੀ, ਕਨੇ ਚੋਕਰ ਵੀ ਪਾਈ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹੈ ਉਸ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮਿਕਸ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਵਿਧੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਬਣਦੀ, ਇੱਕ ਫੇਸ 1 ਹੁੰਦਾ ਕਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸ 2 ਹੁੰਦਾ। ਫੇਸ 1 ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਨੇ ਫੇਸ 2 ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹਾਂ ਅਯੋ ਅੰਦਰੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਟਨਲ ਚ ਪਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਫੇਸ 1 ਚ ਆਹਾਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚ 10-12 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਜਿਹਾਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋਈ ਆ, ਚਲੋ 4th ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਤਾਲੂ ਇਸ ਚ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਪਸਮ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨੇ ਜਦੋਂ 6th ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਤਾਲੂ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੈਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਤੋੜੀ ਦਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ। ਚਲੋ 8th ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਤਾਲੂ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਨੇ ਇਸ ਟਨਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਸਾਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਗਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗਲਾਉਂਦੇ ਪਾਸਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ। ਪਾਸਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਚ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਰੀਏ ਪਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਅਮੋਨੀਕਲ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਬਣੀ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੀਕੇ ਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀ ਤੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ, ਇਸ ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ 45-52 ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਹਾਂ ਸਟੀਮ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਈ 59-60 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ।

0: किसान साथियों, इसी लोकगीत कने कार्यक्रम खेतीबाड़ी एतु संपन्न हो करदा। कार्यक्रम च तकनीकी सहयोगिया सुनील शर्मा, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। हुण अपने ट्रायल दस्त से बड़का चाचू
1: कने देर ताई जो दे अनुमति।
0: अच्छा जी, जय हिंद, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: अंदाज वही कुछ अल्फाज है बदले,
2: सौगात नई कुछ नए तराने,
3: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
1: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
2: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
1: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
2: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
3: जो पहुंचे दिल से दिल तक।
0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: विद्युत आपूर्ति संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1912।
1: बिजली के खंभों और तारों की कोई समस्या हो
0: या बिजली के बिलों से संबंधित कोई समस्या हो
1: या हो कम या अधिक वोल्टेज की समस्या,
0: टूटी हो सर्विस तार
1: या समस्या हो ट्रांसफार्मर की,
0: विद्युत संबंधी हर तकनीकी समस्या का समाधान होगा टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1912 पर।
1: ये सुविधा IVRS और कॉल सेंटर के माध्यम से उपलब्ध है।
0: हम आपकी सुरक्षा एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सदैव तत्पर हैं।
1: हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा पब्लिक इंटरेक्शन कार्यक्रम के तहत जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल टनल रोहतांग का किया दौरा, सुरंग के तकनीकी पहलुओं के लिए जानकारी, हिडिंबा माता मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक जीवन और शासन में सेवा के 25 वर्ष किए पूरे, जनता से मिले विश्वास को बताया बड़ी पूंजी। राज्य सरकार पथ परिवहन निगम को उपलब्ध करवाएगी 1500 नई ई बसें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में 108 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। और भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रम किए आयोजित। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन आज अटल टनल रोहतांग का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल कविंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्थानीय लोगों ने पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री व राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान मिनिस्टर इन वेटिंग राजेश धर्माणी ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने अटल टनल की इंजीनियरिंग व निर्माण से जुड़े विभिन्न पहलुओं में गहरी रुचि ली और इसके तकनीकी पहलुओं की जानकारी हासिल की। राष्ट्रपति ने कहा कि अटल टनल ग्लोबल स्टैंडर्ड का एक इंजीनियरिंग चमत्कार है जिसे सीमा सड़क संगठन ने बहुत मेहनत से बनाया है। उन्होंने कहा कि आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की टेक्नोलॉजी की काबिलियत, पक्के इरादे और सबसे मुश्किल इलाकों में भी बिना रुकावट कनेक्टिविटी बनाए रखने की वचनबद्धता का सबूत है। बाद में राष्ट्रपति और राज्यपाल ने मनाली के ढूंगरी स्थित प्रसिद्ध हिडिंबा मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने देशवासियों के सुख समृद्धि, शांति व खुशहाली की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यह मुकाम आएगा। उन्होंने कहा कि आज सरकार के प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्ष की सेवा पूरी हो रही है।
3: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
2: प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा को देशवासियों के अटूट विश्वास और समर्थन का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी बड़ी पूंजी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार आने वाले समय में HRTC को 1500 नई ई बसें उपलब्ध करवाएगी। आज शिमला में राज्य पथ परिवहन निगम की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि नई बसों की न्यूनतम रेंज 350 किलोमीटर होनी चाहिए और वे हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी व कठिन भौगोलिक क्षेत्रों के अनुकूल हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि HRTC को पहले ही 297 ई बसें उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं और निगम को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनकी संख्या में और वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हाइड्रोजन से संचालित बसें शुरू करने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में 100 ग्रीन हाइड्रोजन बसें और 100 सुपर डीलक्स बसें भी खरीदी जाएंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चालान 2 पे पहल का शुभारंभ भी किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ई बसों के संचालन से HRTC को प्रति किलोमीटर 18.19 रुपये की बचत हो रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में 108 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत की 3 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें ऐतिहासिक रिज में किए गए सुधार व स्थिरीकरण कार्यों और पुराने बस अड्डे के पास श्री गुरुद्वारा साहिब के समीप नवनिर्मित पार्किंग व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने बालूगंज के समीप पशु पड़ाव में शिमला नगर निगम के कर्मचारियों के लिए बनने वाले आवासीय परिसर की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इसके बनने से शहर की सेवा में जुटे निगम कर्मचारियों को बेहतर आवास की सुविधा मिलेगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
4: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा

0: रहते हैं। देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
1: इसे अनीमिया है। इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
0: जी डॉक्टर साहब।
1: सिर्फ इसे नहीं, सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
2: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
4: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
4: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
3: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
4: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
3: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
4: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
5: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के ऐतिहासिक 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भाजपा द्वारा विभिन्न स्थानों पर आज विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। कुल्लू में आयोजित सेवा ज्योति यात्रा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर और पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सेवा ज्योति यात्रा देश के प्रधानमंत्री के लगातार 25 वर्षों के सेवाकाल का प्रतीक है और उनका संकल्प देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
7: प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से जो बात की, ये महत्व का विषय नहीं है कि मैंने 25 साल का कार्यकाल पूरा किया। महत्वपूर्ण ये है कि देश ने अपनी विकास यात्रा में बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया है, यानी कि देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, ये ज्यादा महत्व का विषय उनके लिए। प्रधानमंत्री जी ने साफ और स्पष्ट किया कि बिना लक्ष्य निर्धारित किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 2047 तक भारत विकसित भारत के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाए, उसके लिए हमको मजबूत कदम के साथ अपनी यात्रा आगे की शुरू करनी चाहिए।
6: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी के सशक्त और मजबूत नेतृत्व के कारण ही आज देश में वह कार्य भी संभव हो रहे हैं जिनकी कभी कल्पना की जाती थी। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा धारा 370, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण व प्रतिष्ठा और देश से आतंकवाद व नक्सलवाद का सफाया करने जैसे निर्णयों का जिक्र भी किया। इस अवसर पर सांसद कंगना रनौत व अन्य पार्टी कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सहित अन्य सांसदों को हिरासत में लिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वे आज शिमला स्थित लोक भवन के बाहर इन नेताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करने के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवाज उठाई है जिसे कोई नहीं दबा सकता। मुख्यमंत्री सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता कल पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे।
8: आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोक भवन के बाहर प्रदर्शन किया है। कल हमने पूरे प्रदेश में धरने का कार्यक्रम बनाया है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जिस प्रकार मुख्य विपक्षी दल के पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को गिरफ्तार करके आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, तो उस संदर्भ में पूरे प्रदेश में कल धरना प्रदर्शन होगा।
6: प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने चुनाव आयोग और SIR को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा हमला बोला है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अपने दोहरे मापदंड का जवाब देना चाहिए। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का सिद्धांत बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है कि चुनाव जीते तो जनादेश, चुनाव हारे तो चुनाव आयोग जिम्मेदार। उन्होंने सवाल किया कि अगर किसी चुनाव में हार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफा मांगा जा सकता है तो हिमाचल में EVM व बैलेट दोनों पर हार के बाद क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह

0: सुक्खू से भी कांग्रेस इस्तीफा मांगेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल टनल रोहतांग का किया दौरा, सुरंग के तकनीकी पहलुओं की ली जानकारी, हिडिंबा माता मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक जीवन और शासन में सेवा के 25 वर्ष किए पूरे, जनता से मिले विश्वास को बताया बड़ी पूंजी, राज्य सरकार पथ परिवहन निगम को उपलब्ध करवाएगी 1500 नई ई बसें, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में 108 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास, और भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रम किए आयोजित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
1: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए सुनते हैं रोजगार समाचार। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन, जिला सोलन से प्राप्त सूचना के अनुसार, बाल विकास परियोजना सोलन के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में रिक्त चल रहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 6 पद तथा सहायिकाओं के 15 पदों को भरने हेतु साक्षात्कार दिनांक 23/10/2026 यानी शुक्रवार को कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन प्रातः 10 बजे आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। संबंधित आंगनवाड़ी पोषक क्षेत्र की सामान्य निवासी इच्छुक महिला उम्मीदवारों से सादे कागज पर आवेदन, पूर्ण वांछित सत्यापित दस्तावेजों सहित आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन के कार्यालय में दिनांक 17/10/2026 तक जमा करवाए जा सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद जिन केंद्रों पर रिक्त हैं वे हैं देवघाट, सनीसाइड, भ्यूंट, भेरा, बणी और कमलोग, और आंगनवाड़ी सहायिका के पद जिन केंद्रों पर रिक्त हैं वे हैं जराश, टिक्कर, दधोग, झोखड़ी, ढलैन, जमरोट, भरोल, कोरों, कोटला, गोल, धुंधी, गणकीसेर, मोलोखुर्द, कलोड़ पाजो और ऊंचा गांव। इन पदों को भरने हेतु आवश्यक शर्तें इस प्रकार है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका हेतु आवेदक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10/2 या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इन पदों को भरने हेतु आवेदन 17/10/2026 तक जमा करवाए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ रोजगार समाचार समाप्त हुए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं।
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर रात के 8 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए विविध गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम सबरस सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत। श्रोताओं, संगीत की खूबसूरती यही है कि इसे पसंद करने के लिए एक ही वजह काफी नहीं। कभी धुन पसंद आ जाती है, कभी बोल दिल में उतर जाते हैं, कभी आवाज रोक लेती है, तो कभी पूरा गीत ही अपने अंदाज में याद रह जाता है। कार्यक्रम सबरस एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें गीत संगीत के विविध रूप आपको सुनने को मिलते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत सी गीत संगीत की महफिल की शुरुआत कर रहे हैं इस गजल के साथ। कुछ एहसास सीधे कहे नहीं जाते, उन्हें बस महसूस किया जाता है, और जब यही एहसास सुर और अल्फाज का साथ पाले तो बनती है गजल। चंदन दास की गई इस गजल।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
3: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
4: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
4: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
3: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
4: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
3: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
4: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
3: लड़ी हक की लड़ाई,
4: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
5: सबरस कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। पंजाबी गीतों के सुरों में रूह बसती है और जब पंजाबी गीत बजता है तो दिल कहता है बस सुनते ही रहें, और जब गीत में खूब सारी भावनाएं भरी हों तो दिल अपने आप उस गीत में डूब सा जाता है।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
3: श्रोताओ, आप इस समय जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं विविध गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस। और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और साथ ही आप सुन रहे हैं हमें प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी। विविध गीत संगीत की इस महफिल में अगला गीत, और ये गीत आपको सुनवा रहे हैं हम। सुनिए अपने रेडियो सेट्स पर इस गीत को और लुत्फ उठाइए इस गीत का।

0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेश वासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: श्रोताओ, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप जुड़े हैं। संगीत का कोई एक रंग नहीं, संगीत के विविध रंग हैं और हर रंग की अपनी खूबसूरती है। इन्हीं विविध रंगों को समेटे कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति राहत फतेह अली खां की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे संगीत के विविध पहलुओं को रूबरू करवाता कार्यक्रम सबरस। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और रात के 8:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए देशगान।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में पहले समाचार संध्या और रात 9 बजे News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने कालासागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्षों में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे 5.5% कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी।
2: जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने भारत के विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने श्री मोदी को हमारे समय का अवतार बताया और कहा कि उन्होंने भारतीयों में अधिक आत्मविश्वास और गर्व की भावना जगाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भी श्री मोदी को बधाई दी है और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और लोकतंत्र में लगातार 25 वर्ष के नेतृत्व को एक दुर्लभ उपलब्धि करार दिया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा बोको ने भी श्री मोदी को बधाई देते हुए भारत के लोगों के प्रति उनके समर्पण और सेवा की सराहना की और दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता की उम्मीद की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन GSMA के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुक्त, खुले और नियम आधारित वैश्विक समुद्री व्यवस्था का आह्वान किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग के लिए अपने संदेश में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
2: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे। उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
1: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन दोनों ने सराहना की है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की सराहना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के सिर दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदला गया है।
3: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता, भरोसेमंद और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।
4: Is so important. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
3: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि ISA प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और भारत की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है।
5: माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में स्थापना दिवस पर 1000 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था, अगर हम 2026 में देखें जब दुनिया 3000 गीगावाट कर चुकी है, तो उनकी दूरदर्शिता सही मायने में दिखलाता है।
3: आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन चुका है। वर्तमान में 129 देश इसके सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं। भारत के नेतृत्व में ISA का उद्देश्य लोगों तक ऊर्जा की पहुंच को बेहतर बनाने के साथ साथ दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
6: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,

0: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं।
1: भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है। RBI ने कहा है कि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए वरिष्ठ भारतीय और EFTA के अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सोआई को देने की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट।
2: स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए ये सम्मान देने की घोषणा की है। उन्होंने रसायन विज्ञान में दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया। दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 वर्ष पुरानी गुत्थी सुलझाई है। उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक दूसरे का प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो अणुओं में से सिर्फ एक ही के रूप कैसे बनाया जा सकता है। ये खोज दवाओं सहित कई तरह से रसायन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित किए जाएंगे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान के लिए भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सुआई को देने की घोषणा की है। और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am Valsa Williams with news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Completes 25 years of continuous public service as head of government. India condemns attacks on commercial shipping in Black Sea region, says New Delhi engaging Moscow and Kiev to bring peace. Russia expresses gratitude to India for its readiness to contribute to resolving the Ukraine conflict. RBI raises repo rate by 25 basis points to 5.5% in nearly 4 years. Also projects GDP growth rate at 7.1% for current financial year. Prime Minister to inaugurate India Mobile Congress in New Delhi tomorrow. French-Japanese scientists duo Henri B. Kagan and Kenzo Zui win 2026 Nobel Prize in Chemistry for solving molecular asymmetry mystery. And Paralympic champions Pramod Bhagat and Bhavina Patel to lead India as flag bearers at Asian Para Games beginning in Japan later this month.

मजरू सुल्तानपुरी की लिखी गीत आज के एक ही कलाकार कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं। बचपन में उन्हें पारंपरिक शिक्षा मिली, उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी का अध्ययन किया। आगे चलकर उन्होंने लखनऊ में यूनानी चिकित्सा यानी हकीमत की शिक्षा हासिल की और कुछ समय तक हकीम के रूप में भी काम किया। लेकिन जिस चीज ने उन्हें भीतर सबसे गहरी जगह बनाई वह थी शायरी। मुशायरा में उनकी शायरी को पहचान मिलने लगी और उन्होंने मजरू नाम से लिखना शुरू किया। मजरू यानी घायल, यही नाम आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। मजरू सुल्तानपुरी, उनकी शायरी केवल मोहब्बत और हुस्न तक सीमित नहीं थी, उसमें समाज, इंसान, संघर्ष और बदलाव की आवाज़ भी थी। वे प्रगतिशील लेखक आंदोलन से जुड़े और उनकी रचनाओं में अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक सवाल भी दिखाई दिए। इसी वैचारिक तेवर के कारण उन्हें मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। फिर आया वो मोड़ जिसने मजरू की शायरी को लाखों करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। साल 1945 में मजरू ने एक मुशायरे में फिल्म निर्माता A.R. करदार ने उनकी शायरी को सुना। उसके बाद मजरू को फिल्मों में गीत लिखने के लिए अवसर मिले। साल 1946 की फिल्म शाहजहां में उनका फिल्मी गीतकार के रूप में सफर शुरू हुआ। फिल्म का संगीत नौशाद ने दिया था। मजरू ने उस फिल्म के लिए गीत लिखे। उन्हीं का लिखा ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर।

मजरू सुल्तानपुरी की लिखी गीत आज के कार्यक्रम एक ही कलाकार में गीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं। 50 और 60 के दशक में हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम दौर के उनके यादगार गीत उनकी कलम से

निकले। उन्होंने अलग अलग संगीतकारों फिल्मकारों के साथ काम किया और प्रेम दोस्ती जुदाई जिंदगी सपनों और रिश्तों जैसे विषयों पर बेहद सजग और खूबसूरत शब्द दिए। CID, आर पार, पेइंग गेस्ट, दोस्ती, सुजाता, तीसरी मंजिल, कारवा, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं, कयामत से कयामत तक और जो जीता वही सिकंदर जैसी फिल्मों में उनके गीतों ने अलग अलग पीढ़ियों के श्रोताओं को अपनी ओर खींचा। उनकी खासियत ये थी, वे गीत को केवल तुकबंदी नहीं मानते थे, उनके लिए फिल्म गीत भी साहित्य की गरिमा को संभाल कर रखने के एक साधन थे। उनकी कोशिश रहती थी कि लोकप्रियता के साथ साथ गीत में भाषा की खूबसूरती और भाव की गहराई बनी रहे।

मजरू की कलम में एक तरफ गजल की नफाजत थी तो दूसरी तरफ आम आदमी की समझ में आने वाली सहज भाषा। मजरू सुल्तानपुरी इस दुनिया से रुखसत हुए 24 मई साल 2000 में, लेकिन उनकी लिखी हुई रचनाएं आज भी दिलों तक पहुंचती हैं। मजरू का सफर हमें बताता है कि एक शायर जब अपने शब्दों को समय की धड़कन से जोड़ देता है तो उनकी रचना सिर्फ कागज पर नहीं रहती, वे लोगों की जिंदगी और दिल में उतर जाती है।

एक ही कलाकार कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आपने सुने गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के लिखे कुछ फिल्मी गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात के 9:30 होने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है।

0: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है विकसित भारत जी राम जी योजना में कार्य दिवसों में हुए वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: नमस्कार श्रोताओं, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे हम VBG राम जी भी कहते हैं, वो ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इसके तहत ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल शारीरिक काम करने की इच्छा होने पर एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन तक रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है और ये व्यवस्था पहले की मनरेगा की 100 दिन की रोजगार गारंटी का स्थान लेती है और 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। इस संबंध में बातचीत करने के लिए, इस योजना के बारे में समझने के लिए, इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या, तमाम बातें हम करेंगे। हमारे साथ में है आज ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल जी।
1: सबसे पहले तो हम ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे VBG राम जी भी कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से अगर आप बताएं तो बेहतर होगा।
2: 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत जी राम जी, यह एक ऐतिहासिक एक्ट

0: विकसित भारत जी राम जी का राष्ट्रव्यापी जो शुभारंभ हुआ है उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आई और बहुत ही स्मूथली विकसित भारत जी राम जी लागू हो चुका है और सारे ग्रामीण उसका बहुत सही तरीके से 125 दिन की जो बढ़ी हुई रोजगार की गारंटी है उसका यूज कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा अब उसमें आगे जाते जाते कई सारे पहलू जो है हम लगा रहे हैं, जैसे कि नए कामों की जो सूची अभी अभी भारत सरकार ने नोटिफाई की।
1: रोहिणी जी, इस मिशन का उद्देश्य रखा गया था कि केवल रोजगार ही उपलब्ध न कराया जाए बल्कि कई अन्य काम भी हो, जैसे कि गांवों में जल संरक्षण हो, जल सुरक्षा हो, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिले, आजीविका से जुड़े कार्यों को भी बढ़ावा मिले और साथ ही जलवायु या फिर अत्यधिक मौसम से बचाव जैसी परिसंपत्तियों का निर्माण भी किया जाए। इस दिशा में कैसे प्रयास किए जा रहे हैं और अब तक जो सफलता प्राप्त हुई उसके बारे में बताएं।
0: विकसित भारत जी राम जी का अगर आप नाम ही देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, मतलब यह एक्ट या फिर यह प्रोग्राम जो है वो केवल रोजगार की बात नहीं करता है, वो रोजगार के ऊपर जाकर आजीविका की बात करता है, जिससे कि लोगों को केवल मजदूरी केवल रोजगार ना मिले परंतु स्थायी आजीविका के साधन उपलब्ध हो। और इसी को रिफ्लेक्ट करता है हमारी जो अनुमेय कामों की सूची है। अनुमेय कामों की सूची में जैसे आपने कहा टोटल 375 काम जो है वो अनुमेय माने गए हैं विकसित भारत जी राम जी में जिसकी सूची जारी हुई। इन 375 कामों में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को प्राथमिकता दी गई है तो वह है जल संरक्षण, वाटर सिक्योरिटी। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं जल है तो कल है, कैच द रेन, ऐसे कई सारे कैंपेन्स जो है भारत सरकार चलाता है जिससे कि हमारे किसानों के लिए, हमारे ग्रामीण विभाग के लिए, हमारे शहरी विभागों के लिए पानी की कमी ना रहे, वाटर सिक्योरिटी बनी रहे। इंडियाज वाटर विजन 2047 भी यही कहता है कि विकसित भारत बनाने के लिए हमें पहले वाटर सिक्योर भी होना पड़ेगा। इसीलिए जल संधारण के जो कार्य है उसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। आप देख सकते हैं कि 128 ऐसे काम है 375 में जो कि जल संधारण के कार्य है, वाटर सिक्योरिटी के कार्य है, और उसके बाद जो है ग्रामीण अवसंरचना के कार्य है, और जो 111 ऐसे काम है जो ग्रामीण अवसंरचना के है जिसमें कि सारी बुनियादी ढांचे में जो भी जरूरतें हैं ग्रामीण विभागों की, रोड हो गए, पुल पुलिया हो गया, खेत सड़क हो गए, किसी स्कूल की लैबोरेटरी की बिल्डिंग हो या क्लासरूम बिल्डिंग हो या टॉयलेट्स हो या फिर आंगनवाड़ी की बिल्डिंग हो, जो भी बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ग्रामीण विभागों में है वह सारा 111 कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में आता है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक कैटेगरी ऐड की गई है जिसे कि हम आजीविका मूलक गतिविधियां कहेंगे, जिसमें कि 98 काम उसमें शामिल किए गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से कई बार एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का सामना जब करना पड़ता है तो उससे निपटने के लिए भी 38 ऐसे काम है जो कि इसमें ऐड किए गए हैं।
1: रोहिणी जी, अभी आपने 128 कार्यों का जिक्र किया जल सुरक्षा के अंतर्गत, तो हम ये देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की जो स्थिति है थोड़ी सी ऐसी नजर आती है कि वहां पर काम करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, साथ ही कृषि की जरूरतें भी हमारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रहती है कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि कृषि को ज्यादा ज्यादा लाभ मिल जाए। तो इनका जो निर्धारण किया गया है 128 कार्यों का, इनके पीछे क्या यही सोच रही है सरकार, कुछ और भी प्लान कर रही है जिससे लोगों को और भी लाभ मिलेगा?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम पानी की बात करते हैं तो उसके सेंट्रल स्थान पे हमारे फार्मर्स हैं, हमारे अन्नदाता हैं, क्योंकि हमारे जो किसान हैं उनको अपने एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा पानी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और इसलिए किसान ही और जलवायु और जल सुरक्षा ये दो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। इसीलिए इसमें किसानों को केंद्र स्थान में रखकर ये बात की गई है कि जल सुरक्षा के कार्य जो है उनको प्राथमिकता दी गई है। और किसानी के साथ साथ हमने यह भी देखना होगा कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए या फिर क्लाइमेट रेजिलियंस जिसे लचीलापन कहते हैं वो करने के लिए या फिर ड्रॉट प्रूफिंग की बात, इस वर्ष अल नीनो के प्रभाव की वजह से कुछ एरियाज हमारे देश में एडवर्सली अफेक्ट होने की संभावना है, कुछ एडवर्सली अफेक्ट हो भी गए हैं, तो ड्रॉट प्रूफिंग की जो बात है, क्लाइमेट रेजिलियंस की जो बात है, यह भी हमारे पानी के संबंधित कार्य ऐड करते समय यह भी हमारे केंद्र स्थान में रहा है, सोच में रहा है, और इसीलिए पानी के कामों को जो है प्राथमिकता दी गई है।
1: आपने ये जिक्र किया था कि मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 111 कार्यों का प्रावधान किया गया है, तो इसमें सौर स्ट्रीट लाइट की बात है, स्वास्थ्य केंद्रों की बात है, पुस्तकालय, स्कूलों के अतिरिक्त कक्षाओं या फिर अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाओं को भी इन कार्यक्रमों से जोड़ा जाने की बात कही जा रही है। तो ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में ये जो बदलाव लाने की अपेक्षा है, आपको लगता है कि हम इस दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं वो इनके माध्यम से और तेजी से बढ़ेंगे?
0: भारत का ग्रामीण क्षेत्र जो है वो बहुत एस्पिरेशनल है, बहुत ज्यादा उनको और भी अपने अवसंरचना को मॉडर्नाइज करने का एक एस्पिरेशन जो है हमारे गाँव के लोगों में है, और इसीलिए हमने उनकी जरूरतों को पहचानना होगा। पहले की तरह हम ये नहीं कह सकते कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वो काम तो केवल शहरी विभाग में ही होने चाहिए, ग्रामीण विभागों में भी जब वेस्ट कलेक्शन होता है तो उसका सेग्रीगेशन

0: करके उस सॉलिड वेस्ट को सही तरीके से जो है मैनेजमेंट करना, यह एक जरूरत बन चुकी है, क्योंकि हमारे ग्रामीण विभागों में भी अब बहुत ही ज्यादा अलग अलग टाइप की गतिविधियां होती हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम हमारी बदलती हुई आवश्यकताओं को समझें, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए इसमें ग्रामीण अवसंरचना में कई ऐसे काम ऐड किए गए हैं जो कि हमारे बदलती हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी केटर करे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर इकोनॉमी, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसका जब प्रसंस्करण होता है, उसका जब प्रोसेसिंग होता है, तो वह उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इसलिए ग्रामीण विभागों की बदलती हुई इन जरूरतों को केटर करने के लिए हमने कई सारे ऐसे मॉडर्न कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो है वो इसमें ऐड किए हैं, और जो ग्रामीण विभाग को न केवल मूलभूत कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, परंतु ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत ज्यादा बूस्ट करने की जो है ताकत रखता है।
1: ग्रामीण क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर विकसित ग्राम पंचायत का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि ये जो विकसित ग्राम पंचायत का एक कॉन्टेक्स्ट लेकर के हम चलते हैं या चल रहे हैं, ये कैसे हमारे लिए लाभप्रद होगा इन योजनाओं को लेकर के?
0: विकसित भारत जी राम जी जब हम कहते हैं तो उसके शुरुआत में ही विकसित भारत आता है
1: जी।
0: ऑलमोस्ट 60-65% हमारी आबादी निखिल जी आज भी ग्रामीण विभागों में रहती है। विकसित भारत की कल्पना विकसित गांव की कल्पना किए बिना की ही नहीं जा सकती। इसीलिए विकसित ग्राम पंचायतें जो है वो हमारे विकसित भारत जी राम जी के ऑब्जेक्टिव्स में कोर ऑब्जेक्टिव रहा है। और इसीलिए जब हम 375 अनुमेय कामों की बात करते हैं विकसित भारत जी राम जी में, तो यह बहुत जरूरी है कि इन कामों को विकसित ग्राम पंचायत प्लान के माध्यम से नियोजन किया जाए इन कामों का। और इसीलिए विकसित ग्राम की कल्पना जब तक हम नहीं करते तब तक हम विकसित ग्राम पंचायत प्लान नहीं बना पाएंगे। इसीलिए विकसित भारत जी राम जी में पहले तो विकसित गांव की कल्पना की गई है, और विकसित ग्राम पंचायत बनाने के लिए विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने की बात की गई है, जिन प्लान्स में ये 375 टाइप के काम भी आएंगे।
1: रोहिणी जी, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए 98 काम निर्धारित किए गए हैं, और इसका जो हिस्सा है पिछले ढांचे में लगभग वो 1.1% था, अभी बढ़कर वो 26% हो गया। तो इस बड़े बदलाव से ग्रामीण रोजगार को स्थायी आय और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में बदलने की किस तरह की संभावना आपको नजर आती है?
0: जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, यह एक्ट या फिर यह प्रोग्राम विकसित भारत जी राम जी का जो प्रोग्राम है वह केवल रोजगार देने वाला प्रोग्राम नहीं है, यह रोजगार के आगे जाके आजीविका की बात करता है। और इसीलिए पहले के प्रोग्राम में एमजी नरेगा में लाइवलीहुड के बारे में बात ही नहीं की गई थी, अगर थी तो भी केवल 1 या 2 बहुत ही कम 1% काम जो थे वो लाइवलीहुड एक्टिविटीज में आते थे। विकसित भारत जी राम जी वही परसेंटेज जो है अब वो 26% हो गया है। इससे पता चलता है कि बहुत बड़े पैमाने पर आजीविका मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो है विकसित भारत जी राम जी में इन अनुमेय कामों को शामिल किया गया है। मैं यह जरूर बताना चाहूंगी कि ये काम केवल नंबर्स नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हमारे किसान जो है वो मोस्टली रूरल एरियाज में रहते हैं, ग्रामीण विभागों में रहते हैं, और किसान कई सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, धान्य होता है या फिर फल होते हैं, सब्जियां होती है, ये सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाना एक बात है, अच्छा भाव दिलाना एक बात है, परंतु कई बार इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर सही तरीके से उसका भंडारण किया जाए, स्टोरेज किया जाए, सही तरीके से उसका प्रसंस्करण किया जाए, उसको प्रोसेस किया जाए, या उसमें मूल्य संवर्धन किया जाए, उसमें वैल्यू एडिशन की जाए, तो हमारे किसानों की आय कई गुना बढ़ सकती है। और इसीलिए हमने लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में खाद्य प्रसंस्करण हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का स्टोरेज हो, या फिर उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रोसेसिंग हो, ऐसे कई सारी चीजें हमने इसमें ऐड की है। अन्नदाताओं से अगर हम महिलाओं तक जाए, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां हैं, गांव में ये दीदियां रहती है, लखपति दीदियां बन चुकी है या करोड़पति बनने की ओर अग्रसर है, तो ये हमारी जो दीदियां हैं वह भी बहुत एंटरप्राइजिंग है, परंतु उनके लाइवलीहुड एक्टिविटीज को अगर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत पड़ती है तो ऐसे काम भी अब हमने जो है विकसित भारत जी राम जी में अलाउ किए हैं। जैसे कि अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर कोई एक एंटरप्राइज करना चाहता है जिसके लिए कि उन्हें वर्कशेड की जरूरत है, तो अब विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से वह वर्कशेड बना सकती है। कोई एसएचजी चाहता है कि हम एक नर्सरी रन करें जिससे कि प्लांटेशन को भी बढ़ावा मिले, वह भी कर सकता है। तो हमारी दीदियां, हमारे युवा और हमारे अन्नदाता, इन सभी के आजीविका के जरूरतों को केटर करने का जो सामर्थ्य इन 98 कामों में है जो कि हमारे लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है।
1: श्रोता, हम आपको बता दें कि नारी शक्ति और युवा शक्ति से संबंधित 36 कार्यों को इनमें शामिल किया गया है। तो रोहिणी जी, ये जो प्रावधान किए जा रहे हैं, तो जैसा कि आपने भी कहा, तो क्या इनका उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना है या फिर इनके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को कौशल, उद्यमिता और दीर्घकालीन आजीविका से भी जोड़ने की व्यापक रणनीति बनाई गई है?
0: बिल्कुल सही कहा, 125 दिन की रोजगार गारंटी, यह तो मिनिमम गारंटी दी गई है कि 125 दिन रोजगार मिलेगा। परंतु विकसित भारत जीराम जी यह कहता है कि हमारे दीदियों को या फिर हमारी महिलाओं को या फिर अन्नदाताओं को केवल 125 दिन का अकुशल रोजगार लेना ही उनका एस्पिरेशन नहीं है। वह चाहते हैं कि उनको दीर्घकालिक एक आजीविका के अवसर मिले और वो करने की क्षमता जो है विकसित भारत जीराम जी के कार्यों में है। जैसे कि मैंने अभी कहा, हमारे ग्रामीण विभागों की बदलती हुई जरूरतें अगर आप देखें तो अगर एक पैकेजिंग और ग्रेडिंग यूनिट भी अगर हम गांव में बनाएं जो कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को वैल्यू एडिशन के लिए काम आ सकता है, मिनी फ्लोर मिल्स बनाए जाए, मार्केट यार्ड्स बनाया जाए, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, कई विभागों में भारत दुनिया का बहुत बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है और अगर हमारे पास मिल्क चिलिंग प्लांट्स अगर बन जाए, क्लस्टर लेवल पे भी बन जाए, तो भी हमारे युवाओं को, महिलाओं को और अन्नदाताओं को यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है फॉर टू गेन सस्टेनेबल काइंड ऑफ लाइवलीहुड। इसीलिए मुझे लगता है कि रोजगार से आगे बढ़ करके दीर्घकालिक आजीविका के लिए ये लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर महिला, युवा और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे।
1: रोहिणी जी, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि नई अनुसूची में दिव्यांगजनों की सुगम्यता, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट से संपदा और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट जैसे विषय भी शामिल किए गए, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और सरकार इन विषयों पर लगातार ध्यान देती रही है। तो क्या ये संकेत इस बात का भी है कि बुनियादी ढांचे की योजना अब केवल पारंपरिक निर्माण कार्यों तक सीमित न रह करके अधिक समावेशी बनने जा रही है और साथ ही पर्यावरण अनुकूल बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रही, खासतौर पर ऐसे समय में जब हम एक टारगेट सेट करके बैठे कि हमें बहुत ही जल्दी अपने यहाँ से कार्बन उत्सर्जन को कम करना है?
0: आपने बिल्कुल सही कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी रहता है प्रोजेक्ट लाइफ के बारे में, आपने सभी ने, हमारे श्रोताओं ने भी सुना होगा। तो हमारे लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट जिसमें कि हम कार्बन का उत्सर्जन कम करें और कई सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे, इसीलिए ये सोलर स्ट्रीट लाइट्स हो गए या फिर और भी कई रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो है वो विकसित भारत जीराम जी में हमने शामिल किए हैं। तो यह एक अलग डायमेंशन जो है वो विकसित भारत जीराम जी में ऐड हुआ है। समावेशी होने के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी पीछे ना छूटे, इसीलिए विकसित भारत जीराम जी में भी यह कहा गया है कि जो भी इंडिविजुअल एसेट्स होते हैं जैसे कि कैटल शेल्टर हो गया या कोई खेत तालाब हो गया, जो भी इंडिविजुअल एसेट्स इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे उनमें हमारे समाज के जो वल्नरेबल सेक्शंस है, जो अंत्योदय वाले सेक्शंस है, उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने की बात की गई है। और जो भी एसेट्स बनेंगे वो सारे डिफरेंटली एबल फ्रेंडली होने के बारे में भी हमने जो है प्रावधान रखे हैं।
1: रोहिणी जी, जैसा कि आपने भी बताया तो मैं आपसे यहाँ पर ये जरूर पूछना चाहूंगा, जो वास्तव में सबसे कमजोर परिवार तबके के लोग हैं या अंतिम छोर तक के वाले जो लोग हैं, वो इन परिसंपत्तियों या रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए, अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से प्रयास कर सकते हैं?
0: जो बहुत ही वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनको विकसित भारत जीराम जी के प्लानिंग में केंद्र स्थान पर रखने की बात की गई है। अगर आप विकसित ग्राम पंचायत प्लान का, जो एक अभी बहुत ही हाल ही में विकसित ग्राम पंचायत प्लान का एक फ्रेमवर्क जो है वो इशू किया गया और राज्यों के साथ ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की, उसमें आप देख सकते हैं कि विकसित ग्राम पंचायत प्लान जब बनेगा तब जब यह एक बॉटम अप प्लानिंग अप्रोच होगा, ग्राम पंचायत के लोग ग्राम सभा के माध्यम से एक साथ बैठेंगे और चर्चा के माध्यम से, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के माध्यम से वह यह तय करेंगे कि हमारे गांव में कौन कौन से कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। उसी के साथ जब बात आएगी इंडिविजुअल बेनिफिट्स की, तब जो है ग्राम सभा ही यह सूची बनाएगा कि ऐसे कौन कौन से पिछड़े हुए तबके के लोग हैं जिनको कि यह इंडिविजुअल एसेट्स देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और उनकी सूची जो है वो ग्राम सभा के माध्यम से सभी के संज्ञान के लिए वहां पर पब्लिक प्लेस में उसे डिस्प्ले किया जाएगा और जिनको भी यह बेनिफिट्स चाहिए वो उस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं या फिर उनको अगर किसी को कुछ आपत्ति भी है तो भी वो उसमें दर्ज कर सकते हैं। पूरी तरीके से एक पारदर्शी और लोगों को केंद्र स्थान पर रखने वाली विकसित ग्राम पंचायत प्लान योजना बनाने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया जा चुका है। और आपने सुना होगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पूरे देश में जो ग्राम सभाएं हुई उसमें पहला डिस्कशन विकसित ग्राम पंचायत प्लान को लेके वह भी हो चुका है।
1: रोहिणी जी, ये जो विकसित भारत जी राम जी योजना है, इसमें प्रत्येक कार्य को विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर शुरू करने और ग्राम सभा से अनुमोदित करने की व्यवस्था की गई है। अगर व्यवहारिकता को हम समझें तो स्थानीय जरूरतों और तकनीकी रूप से व्यवहार परियोजनाओं के बीच में संतुलन बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, और खासकर ऐसी जगह पर जहां पर तकनीकी क्षमताओं का ये कहें कि अभाव है या फिर वहां पर सीमित है वो व्यवस्थाएं?
0: मंत्रालय या भारत सरकार जब भी कोई तकनीक या टेक्नोलॉजी लेकर आता है तो उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यह टेक्नोलॉजी लोगों के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, प्रोसेसेस को फास्ट करने के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी एक्सक्लूजन या ना कि किसी प्रॉब्लम का वो द्योतक।

0: करनी चाहिए.
1: जी
0: तो टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज टू मेक द पीपल्स लाइव्स इजियर. जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईज ऑफ लिविंग जो है लोगों की, उसको बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो मंत्रालय करता आ रहा है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में. इसमें विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है वह दो प्रकार से किया जा रहा है. मैं यह कहूंगी कि युक्त धरा नाम का जो पोर्टल हमने इसरो के एसोसिएशन में उनके साथ मिलकर जो बनाया है, वह युक्त धरा पोर्टल हमारे पंचायत सेक्रेटरीज या फिर जो भी टेक्निकल असिस्टेंट्स ग्राम पंचायत प्लान बना रहे हैं, जो कि ग्राम सभा से ही अनुमोदित होगा, वहां पर इस पोर्टल के माध्यम से उन्हें बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिलेंगे कि अगर आपके गांव में एक चेक डैम कंस्ट्रक्ट करना है आपको एक, तो वह चेक डैम कहां पर कंस्ट्रक्ट करने से वहां सबसे ज्यादा पानी रुकेगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को उसका फायदा होगा, इसका सजेशन दिया जाएगा. तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको सजेशन जरूर मिलेगा जिससे कि आपको बहुत प्रोडक्टिव एसेट होगा, परंतु अल्टीमेटली उसको अप्रूव करने का जो अथॉरिटी है वह ग्राम सभा के पास ही रहेगा. तो ग्राम सभा केंद्र स्थान में है, परंतु एक पोर्टल है जो आपको बिल्कुल सही तरीके से मदद करेगा. वह एसेट्स के दोहराव को भी रोकेगा. टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शिता इंश्योर करना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को फास्टर करना, मोर एफिशिएंट करना, और यह करते हुए ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी इसकी वजह से छूटे ना, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्लूजन. तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म जरूर होता है कि अगर कोई टेक्निक फेल हो जाती है कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से, तो वहां पर हमारा अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या रहेगी.
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से डिजिटल निगरानी और विभिन्न योजनाओं के निवेश के अभिसरण की बात कही गई है, और ये प्रणाली जमीन पर कामों के दोहराव को रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और धन के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी साबित हो, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं. रोहिणी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पहली बार इस तरह से आपदा तैयारी और चरम मौसम की घटनाओं के लिए भी 38 कार्यों की अलग श्रेणी बनाई गई है, जिसमें कि बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन और जंगल की आग जैसी बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए व्यवस्था की जा रही है. तो इसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे को भविष्य की जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करने के लिए कितने काम किए जा रहे हैं, कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे?
0: 38 काम ऐसे है जो पहली बार यह कैटेगरी ऐड की गई है, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी. यह एक सेपरेट कैटेगरी कभी नहीं थी, जिसमें कि आपदा प्रबंधन, क्लाइमेट रेजिलियंस या फिर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं उन्हें टैकल करने के लिए पहली बार यह एक सेपरेट कैटेगरी ऐड की गई है, जिसमें कि 38 काम है. हमारा देश, जैसे कि निखिल जी आप जानते हैं, बहुत बड़ा है और हर एरिया की एक अलग वल्नरेबिलिटी होती है. कोस्टल एरियाज है जहाँ पे साइक्लोन प्रोन कुछ एरियाज है, भूस्खलन के लिए वल्नरेबल कुछ एरियाज है, जहाँ पे बाढ़, सूखा, ऐसे अलग अलग टाइप की वल्नरेबिलिटीज को देखते हुए हमने यह 38 काम जो है इसमें ऐड किया गया है. कुछ काम इसमें ऐसे है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसके चलते फॉरेस्ट फायर्स की भी घटनाएं कई बार सामने आती है, तो उसके लिए फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के मेजर्स जैसे कि फायर लाइंस हो गए, फ्यूल बफर जोन्स हो गए, वो भी अब ऐड किए गए हैं. जैसे कि फ्लड रिलीफ के शेल्टर्स, कई बार फ्लड आता है तो स्कूलों में या कहीं और लोगों को रखना पड़ता है, वो ना हो इसीलिए फ्लड रिलीफ शेल्टर्स, रिटेनिंग वॉल्स, एम्बैंकमेंट्स का स्ट्रेंथनिंग, ऐसे भी कई सारे काम जो.
1: रोहिणी जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि 375 स्वीकार्य कार्यों का इतना व्यापक दायरा है, निश्चित रूप से कई सारे विकल्प हमारे सामने रखता है, लेकिन इससे योजना के क्रियान्वयन की जटिलता भी बढ़ेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं हो सकता है. तो सरकार इस विस्तार के साथ गुणवत्ता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है या करेगी?
0: सरकार ने विकसित भारत जीराम जी के एक्ट, कई सारे गुणवत्ता मूलक गतिविधियां जो है वो एक्ट का ही पार्ट है, ऐसा मैं कहूंगी. जैसे कि हमने देखा है कि एक्ट में ये कहा गया है कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है उनको इसके लिए जवाबदेही माना गया है. पंचायत केंद्र स्थान पर है, कार्य योजना वही बनाएगी, विकसित ग्राम पंचायत योजना, उसके बाद ब्लॉक और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल. डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जो कि जनरली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, वह इस कार्य योजना के जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रहेंगे. तो एक तरीके से मॉनिटरिंग की हर एक स्थान पर व्यवस्था बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई है, जो कि एक्ट का ही एक पार्ट है. और सोशल ऑडिट की जो व्यवस्था है, जिसमें कि गांव के लोग ग्राम सभा के माध्यम से जो काम हो रहे हैं विकसित भारत जी राम जी में, उनकी निगरानी करेंगे, तो उससे भी गुणवत्ता में जो है एक बहुत बढ़िया तरीके से गुणवत्ता का मॉनिटरिंग होगा. ऑल्सो इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स. जैसे कि अगर कोई काम हो रहा है तो उसका त्रिस्तरीय जियो टैगिंग करना पड़ता है, जैसे कि काम होने से पहले एक बार, जब काम हो रहा रहा है तब एक बार और काम होने के बाद भी एक बार जियो टैग करके फोटो अपलोड करना पड़ता है। जो नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक की आपने बात की
1: जी, जी.
0: तो एक डिजिटल निगरानी के लिए वह एक बहुत अच्छा साधन बनेगा, जिससे कि पता चलेगा कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कौन से पंचायतों में कौन से कैटेगरी के कितने कार्य जो है वो चल रहे हैं।

0: ने अभी पाइपलाइन में है, तो आगे जाकर ये निगरानी की व्यवस्था और भी बेहतर होगी और राज्यों को इसके लिए पूरी तरीके से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार बहुत बड़े पैमाने पर कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको कि हम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम जो है कर रही है। अभी हमारा नेशनल लेवल पे 17 सितंबर को एक बहुत बड़ी कार्यशाला हुई और फिर राज्यों में भी हुआ राज्य लेवल पे, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो हमारा NIRDPR का संस्थान है उसके माध्यम से भी बिल्कुल गांव लेवल तक की कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्य चल रहे हैं। जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे जो सरपंचस है, हमारे पूरे देश में जितने प्रधान और सरपंचस है उनके लिए भी हमने पंच सम्मेलन का एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिससे कि आज तक लाखों जो है एरियाज में पंच सम्मेलन जो है किए गए हैं, जिससे कि हमारे सरपंच और प्रधान भी जाने कि उनका विकसित भारत जी राम जी के इम्प्लीमेंटेशन में क्या रोल है। तो बड़े पैमाने पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं उससे यह जो जटिलता आपको अभी लग रही है वह जरूर सिंप्लीफाई होगी।
1: जी बिल्कुल। और रोहिणी जी, वैसे आपदा के बाद ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक परिसंपत्तियों के पुनर्स्थापन को स्वीकार्य कार्यों में शामिल किया गया, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो ऐसे कार्यों में त्वरित प्रतिक्रिया होना जरूरी होती जब भी कोई आपदा आती है और समय पर उसमें रोजगार उपलब्ध कराने की भी बात होती है, तो संतुलन कैसे बनेगा ये?
0: सेक्शन 7 जो है विकसित भारत जी राम जी का, वह ऐसे आपदा के समय पर किस टाइप के रिलैक्सेशंस आपको एक्ट देता है उसके बारे में सेक्शन 7 बात करता है। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस एक्ट ने जो है वो आपदा को टैकल किया है ऐसे मुझे लगता है। अगर एक जगह से विस्थापित होना पड़ता है लोगों को बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कैलमिटी, तो यह कहा गया है कि उनको टेम्पररी जॉब कार्ड्स भी देकर तभी के तभी जो है उनको लाइवलीहुड की, उनके रोजगार की व्यवस्था वहीं पर की जाए। कई काम जो अदरवाइज अलाउड नहीं है ऐसे काम भी लिए जाने की पॉसिबिलिटी जो है नेचुरल कैलमिटीज में हो जाती है। जो गारंटीड वर्क डेज है 125, वह बढ़ाकर देने की भी व्यवस्था जो है वो की जा सकती है अगर कोई आपदा आती है तो। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर एक चीज इतनी पारदर्शिता के साथ हमारे सामने है, हमारे विकसित भारत जी राम जी पोर्टल के माध्यम से। अगर आज भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी तो आज भी दिखा सकती हूँ कि कौन से पंचायत में कितने लोगों का आज हाजिरी लगा है, कहाँ कहाँ पर काम चल रहे हैं। तो पोर्टल के माध्यम से हमें बहुत ही पारदर्शी तरीके से यह पता चलता है कि आज कौन कौन काम पर आया और कहाँ कहाँ काम चल रहा है। तो फिर एक साइड में आपदा के लिए हम रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, बहुत ही स्विफ्टली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, परंतु एट द सेम टाइम पारदर्शिता में कोई कमी नहीं आएगी। वह भी हमें पता चलेगा कि अगर आपदा आई है तो कहां पर आई है, कहां पर लोगों ने काम किया है, कहां पर कौन कौन से रिलैक्सेशंस अवेल किया है, तो यह बैलेंस इसी तरीके से बनाया जाएगा।
1: रोहिणी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का एक लक्ष्य हमें दिया है और हम भी वीवी जी राम जी को 2047 के विकसित भारत के व्यापक विजन के साथ जोड़ करके चलने की बात कर रहे हैं, तो अगले वर्षों में या अगले एक दशक की हम बात करें तो किस रूप में विकसित होते हुए आप देखते हैं, आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर कैसा है आने वाले एक दशक में? क्या ये सिर्फ ग्रामीण रोजगार का एक कार्यक्रम रहेगा या फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देगा, रोजगार को बढ़ावा देगा और साथ ही साथ देश का जो एक टिकाऊ विकास होना है जिस पर हम काम कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं, उसमें भी काफी हद तक मदद मिलेगी और हम सफल होंगे?
0: विकसित भारत जी राम जी के नाम में फिर से जाने का मेरा यहाँ पर सुझाव रहेगा, क्योंकि विकसित भारत जी राम जी के नाम में ही उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि विकसित भारत बनाना है, और इसीलिए विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स बन रहे हैं जिसके माध्यम से विकसित भारत जी राम जी के सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। तो ओवरआर्चिंग ऑब्जेक्टिव तो विकसित भारत बनाने का ही है और वो विकसित ग्राम पंचायत के माध्यम से ही विकसित भारत जो है बनेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान जो एक पर्सपेक्टिव प्लान बनेगा 5 साल का 7 साल का, तो 5 ईयर्स डाउन द लाइन जैसे आपने कहा अगले दशक में अगर हम देखेंगे तो वीबी जी राम जी के माध्यम से पंचायतें पूरी तरीके से सैचुरेट होती हुई हमें दिखेगी, पंचायत पूरी तरीके से विकसित होती हुई दिखेंगी, हमारे भारत के जो ग्रामीण लोग हैं वह रोजगार से आगे जाकर के आजीविका और हाई इनकम की ओर बढ़ते हुए दिखेंगे थ्रू विकसित भारत जी राम जी।
1: रोहिणी जी, इन सारी योजनाओं का, इन सारे कार्यों का हमारे देश के ग्रामीण युवा, महिलाएं, दिव्यांगजन या ऐसे लोग जिन्हें इनकी जरूरत है, कैसे इनका फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से उन्हें अप्रोच करनी चाहिए?
0: 125 दिन की रोजगार गारंटी, यह तो इसमें एक मिनिमम चीज है ऐसा मैं कहूंगी। विकसित भारत जी राम जी के प्रावधानों को केवल ना देखें, विकसित भारत जी राम जी में जो पॉसिबिलिटीज हैं उसको देखें, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी हमारे अन्नदाताओं को, हमारे किसानों को, हमारी महिलाओं को, हमारे युवाओं को और भी पिछड़े तबके वाले जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उन्होंने भी विकसित भारत जी राम जी के प्रावधानों के साथ साथ उसमें जो पॉसिबिलिटीज है उनको अगर देखें तो गांव के विकास को संपूर्ण बनाने की क्षमता विकसित भारत जी राम जी रखता है। पूरी तरीके से अगर उसका यूज किया जाता है तो वह विकसित भारत की ओर जाने में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देगा।
1: रोहिणी जी, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को और ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे?

0: जो इस योजना के साथ साथ हमारी जो अन्य तरह की विकास की योजनाएं होती है जिनका हम लाभ उठा सकते हैं, खासतौर पे ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो योजनाएं हैं।
1: निखिल जी, विकसित भारत जी राम जी में कन्वर्जेंस की बात करी है, इसीलिए आपने जो पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभिसरण के माध्यम से, कन्वर्जेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के घर अगर किसी को मिलते हैं तो उनको वीबीजी राम जी में 90 से 95 दिन का रोजगार भी उसके साथ मिल जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से रोड्स बन रहे हैं। हमारी दीदियां, जैसे मैंने कहा, लखपति दीदियां बन रही है और वो हायर एंटरप्राइजेस की ओर अब जा रही है। तो दीदियों से भी ये अनुरोध है, जब आप क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से कोई लोन लेकर के कोई अच्छा उद्यमिता का विकास कर रही है तो वीबीजी राम जी के माध्यम से आप उसको और भी आगे ले जा सकती है। हमारे जो युवा है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से इमर्जिंग फील्ड्स में जो है वो कौशल विकास पा सकते हैं, कौशल पा सकते हैं और उसको कई सारे उद्यमिता के साथ जोड़ सकते हैं। मुद्रा लोन अवेल करके वह कई सारे अपने खुद के एंटरप्राइजेस भी कर सकते हैं। तो ये कई सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने उठाना चाहिए।
0: श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे से, जिन्होंने विकसित भारत जी राम जी यानी कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के बारे में तमाम विषयों पर हमें विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद निखिल जी।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत जी राम जी योजना में कार्य दिवसों में हुए वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: चर्चा का विषय है।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात के 10 बजे हैं और हाजिर हैं हम लेकर लाइव फोन इन प्रोग्राम आपके अनुरोध पर। जी हाँ, लाइव फोन इन प्रोग्राम है और इससे हमारे श्रोता जुड़ सकते हैं, हमारे स्टूडियोज में फोन कर सकते हैं। 01892224391 ये हमारे स्टूडियोज का नंबर है। और जो फिल्में आज हमारे पास हैं उन फिल्मों के नाम हैं अनाड़ी, कच्चे धागे, क्योंकि मन, मुस्कान, राज और संघर्ष। इन फिल्मों में से किसी भी फिल्म के गीत के लिए फरमाइश करें। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: हाँ जी, नमस्ते जी, नाम बताएं।
1: मैं बोल रहा हूँ जी, पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरिया के गांव मैतापुर से महेंद्र सिंह राणा।
0: जी राणा जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन सी फिल्म का गीत आपको सुनवाएं?
1: ये फिल्में पुरानी है कि या नहीं है?
0: ये बीच के दौर की फिल्में हैं, ना बहुत पुरानी है ना बहुत नई है।
1: अनाड़ी जो है, अनाड़ी ये पुरानी वाली है
0: जी? नहीं, ये 1993 वाली अनाड़ी है।
1: अनाड़ी फिल्म का कोई गाना
0: सुना जी? कॉल करने के लिए शुक्रिया। और आपको गीत सुनवा रहे हैं, सुनिए इस गीत को और आनंद लीजिए इस गीत का।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: हाँ
0: कार्यक्रम
1: जी,
0: आपके अनुरोध पर स्वागत है आपका।
1: हाँ जी, नमस्कार मैडम।
0: जी, परिचय दें अपना।
1: लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ मैडम, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से मैडम। बस
0: जी, लोकेंद्र जी कैसे हैं?
1: बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और मैं तो रेडियो से करीब 40 सालों से जुड़ा हूँ, 40-42 सालों से।
0: जी,
1: तो
0: बहुत
1: रेडियो
0: अच्छी
1: सुनना तो
0: बात
1: मेरा
0: है।
1: सबसे बड़ा शौक है, हॉबी है मेरी।
0: जी, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बताइए, कौन सी फिल्म का गीत आपको
1: ये
0: सुनवाएं आज?
1: आपने संघर्ष फिल्म का बताया है ना,
0: जी
1: जिसमें
0: बिल्कुल।
1: अक्षय कुमार की गाना है, उसमें एक गाना है, तुझे रात दिन
0: जी जी
1: तेरा यूं
0: जी
1: ख्याल है ना,
0: जी जी जी
1: टेलीफोन पे गाना
0: बिल्कुल
1: होता है।
0: जी बिल्कुल। आपको आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं, और कॉल किया आपने, कॉल के लिए शुक्रिया।
1: जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ओके।

आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। लाइव फोन इन ये कार्यक्रम है और हमारे श्रोता हमें फोन कर सकते हैं, फोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और जो फिल्में हमारे पास हैं उन फिल्मों के नाम बता दें एक बार फिर से, कच्चे धागे, क्योंकि, मन, मुस्कान और राज, ये फिल्में अब हमारे पास हैं। और स्टूडियोज का नंबर है 01892224391।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला, और आकाशवाणी धर्मशाला आप साथ ही सुन सकते हैं प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। आपके अनुरोध पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, लाइव फोन इन ये कार्यक्रम है, और श्रोता इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ सकते हैं, और जो फिल्में हमारे पास हैं उन फिल्मों में से किसी भी फिल्म के गीत के लिए फरमाइश कर सकते हैं। और जो फिल्में अब हमारे पास बची हैं उनके नाम एक बार फिर से आपको बता दें, कच्चे धागे, क्योंकि, मन, मुस्कान और राज। इन फिल्मों में से किसी भी फिल्म के गीत आपको पसंद हैं तो उस गीत के लिए फरमाइश आप कर सकते हैं, और जब तक हमारे कोई श्रोता हमसे जुड़ते हैं तब तक हम श्रोताओं का मनोरंजन करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि फिल्म का ये गीत लेकर आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर। एंजॉय कीजिए इस गीत को और फोन मिलाते रहिए 01892224391 इस नंबर पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्ते जी, नाम बताएं।
1: एक चंद्र अग्रवाल बोल रहा हूँ, परासिया छिंदवाड़ा मसले से।
0: जी चंद्र जी, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे? फिल्मों के नाम सुने आपने?
1: हाँ जी, राज का कोई भी गाना सुना दीजिए मैडम।
0: जी कॉल के लिए शुक्रिया, अपना गाना सुनिएगा थोड़ी ही देर में।

0: 01892224391 01892224391 ये स्टूडियोज का नंबर है आकाशवाणी धर्मशाला के, और इस नंबर को आप मिलाएं और हमसे बात करें। और जो फिल्में अब हमारे पास है उनमें से किसी भी फिल्म के गीत के लिए फरमाइश करें। फिल्में हैं कच्चे धागे, मन, मुस्कान। इन फिल्मों के किसी भी गीत की फरमाइश आप कर सकते हैं। हेलो
1: जी।
0: हाँ जी, नमस्ते जी।
1: नमस्कार जी,
0: नाम बता दें अपना।
1: साहब
0: जी, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: कच्चे धागे
0: जी। कच्चे धागे की कोई खास फरमाइश है या कोई भी गीत सुना दें?
1: कोई भी जो मेन सॉन्ग है वो सुना दें सर।
0: जी, कार्यक्रम में आपने कॉल किया जी।
1: आप जी इतना बड़ा अच्छा पेश करते हैं कि कमाल की बात है जी।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हैं और
1: हर प्रोग्राम जो संडे को आता है, जो रोगे डिपेंड, बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी। धन्यवाद तारीफ के लिए, हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया। आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं, आपने कॉल किया उसके लिए भी शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू, शुक्रिया जी।
0: जी ये थे आज के आखिरी कॉलर और इनकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। कच्चे धागे फिल्म का ये गीत उन तक पहुंचा रहे हैं और हमारे बाकी के श्रोता भी इस गीत का आनंद लें।

आपके अनुरोध पर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी धर्मशाला से 10:30 हुए हैं। अब वक्त है पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। श्रोताओं, कार्यक्रम में सभी का स्वागत। रात का ये पहर जब दिन की आवाजें कुछ धीमी पड़ जाती हैं, मन थोड़ा ठहर कर अपने ख्यालों को सुनने लगता है। ऐसे में अगर साथ हो पुराने फिल्मी गीतों का तो यादों के कितने ही दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत। और आज की ये महफिल उन गीतों के नाम जिनमें मोहब्बत थी, नज़ाकत और एक ऐसा ठहराव जो दिल को आज भी छू जाता है। चलिए रात के सफर को खूबसूरत बनाते हैं इन खूबसूरत से गीतों के साथ।

0: श्रोताओं, कुछ गीतों की कहानी बहुत बड़ी नहीं होती, बस किसी की खूबसूरती का जिक्र होता है और वही जिक्र पूरी फिजा को खूबसूरत बना देता है। नजरों में ठहरती एक तस्वीर और दिल में उतरता एक एहसास, इसी नर्म सी खूबसूरती के साथ पेश है ये अगला गीत।
1: कोई नजर

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत, गीत उस जमाने के जब मोहब्बत में तारीफ भी एक कला हुआ करती थी। शब्द कम होते थे लेकिन उनमें एहसास बहुत होता था, और जब किसी की खूबसूरती का जिक्र इतनी नजाकत से हो तो गीत सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है।

पुराने फिल्मी गीतों का लुत्फ उठा रहे हैं आप। कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। बात हो रही है हुस्न की, मोहब्बत की, नजाकत की। मोहब्बत कब, कैसे और किससे हो जाए, ये दिल के फैसले होते हैं, इन्हें समझना आसान नहीं।

रात की खामोशी में पुराने गीतों का अपना ही जादू है, और जब बात हो हुस्न की और अदाओं की तो ये जादू कुछ और गहरा हो जाता है।

और श्रोताओ, अब रात की महफिल अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है, लेकिन पुराने गीतों का जादू ऐसा कि सुनकर लगता है ये सिलसिला कभी खत्म ना हो। एक मुलाकात के खत्म होने की हल्की सी उदासी, साथ के कुछ और पल चुरा लेने की इच्छा और इसी एहसास को अपने साथ लिए आ रहा है कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की उपलब्धता बेहतर हुई है और इसकी कीमतों में भी कमी आ रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इस साल खरीफ प्याज की खेती बढ़ी है, फसल की स्थिति अच्छी है और मंडियों में प्याज की आवक भी बढ़ रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से नई खरीफ प्याज की आवक शुरू हो गई है। आने वाले हफ्तों में इन राज्यों से आवक और बढ़ने की उम्मीद है। इससे त्योहारी मौसम में बाजार में प्याज की उपलब्धता बेहतर होगी। भारत ने पिछले 1-2 दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा है और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। कनाडा के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डेविड मॉरिसन का भारत दौरा आज समाप्त हो गया। डेविड मॉरिसन 3 दिन के भारत दौरे पर थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली में हुई बैठक दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर चल रही द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत आयोजित की गई। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आइची नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi today completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayak Temple at Sarojini Nagar in New Delhi in the morning and offered prayers there. On the occasion, the Prime Minister addressed the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said that present government's policy focuses on solutions for all citizens.
2: Sabka saath, sabka vikas, yahi mere liye sushasan ka aadhar raha hai. समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
3: The Prime Minister said, India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He emphasized that over the past 12 years, the situation has changed completely. Mr. Modi said that earlier efforts were made to increase imports, while today India is setting new export records. He highlighted that the decade from 2015 to 2025 witnessed the highest sustained agricultural growth since independence, surpassing all previous records. India has condemned a string of attacks that have taken place in the Black Sea region in the last one or two days. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that such attacks threaten commercial shipping and endangers the lives of seafaring communities. He added that a commercial vessel, MV Royd Mamadov, came under attack while it was plying in the Black Sea. There were three Indian nationals on board and all of them are safe, but one of them got injured and is receiving medical treatment. The second ship, a Togo-flagged ship, Alpha Vatan, also came under attack yesterday. Expanding on India's broader diplomatic efforts to address the root cause of regional volatility, Mr. Jaiswal emphasized that New Delhi's ongoing communication channels with both Moscow and Kyiv. Meanwhile, Russia has expressed gratitude to India for its readiness to contribute to resolving the Ukraine conflict. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said Moscow appreciates New Delhi's willingness to offer ideas aimed at finding a peaceful solution to the crisis. After nearly 3.5 years, the Reserve Bank of India, RBI, today raised the key benchmark policy rate by 25 basis points to 5.5% in a bid to contain rising inflation amid continuing global and geopolitical uncertainties. The last repo rate hike was in February 2023, when the RBI raised the rate by 0.25% to 6.50%. It kept the rate unchanged through 2023-24 before beginning its rate cut cycle in 2025. Announcing the bi-monthly monetary policy, RBI Governor Sanjay Malhotra said the Monetary Policy Committee unanimously decided to raise the policy repo rate by 25 basis points. The RBI also projected real GDP growth for the current financial year at 7.1%. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of the India Mobile Congress, IMC, at Yashobhoomi in New Delhi tomorrow. It will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The 2026 Nobel Prize in Chemistry has been awarded to French chemist Henry B. Kagan and Japanese chemist Kenzo Sohai for their pioneering discoveries of nonlinear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis. The Royal Swedish Academy of Sciences today said Kagan and Sohai solved a century-old mystery of how molecular asymmetry or homochirality can emerge spontaneously in nature. And that is the end of this news bulletin.
0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का